सुप्रभात, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, सक संवत 1948, आश्विन माह की तिथि 11, तदनुसार अक्टूबर 3, ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का चाय पासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉ. सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित में होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India has called for WTO complaint approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20.

चित्रकूट में माताओं से श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के साक्षात्कार और चारों भाइयों के परस्पर मिलन का दृश्य जहां एक ओर स्नेह सिंचित था, वहां दूसरी ओर अयोध्या पति के निधन के समाचार ने एक बार फिर सभी को शोक के सागर में डुबो दिया। दूसरे दिन कुलगुरु के आदेशानुसार वैदिक रीति से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्राद्ध संपन्न करके वैसे ही शुद्ध हुए जिस प्रकार तीर्थों के आवाहन से पतित पावनी गंगा शुद्ध होती हैं। अद्भुत दृश्य उपस्थित है चित्रकूट में, जहां दुखी अयोध्यावासी कंदमूल और फल का आहार करते हैं। भरत, शत्रुघ्न, मंत्रियों तथा माताओं को व्याकुल देख श्री राम को एक एक पल भारी हो रहा है। अतः उन्होंने वशिष्ठ जी से सबको लेकर अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया।

अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस गान, गायक कलाकार थे ए हरिहरन। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब हम सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मधुश्री के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम लता मंगेशकर के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। आप सुनेंगे मृणाली आखुरी के स्वर में। सुबह 7 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा का। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। सुबह 8:15 का समय होगा समाचार का आकाशवाणी दिल्ली से। सुबह के 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। सुबह 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। सुबह 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह 10:30 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 1:10 पर आकाशवाणी रांची से। दोपहर के 1:20 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा दोपहर के 2:55 पर। 3 आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 3:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। शाम के 4 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 4:02 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। मुख्य समाचार का प्रसारण होगा शाम के 5 आकाशवाणी रांची से। कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे शाम के 5:02 पर। शाम 5:05 का समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आज आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। शाम के 5:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मुख्य समाचार का प्रसारण होगा शाम के 6 आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:02 का समय होगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग का। शाम 6:30 का समय होगा आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम। शाम के 7 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से सुनेंगे जिले में आजकल। संध्या 7:15 का समय होगा श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा तेलहनी फसलों में सरसों एवं तीसी की खेती। उसके बाद आप सुनेंगे हो लोकगीत संकट चंद्र मुर्मू और साथी को। मौसम की जानकारी के बाद आप सुनेंगे भेंटवार्ता स्वच्छता ही सेवा है। भेंटवार्ताकार होंगे रामचरित प्रसाद और उनसे बातें करेंगे ठाकुर चंद्र मुर्मू। कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे संथाली लोकगीत रामचंद्र टूडू और साथी को। रात्रि के 8 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या का प्रसारण होगा रात्रि के 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 9:00। रात्रि के 9:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। रात्रि के 10 आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि के 10:20 का समय होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। श्रोताओं आइए अब हम सुनते हैं सुगम संगीत मृणाली आखुरी के स्वर में।

अभी आपने सुना सुगम संगीत मृणालिनी आखुरी के स्वर में। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम जोहार चायबासा। कार्यक्रम जोहार चायबासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म सुहाग के इस गीत से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी के स्वरों में।

अभी आपने सुना फिल्म ईश्वर का ये गीत नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म स्वर्ग से सुंदर। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आग और शोला का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ के सुरों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म दूसरा आदमी से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अभी आपने सुना ये जरूरी संदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चायबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आशा से, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मर्द से एस जानकी और मोहम्मद अजीज के आवाजों में।
1: रेडी कम ऑन 1 2 1 2 3 4
2: जंप।

अभी आपने सुना फिल्म धनवान का ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म तड़ी पार से, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। ये आकाशवाणी का चायवासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायल सीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि

0: यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
1: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
5: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को

0: दी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
1: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी, वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गाँव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूँ में चावल में इनमें सब कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रुपए तक की इनकम कर ली।
0: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते, इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी शैक्यों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India calls for WTO compliant measures to address trade distortions, dumping and predatory pricing. G7 countries agree to release 100 million barrels of diesel and crude oil as prices

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर 44 साल बाद जीता स्वर्ण पदक। झारखंड की बेटी और कप्तान सलीमा टेटे सहित राज्य की 4 खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान। जेएसएससी सीजीएल जांच में बड़ी सफलता। परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी के करीबी को किया गिरफ्तार। केस में अब तक 20 आरोपी पकड़े गए। रांची डीसी और एसएसपी ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर प्रमुख पूजा पंडालों का किया निरीक्षण। सुरक्षा और सीसीटीवी को लेकर दिए सख्त निर्देश। धनबाद के निरसा में पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत 11 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नकद और एटीएम कार्ड बरामद। और साहिबगंज बरहड़वा सेक्शन पर गंगा नदी का तटबंध कटने से डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद। मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर जारी। और अब समाचार विस्तार से। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर कुल 76 पदक जीते हैं। महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाई, अंकुश और परवीन हुड्डा ने, जबकि पहलवान सुजीत कलकल ने देश के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल किए। एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम के 44 साल बाद ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने पर हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज कौनबेगी ने टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए गर्व की बात है कि टीम की कमान सिमडेगा की सलीमा टेटे के हाथों में थी और विजेता टीम में राज्य की 4 बेटियां शामिल रहीं।
1: आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान में चल रहे एशियन गेम्स में चीन को पराजित कर 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है, क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने सिर्फ ऐतिहासिक जीत हासिल करने के साथ 2028 में ओलंपिक खेला जाना है उसके लिए भी सीधे क्वालिफाई कर लिए है।
0: प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त संगठन महामंत्री पवन साय के रांची पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव की सराहना की। इस दौरान निवर्तमान महामंत्री कर्मवीर सिंह को विदाई दी गई। मौके पर श्री साय ने कहा कि हमें संगठन को और मजबूत बनाते हुए वर्ष 2029 के चुनावों पर ध्यान केंद्रित करना है।
2: आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे देश में इतना व्याप्त हुआ है, उसके पीछे का कारण यही है कि हम सब कार्यकर्ता और अपने आने वाला कदम किस दिशा में लेकर जाएंगे तो अच्छा होगा। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक नंबर का, पहले नंबर का पार्टी बना है।
0: जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी के संचालक के करीबी मिथिलेश पांडे को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। रांची में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा और सुगम यातायात को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सुरक्षा गाइडलाइंस जारी करते हुए एसएसपी राकेश रंजन और अधिकारियों की टीम के साथ बकरी बाजार सहित शहर के प्रमुख पूजा पंडालों का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अग्निशमन, सीसीटीवी, भीड़ नियंत्रण और इमरजेंसी एग्जिट को लेकर पूजा समितियों को सख्त दिशा निर्देश दिए।
3: पूजा का त्योहार का आयोजन के संबंध में जिला प्रशासन आज सभी महत्वपूर्ण जितने भी दुर्गा पंडाल है वहाँ सभी टीम के साथ इंस्पेक्शन के लिए आई हुई है और यहाँ पंडाल समिति के लोगों को और शांति समिति के लोगों को हम लोगों ने बहुत सारे दिशा निर्देश पहले से दिए हैं, विशेषकर महिला पुरुष का अलग अलग एंट्री एग्जिट पॉइंट के लिए, फिर उसके बाद सुरक्षा के लिए बिजली, फायर और भवन का।

0: जो प्रमाण पत्र जो लेना है उसके संबंध में।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची के बहु बाजार स्थित योगदा सत्संग आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने स्वामी ईश्वरानंद से मुलाकात की और श्री श्री परमहंस योगानंद के कक्ष सहित ध्यान मंदिर का परिभ्रमण किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ के मुक्तिधाम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं और लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मनाई गई। यहां स्थापित गांधी जी के अस्थि कलश पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, उपायुक्त ऋतुराज और अन्य अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सांसद ने कहा कि हम सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्शों का अनुसरण करने की आवश्यकता है।
2: कि हर आदमी को अपने जीवन में ये घूटी पीना पड़ेगा कि हमको अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने अगल बगल को स्वच्छ रखना है। जिस दिन ये प्रेरणा सबके अंदर घुसी, विश्वास जानिएगा हमारा देश बिल्कुल स्वच्छ रहेगा। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों को हम लोग जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं।
1: धनबाद के निरसा में पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत पीठा कियारी गांव में छापेमारी कर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से करीब 3.25 लाख रुपए नकद, 19 मोबाइल और 7 एटीएम बरामद हुए हैं। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मोहम्मद याकूब ने बताया कि पुलिस बरामद दस्तावेजों के आधार पर इस पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है।
3: टोटली 11 लोगों को अरेस्ट किए हैं और उन लोगों से हम लोगों को मोबाइल्स भी मिला है, बैंक डॉक्यूमेंट्स दैट इज डेबिट कार्ड्स, सिम कार्ड्स और कुछ कुछ रिकॉर्ड्स भी मिला है जिसमें वो मेंटेन करके रखे हैं ये साइबर क्रिमिनल ट्रांजैक्शंस के बारे में, वो भी डिटेल हमको मिला है। तो सारे लोगों को हम कस्टडी में लाए हैं, पूछताछ किए हैं, अपना जो भी अपराध है उसका कन्फेस किए हैं, तो सारा डिटेल रिकॉर्ड हुआ है।
1: साहिबगंज बरहड़वा सेक्शन में गंगा नदी का तटबंध कटने से डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है, जबकि अप लाइन से सीमित गति से ट्रेनें चल रही हैं। मालदा रेल मंडल के DRM मनीष गुप्ता ने प्रभावित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारी सेवा बहाली के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हैं।
4: कि पिछले 3 दिनों से मालदा डिवीजन के पूरे अधिकारी, कर्मचारी, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, जिला प्रशासन ने भी अपनी टीम भेजी है, स्पीड बोट है, तो 3 दिन से प्रशासन पूरा लगा हुआ है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और काफी कोशिश की जा रही है।
1: राज्यभर में आज संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि का महापर्व ज्योतिया मनाया जा रहा है। माताएं 24 घंटे का कठिन निर्जला उपवास रखकर शाम को भगवान जीमूत वाहन की पूजा और कथा श्रवण करेंगी। कल सुबह पारण के साथ व्रत संपन्न होगा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची सहित अधिकांश जिलों में आज मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि स्थानीय बदलावों के कारण कुछ हिस्सों में हल्के बादल और छिटपुट बौछारें पड़ने की संभावना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने एशियन गेम्स में भारत द्वारा एक दिन में 6 स्वर्ण पदक जीतने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने लिखा है गोल्ड का सिक्सर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं बीमारी बांट रहा दूषित पानी, रांची सहित 6 जिलों में डायरिया का खतरा। हिंदुस्तान लिखता है बेड़ों में ट्रेलर ने कार को 500 मीटर घसीटा, एक की मौत। दैनिक जागरण के अनुसार लोहरदगा के अवरा झरिया झरने में डूबने से रांची के कार्यरत इंजीनियर समेत 2 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर 44 साल बाद जीता स्वर्ण पदक। झारखंड की बेटी और कप्तान सलीमा टेटे सहित राज्य की 4 खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान। JSSC CGL जांच में बड़ी सफलता। परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID ने प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी के करीबी को किया गिरफ्तार। केस में अब तक 20 आरोपी पकड़े गए। रांची DC और SSP ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर

0: प्रमुख पूजा पंडालों का किया निरीक्षण, सुरक्षा और सीसीटीवी को लेकर दिए सख्त निर्देश। धनबाद के निरसा में पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत 11 अपराधियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकद और एटीएम कार्ड बरामद। और साहिबगंज बरहड़वा सेक्शन पर गंगा नदी का तटबंध कटने से डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद, मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बहन, मेरी बिटिया की आंखों की रोशनी छोटी सी उम्र में ही कमजोर हो गई है, रात में उसे ठीक से दिखाई ही नहीं देता।
2: कहीं तुम्हारी बेटी में विटामिन ए की कमी तो नहीं हो गई है?
1: विटामिन ए? वो क्या होता है बहन?
2: विटामिन ए शरीर के विकास और खासकर आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी बिटिया की आयु क्या है?
1: 4 वर्ष।
2: अपनी बिटिया को विटामिन ए की खुराक पिलाओ, ये 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतर पर दी जानी चाहिए।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: तुम्हारी माता जी का स्वास्थ्य अब कैसा है?
5: क्या बताऊं भाई, कल माता जी के स्वास्थ्य की जांच के लिए उन्हें गांव के सरकारी अस्पताल में ले गया था, पर वहां तो डॉक्टरों ने उनकी ठीक से जांच ही नहीं की। अब आम आदमी कहां फरियाद करे?
4: अरे डायल करो 104 नंबर।
5: वो क्या है भाई?
4: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन, जहां सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों से संबंधित शिकायत, जैसे अस्पताल में डॉक्टर का न होना, दवाई का न होना या अन्य कोई गड़बड़ी की जानकारी दर्ज कराई जा सकती है।
6: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे उड़िया लोकगीत कलाकार है दिलीप निषाद और साथी।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आपने सुना उड़िया लोकगीत कलाकार थे दिलीप निषाद और साथी। ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है। सुनते हैं अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है विश्व प्रकृति दिवस। जी हाँ श्रोताओं, प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, हवा और मिट्टी के सीमित उपयोग के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लुप्तप्राय प्रजातियों और वनों की रक्षा करना, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से पृथ्वी को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि एक स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ पर्यावरण जरूरी है। इस दिन लोग पौधे लगाने और प्रदूषण कम करने का संकल्प लेते हैं। बातें हम आपसे और भी करेंगे, सुनते हैं भेंटवार्ता। जड़ी बूटियों का खजाना, हमारा झारखंड। भेंटवार्ताकार हैं अमरदीप कौर, उनसे बातें कर रहे हैं आशा पिंगुआ।
1: जी, मेरा नाम अमनदीप कौर है और मेरी पैदाइश अमृतसर और मेरी परवरिश दिल्ली की है और मेरी कर्म भूमि जो है वो झारखंड है।
2: झारखंड से आपका बहुत गहरा रिश्ता है
1: आप बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें मेरे लाइफ में ऐसी हुई है कि मुझे अंदर से फील आता है कि मेरा शायद झारखंड से कुछ गहरा रिश्ता है।
2: तो कारण हम क्या जान सकते हैं?
1: एक्चुअल में मेरी एक फ्रेंड है पंगेला सामस, वो मेरे साथ वो नर्सिंग लाइन में है, तो इसलिए हम लोग एक साथ काम किया करते थे। अच्छा। मैं थेरेपिस्ट हूँ माइग्रेन और घुटने की।
2: अच्छा।
1: और हम लोग मिलके काम किया करते थे और काम करते करते कुछ विजन क्लियर हुए कि एक्चुअल में हमारी लाइफ का जो गॉड ने हमें लाइफ दी हुई है वो किस चीज के लिए दी है, क्या कारण हो सकता है। तो बहुत सारी, अगर मैं आपसे बात शेयर करूँ तो बहुत चीजें ऐसी थी जिसमें लगा मेरे को कि हाँ, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। क्योंकि आपको नाम से पता चल गया होगा कि मैं सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और पंगेला सामे जो है वो हो से बिलोंग करती है, आदिवासी कम्युनिटी से। लेकिन हम दोनों का साथ रहकर जो हमारा एक दूसरे का विजन, क्योंकि देखिए सब अपनी अपनी जर्नी में यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी जर्नी को जी रहे हैं, लेकिन जब हम दोनों एक साथ मिले तो हमें लगा कि हमारी सोच एक जैसी है और हमें आगे काम करते रहना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा ड्रीम है या जो हमारा विजन है उसको हम अकेले नहीं, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ पूरा फुलफिल कर सकते हैं।
2: जी हाँ, और क्या क्या काम करती हैं आप?
1: जैसे मैंने आपको बताया, वैसे तो मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं थेरेपिस्ट हूँ और मैं ब्यूटिशियंस का भी काम करती हूँ। और अभी जैसे रिसेंट पंगेला सामर जो है मेरी फ्रेंड, अभी सिंगापुर में है, उन्होंने अपना एक ड्रीम बताया था कि मुझे अपनी हो कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। तो मैं चाहती हूँ कि, क्योंकि उनका बिलीव मेरे ऊपर है, उनका एज ए मैनेजमेंट सारा मैं ही संभालती हूँ झारखंड में, तो उन्होंने बोला कि मुझे कम्युनिटी में कुछ ऐसी चीजें करनी है जिसका सपोर्ट मुझे तुम्हारा चाहिए।
2: अच्छा।
1: तो मैंने बोला बिल्कुल आपको मिलेगा, क्योंकि हर किसी की नीड एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है।
2: जी,
1: वो नीड अच्छे के लिए जुड़ी होनी चाहिए, किसी का बुरा करने के लिए नहीं। तो मुझे लगा कि हाँ, हम एक दूसरे की नीड को पूरा कर सकते हैं और इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टअप किया एक होल लैंग्वेज की टी शर्ट के ऊपर। ये बहुत ही यूनिक हमें कंसेप्ट मिला था कि क्योंकि जो हमारा साउथ एरिया है, साउथ डायरेक्शन है, उसमें ये ऑलमोस्ट ये काम होता चला आ रहा था। टी शर्ट पे उनके जो लैंग्वेज थी वो डिजाइन हो रही थी, बट झारखंड में नहीं हो रहा था, ये यूनिक था वहाँ पे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना एक, क्योंकि एक लैंग्वेज को अपने जिस्म पे डाल के प्राउड मोमेंट रहता है हर किसी के लिए, तो हम चाहते थे कि कुछ ऐसा हम लोग करें। तो हमने स्टार्टिंग वहीं से किया और हमने लोगों को बहुत अच्छा टी शर्ट बना के दिया, डिजाइनिंग टी शर्ट जिसमें हो लैंग्वेज को ही दर्शाया गया था, जो पंगेला सामंत का थॉट था। और अप्रिशिएट किया लोगों ने, उड़ीसा में, झारखंड साइड में जितना भी हमारा एरिया रहता है, सबने चाईबासा हो गया और टाटा नगर, मतलब की बहुत जगह पे हमारा, बंगाल में भी हमारा टी शर्ट पहुंचा था और बेंगलोर में भी पहुंचा था। तो

0: उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत खुश हुए। उनको एक प्राउड मोमेंट मिलता था, वो हमसे अप्रिशिएट करते थे कि मैम हमें मजा आ गया, अपनी लैंग्वेज का टी शर्ट पहने। लोग खुद से ही हम लोगों को डिजाइनिंग भेजते थे, कुछ लिखवाना होता था तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि हमें ये लिखवाना है टी शर्ट में। तो हमें उसमें भी मजा आने लग गया कि हाँ लोगों को खुशी मिल रही है।
1: जी हाँ।
0: जी
1: अच्छा, आप मतलब कि आप लोगों का क्या महिलाओं का ग्रुप है क्या?
0: जी हाँ, महिलाओं का ग्रुप है हमारा। क्योंकि पहले तो हम दो तीन लोगों ने स्टार्ट किया था, जैसे कि नीलिमा बारदा मैम को भी आप लोग शायद जानते होंगे। उन्होंने मेरे को मेंटली पीस दिया, और पंगेला सामा ने मेरे को पॉजिटिविटी दी। अगर आप अमनदीप की डेफिनेशन पूछेंगे तो शायद अमनदीप 10 साल पहले कुछ भी नहीं थी। एक बहुत ही शाय नेचर की लड़की थी, जो शायद एक गली को पार करने में भी 10 बार सोचती थी।
1: जी हाँ। तो अभी तो
0: लेकिन
1: अमनदीप की जो समूह है, महिला ग्रुप की समूह, मतलब कि काफी एक एक महिलाएं जुड़ करके काफी लंबा एक
0: बहुत
1: हो गया होगा
0: जी
1: लाइन, है कि नहीं?
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी हाँ।
0: अभी हमारे साथ मेल फीमेल सभी ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं, और
1: अच्छा।
0: हमारा एक ग्रुप बन चुका है। जी
1: हमने सुना है कि झारखंड के कुछ लोग, और
0: जी
1: झारखंड में जो यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, जैसे
0: जी
1: कि आपने हमने सुना है कि एक मोरिंगा, जिसे यहाँ हम मुनगा पत्ता कहते हैं, महुआ
0: जी
1: का, और भी बहुत सारा कुछ है जो बहुत अच्छे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसके भी
0: जी
1: चीजें आप लोग बनाते हैं?
0: जी हाँ मैम, आपने बिल्कुल सही सुना है। इसका भी जो थॉट था, एक्चुअल में किसी ने स्टार्टिंग में पंगेला सामंत को आ रहा था, जैसे सिस्टम नहीं पता था हम लोगों को कैसे करना है,
1: अच्छा।
0: ठीक है? तो कहते हैं ना, जब हम कुछ चीजें सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो पंगेला सावंत ने बहुत टाइम से, क्योंकि हमें पता है कि झारखंड जो है, आपको पता है जंगल एरिया है, और जंगल में बहुत ही मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है? जैसे मोरिंगा जो है, ये बहुत अच्छी मात्रा में वहां से निकलता है, झारखंड से। महुआ बहुत अच्छी मात्रा में निकलता है। अलसी सॉरी अलसी भी जो है, वो भी अभी स्टार्टिंग अच्छे से निकलना स्टार्ट हुआ है, बट पहले ये नॉर्थ नॉर्थ एरिया में ज्यादा होता था, यानी कि पंजाब हरियाणा इन जगह पे ज्यादा मिलता था। लेकिन अभी यहाँ पे भी रिसेंट झारखंड में भी इसका उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। नो डाउट, क्योंकि मैंने भी काफी सर्च किया है, झारखंड में इतना कुछ है वहाँ पे, लेकिन लोगों को सिस्टम नहीं आ रहा उसको आगे लेके आने का। बहुत कुछ है वहाँ पे, हर तरीके का एक यूनिक से यूनिक आइटम निकल सकता है,
1: जी हाँ। हाँ, यहाँ पर
0: लेकिन
1: लोगों को
0: सिस्टम।
1: पता नहीं है कि
0: हाँ
1: कौन सा
0: जी जी
1: चीज हम कैसे खाएं, क्या बनाएं ये, और
0: जी
1: वो हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है, ये किसी को पता नहीं है। तो
0: जी जी जी
1: ये बहुत अच्छी बात होगी।
0: बट मैं ब्लेस्ड मानती हूँ झारखंड को, कि वहाँ पे खेती बाड़ी में यूरिया नहीं मिलाया जाता।
1: जी हाँ।
0: मैं इस चीज को लेके बहुत प्राउड फील करती हूँ। झारखंड में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ वहाँ पे लोग ना नेचुरल चीजें खा रहे हैं, नेचुरल।
1: जी हाँ।
0: लेकिन उनको उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी रहे। बेशक एक जगह पे झारखंड अच्छा खा रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे वहां से इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो आ रही हैं,
1: जी
0: वो उनकी सेहत को खराब भी कर रही हैं, ठीक
1: जी हाँ।
0: है? तो हमें दोनों चीजों को बैलेंस बनाना होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ये जो कंसेप्ट हमें मिला था, ये लड्डू बनाने का, क्योंकि देखिए कोई भी चीज अगर हम खाते हैं, मोरिंगा खाने में अगर हम डायरेक्ट खाएंगे तो मोरिंगा बहुत कड़वा है,
1: जी हाँ।
0: महुआ भी बहुत कड़वा है, ठीक है? और अलसी भी आप अगर डायरेक्ट खाएंगे तो बहुत कड़वी है। लेकिन हमने इसको एक सीड का एक सीड के रूप में ले आए हम मार्केट में, ठीक है? और हमने सोचा कि क्यों ना लोगों को हेल्थ के साथ साथ टेस्ट भी दें जो अच्छा हो। एक बच्चे का मेरे पास वीडियो आया था, उसने मोरिंगा लड्डू खाया था, उसका बर्थडे था, उसकी मदर हमारी शॉप से मोरिंगा लड्डू लेकर गई थी, चार पांच समथिंग लेकर गई थी। तो उन्होंने घर जाके जब वो लड्डू जब अपने बेटे को खिलाया, तो उन्होंने वीडियो बनाया, और इतना अच्छा हमें लगा वो वीडियो देखकर, कि एक बच्चा जिसको एक लड्डू मोरिंगा का खाकर, मोरिंगा जो इतना कड़वा रहता है, क्योंकि हमने उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए थे।

0: जिससे
1: बिल्कुल
0: आप
1: फायदा है
0: मोरिंगा की लड्डू आप जैसे बोल रही हैं, दोनों एक ही
1: जी
0: चीज है। तो हमारे शरीर में किन किन बीमारियों को वो नाश करता है मोरिंगा, यानी कि मुनगा साग?
1: हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि आपको पता है कि ये एक तरीके का पौधा ही है मोरिंगा, ठीक है। तो इसमें जो तत्व पाए जाते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है, हमारी जो दी हार्ट के लिए, जो दिल के लिए बहुत अच्छा रहता है मोरिंगा, और सेकंड इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बिल्ड करता है। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो मोरिंगा में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और कैल्शियम की कमी आज के टाइम में बहुत रहती है शरीर के अंदर। तो अगर हम इसका सेवन लगातार करते हैं, लगातार, ऐसा नहीं कि हमने एक बार खाया 10 दिन छोड़ दिया, ठीक है, कोई भी चीज अगर हम तरीके से लेंगे तो वो बेनिफिट देगी ही देगी हमारे शरीर में, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की सारी कमियां जो हमारे शरीर में हो जाती हैं उन सबको ये पूरा करता है मोरिंगा। मोरिंगा टैबलेट फॉर्म में भी आता है लेकिन आयुर्वेदा में आता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उसको लड्डू के रूप में लेकर आए हैं मार्केट।
0: जी हाँ, वैसे तो उतना
1: जी
0: सब्जी जो है, साग
1: जी
0: और उसका जो फल, सुट्टी, यहाँ पर सुट्टी कहा जाता है, सब कोई लोग
1: ओके
0: खाते
1: ओके
0: ही है, मौसम के अनुसार जब वो होता है तो बहुत
1: जी
0: खाते ही है, लेकिन एक
1: ओके
0: लड्डू जो है सबके मन में जो आता है, लड्डू का शेप और लड्डू का
1: हाँ
0: स्वाद
1: बिल्कुल
0: ऐसा बहुत पसंद करते होंगे, जो
1: जी
0: नहीं भी पसंद करते हैं तो वो लड्डू है, चलो उसका तो खाना ही
1: जी
0: चाहिए।
1: मेरे को एक एक सर का व्यूज आया था, वो भी बोरिंगा और प्लस अलसी का लड्डू लेकर गए थे फ्लैक्स
0: अच्छा।
1: सीड का। तो उन्होंने बोला कि मैम मेरे को ये लड्डू खाने के बाद बहुत एनर्जेटिक फील होता है। देखिए हमारा बॉडी का जो सिस्टम है ना, हर इंसान का, जैसे हमारे थंब के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं सब सबके अलग अलग हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी का सिस्टम भी सबका अलग अलग है। किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को एनर्जेटिक फील होता है, किसी को किसी की स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आने लग जाता है इसको खाने के बाद। सबका मेरे को अलग अलग व्यूज मिला, तो नो डाउट मेरे को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और इसीलिए हम लोग इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और इसको और अच्छा बनाने में लगे हुए हैं।
0: अच्छा।
1: जी
0: अलसी का बीज है ना?
1: हाँ जी, अलसी का
0: हम
1: बीज।
0: हमारे श्रोताओं को ये बताइए, अलसी क्या है?
1: अलसी भी एक तरीके का एक पौधा से उगता है, खेती भी होता है इसका, खेती में जो बीज निकलता है अलसी का बीज, अभी आपने नाम लिया है, ठीक है। तो ये एक तरीके का बीज है, इसका पाउडर भी बनता है, इसको टैबलेट फॉर्म में भी लेके आ जाता है, इसको हम लोगों ने लड्डू फॉर्म में लेकर आए हैं। अगर हम डायरेक्ट अलसी खाएंगे, जो अलसी है ये हमें B1 और B6 की जो हमारी कमी रह जाती है शरीर में, ये उसको पूरा करता है। और ये मोस्टली ठंड में खाया जाता है क्योंकि इसकी जो तहसील जो बोल सकते हैं इसको, ये गर्म होती है, ठीक है ना, ये गर्म होता है बहुत, इसलिए इसको ठंड में ज्यादा खाया जाता है क्योंकि ठंड में ठंडी लगती है, और ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप देखने होंगे कि अभी के टाइम में जोड़ों का दर्द है वो हर किसी को, हर किसी एज में आ रहा है, ठीक है ना, तो ये उसके लिए बहुत बेनिफिट देता है। फ्लैक्स सीड खून का जो हमारी कभी आपने सुना होगा, डॉक्टर लोग लैंग्वेज यूज करते हैं कि खून का थक्का जम गया नसों में,
0: हाँ,
1: ठीक है ना, तो ये उसको खून को पतला करके उस नसों को खोलने का काम करता है फ्लैक्स सीड अलसी, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करता है, ये दिल के लिए अच्छा होता है, ये मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा रहता है, और फिर हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: अच्छा, जिस तरह से हमने सुना है कि लड्डू बनाया जाता है, तो लड्डू में जो
1: जी
0: खास, अगर हम जब तक उसमें मिठास नहीं डालेंगे तो वो लड्डू
1: जी
0: नहीं कहलाता है, तो उसमें
1: हाँ
0: भी जो
1: बिल्कुल
0: लड्डू मिलाते हैं?
1: हाँ, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। मिठास अगर हम चीनी डाल दें तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, हम एक नेचुरल तरीके में अगर चीनी डाल दें तो वो गुणवत्ता नहीं रहने देगा लड्डू में, जो हम देना चाहते हैं लोगों को।
0: हाँ,
1: इसमें हम लोग मिलाते हैं गुड़,
0: अच्छा, जो कि
1: हम
0: शरीर के
1: इसमें
0: लिए बहुत
1: चीनी,
0: अच्छा भी है, गुड़।
1: बहुत अच्छा होता है इसमें, हम लोग चीनी मिलाते ही नहीं है, हम इसमें डायरेक्ट गुड़ का मिश्रण रखते हैं इसके अंदर हम लोग।
0: अच्छा,
1: जी
0: और जो उसी तरह क्या मोरिंगा यानी कि मुनगा साग का जो आप लोग लड्डू बनाते हैं, पाउडर
1: जी जी
0: उसके पहले तो पाउडर बनाते होंगे, उसके बाद ही लड्डू तैयार
1: हाँ हाँ
0: करेंगे?
1: जी जी जी जी जी बिल्कुल।

0: वैसे तो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए थे जो बोलते थे कि मैडम हम आप लोग हमसे खरीद दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में ना लोगों को बाहर निकल कर मार्केटिंग करनी नहीं आती है,
1: जी
0: लेकिन माउथ टू माउथ जैसे ही हम लोगों के पास ये चीज इन्फॉर्मेशन आती थी कि फलाना यहाँ पे ये चीज की खेती कर रहा है, तो नो डाउट हर किसी को सस्ते में अच्छा चाहिए, तो
1: जी
0: हम डायरेक्ट उसी से डील करते थे कि
1: हम्म,
0: ठीक है अगर आप ये चीज कर रहे हो तो आप हमें दीजिए और हमसे पैसा लीजिए। तो
1: अच्छा,
0: अभी तक हमारा जितना भी टीम है संगीना सामन मेरा और नीलिमा वारदा का, ये सारा झारखंड में ही है, हम
1: हम्म,
0: लोग यहाँ से डील करते हैं और उनको ही रोजगार देते हैं।
1: जी हाँ,
0: जितनी भी हमारी टीम है हम चाहते हैं, ठीक है कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पैसे से हर किसी की मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो एक साथ मिल जाएं, किसी का दिमाग, किसी का पैसा, किसी की मेहनत है ना, तो वह सब मिल जाती है तो रोजगार का रूप ले लेती है।
1: हम्म, और
0: तो
1: ये सब
0: हम
1: काम जो है महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
0: जी बहुत अच्छा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको और आगे तक लेके जाएं। जैसे हमारे ट्राइबल के ऊपर जो कपड़ा होता है हमारा होल कम्युनिटी का, हम लोगों की शॉप भी है टाटा बाईपास रोड पे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने हर तरीके का होल कम्युनिटी का हम लोगों ने कपड़ा रखा हुआ है ट्रेडिशनल। हम वहाँ पे भी एक लेडीज बैठती हैं, दो जेंट्स बैठते हैं, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो लोग टाइम देते हैं और पैसा कमाते हैं।
1: एक और नाम सुना है महुआ का, जो कि यहाँ का बहुत फेमस फल है,
0: हाँ
1: पेड़
0: जी
1: है कि नहीं?
0: जी जी जी बिल्कुल
1: और जब भी हम गांव जाते हैं और कहीं घर में लोग इस महुआ का जो है वो ब्रेकफास्ट खाते हैं, उसे उबाल करके इमली का जो बीज होता है उसके साथ
0: जी
1: उबाल दिया जाता है, फिर सब लोग दोना में खाते हैं। हमने भी खाया है, हमें भी अच्छा
0: ओके
1: लगा है।
0: जी
1: तो
0: जी
1: किस तरह महुआ को आप लोग ये करते हैं, तैयार करते हैं?
0: जी महुआ आपको पता है किस तरीके का फूल है, ठीक है, और
1: हाँ
0: आपने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, लेकिन लेकिन ये गांव में ही उबाल कर खाया जाता है, राइट। अगर हम किसी अपने गांव में पहुंचे तो वहीं के लोग इसको खाते हैं ज्यादा, क्योंकि तो उनके पास स्वाद उनके पास कम रहता है, उनके पास खाने की चीजें रहती हैं, किसको हम इस तरीके से खाएंगे, हम इसको इस तरीके से खा लेंगे, यानी पेट भर लेंगे बस इतना, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बाहर निकल के एक सिटी की तरफ शहर की तरफ आए तो शायद महुआ को काफी लोग छोड़ चुके हैं
1: अच्छा हाँ
0: जी, इसलिए हम लोगों ने इसको भी एक लड्डू का रूप दिया।
1: जी हाँ
0: महुआ जो है वो भी शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, इसके अंदर भी विटामिन सी और विटामिन ए और फोलिक, ये तीनों चीजें बहुत अच्छी मात्रा में है, जो स्किन के लिए भी अच्छी रहती है और शरीर के लिए भी अच्छी रहती है,
1: जी हाँ
0: और ये झारखंड में इसकी उत्पत्ति सबसे ज्यादा है,
1: जी हाँ
0: ठीक है। मैंने जैसे अलसी का और आपको मोरिंगा का बताया, ये जो अलसी है वो फिर भी झारखंड में थोड़ा सा उत्पाद बढ़ा है उसका पहले से, ठीक
1: हाँ
0: है, लेकिन जो मेन सिटी ने पकड़ा हुआ है, मेन स्टेट ने पकड़ा हुआ है वो है पंजाब हरियाणा साइड में, इन लोगों के पास ज्यादा है इसका खेती का, ठीक है, लेकिन जो महुआ है वो इकलौता जो स्टेट है वो झारखंड है,
1: जी हाँ
0: महुआ जो हीरो है झारखंड का,
1: हाँ जी
0: ठीक है, तो वहां पे इसकी भी खेती यानी फूल से ये उगता एक महुआ है, जो फूल आपने प्रोसेस देखा हो कि फूल एक फूल उगता है उसके अंदर महुआ का बीज जैसे होता है ना
1: जी
0: वो
1: हाँ
0: है, इसका प्रोसेस मैंने खुद करके देखा तो मैं आपको बता सकती हूँ। और लोग आपने बताया कि किस किस तरीके से इसको खाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने इसको भी लड्डू के रूप में दिया और लोगों को महुआ इतना पसंद आया कि हमें उसका ऑर्डर पूरा करना भी कम पड़ रहा था कि
1: जी हाँ
0: कैसे करें, क्योंकि इसकी जो खेती है ना या इसका जो फुलफिल होने का जो एक टाइमिंग है
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: मार्च से लेके मई तक रहता है,
1: जी हाँ
0: ठीक है, तो हमें उस पर सेलिंग भी करना आता है, उन लोगों से खरीदना भी होता है, फिर उसको उसका प्रोसेस आगे का स्टार्ट भी करना होता है, और ज्यादा ये भी चीजें हैं कि आप महुआ को ज्यादा अपने घर में रख भी नहीं सकते,
1: जी हाँ हाँ
0: ये भी एक चीज है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से हमने जो स्टार्टिंग किया महुआ से ही किया था, अलसी और ये जो अपना मोरिंगा है ये हम लोगों ने बाद में लेकर आए कुछ टाइम बाद, पहले हमने महुआ को स्टार्टअप दिया था, तो इसके ऑर्डर भी हमारे पास बहुत

0: जगह जगह से ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन हम लोग फुलफिल नहीं कर पाए क्योंकि बाइक कोरियर से महुआ लड्डू को भिजवाना आसान नहीं था। अलग अलग स्टेट से हम लोगों को ऑर्डर आ रहा था महुआ का, लेकिन झारखंड में हम लोगों ने इसका खूब प्रचार भी किया और खूब हम लोगों ने सेल भी किया। तो नो डाउट लोगों ने अपनी घर की शादी में, किसी फंक्शन में, किसी भी चीज में, मतलब कि उसको ऑर्डर पे ऑर्डर हम लोगों को दिए। और महुआ जो जिस लड़की ने लड्डू बनाना स्टार्ट किया था महुआ का, एक्चुअली में हम उसका नाम ही महुआ वाली लड़की बनाने का सोच रहे थे।
1: हाँ हाँ।
0: लेकिन हम लोग वो मालती करके, मालती वोडरा करके एक लड़की है, उसने बहुत एफर्ट लगाए लड्डू बनाने, हम लोगों ने इससे बहुत प्रैक्टिस करवाई, लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी और वो करते करते करते करते वो टेस्ट दे चुकी लोगों को जो लोग चाहते थे। तो अभी हमें फिर से कुछ ऑर्डर स्टार्ट हुए आने, लेकिन अभी हम लोगों ने होल्ड किया हुआ है क्योंकि महुआ अवेलेबल नहीं है मार्केट में।
1: अच्छा
0: जी,
1: और बहुत आश्चर्य की बात है अमनदीप जी,
0: जी,
1: आप
0: जी,
1: तो, आप लोगों ने मुनगा अल्फी
0: हाँ,
1: और उसके बाद फिर महुआ का लड्डू तैयार कर लिया है, तो उसका
0: जी,
1: भी एक तरीका होता होगा महुआ का, किस तरह से आप लोग लड्डू बनाए, क्या क्या उसको
0: हाँ,
1: बताया गया?
0: बिल्कुल, इसका प्रोसेस हम तीनों जो लड्डू रखे हैं ना,
1: हाँ,
0: इनका प्रोसेस मिनिमम एक सेम है। इसमें गुड़ पड़ता है, इसमें सूर्यमुखी का फूल पड़ता है, इसमें तेल, इसमें ड्राई फ्रूट, इसमें देसी घी, लेकिन बस जो इसके हीरो है ना तीनों, मोरिंगा और महुआ और फ्लैक्सीड, ठीक है, इनको हम लोग एड ऑन तरीके से करते हैं कि कितना कितनी कितनी मात्रा में होना चाहिए।
1: मतलब जो भी चीज मिलाते हैं वो बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमें जो व्यूज आते हैं वो हमें ऐसे ही नहीं आते हैं, लोगों को अच्छा रिजल्ट आता है इसलिए आते हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन भी काम करते हैं, हम लोग ऑफलाइन भी काम करते हैं, और आपको पता है अगर इंसान को कोई चीज पसंद नहीं आती है तो ऑनलाइन बैठा हुआ है वो गालियां देने के लिए, ठीक है ना, लेकिन हमें अभी तक टच वुड कभी किसी से गलत रिस्पॉन्स नहीं आया, अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया कि जिससे किसी को कुछ किसी की हेल्थ इश्यू हो गया हो, किसी को गलत असर हो गया हो, या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। जी,
1: फिर आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, फिर और तरीके का जितने सारे यहाँ झारखंड में जो फल वगैरह, फूल वगैरह,
0: हाँ, बिल्कुल जी, जी, जी,
1: तैयारी आप लोग लड्डू बनाने में करेंगे।
0: जी जी जी, बिल्कुल,
1: हमारे झारखण्ड के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, और सिर्फ लड्डू खाने के लिए ही नहीं, यहाँ की महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, उन लोगों को भी स्वरोजगार मिलेगा आप लोगों के जरिए।
0: बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से जिस चीज से बोलना चाहती हूँ कि अगर अमनदीप कुछ ऐसा काम कर सकती है तो डेफिनेटली हर लेडीज कुछ अच्छा काम कर सकती है।
1: जी हाँ,
0: ठीक है, क्योंकि नो डाउट लेडीज के लिए बहुत मुश्किलें रहती हैं, लेकिन अगर वो ठान ले तो कभी ना कभी उसका परिवार उसके सपोर्ट में खड़ा हो ही जाता है।
1: जी हाँ, अमनदीप,
0: हाँ,
1: हम आपसे एक सवाल और करेंगे।
0: जी जी,
1: जैसे कि आप देख रही हैं कि हमारे भारत देश में नशापन बहुत ज्यादा हो गया,
0: जी,
1: तो हमारे जो है युवा लोग ही ज्यादातर यहाँ भटक जा रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, मैं इस चीज के ऊपर मैं टॉपिक ले सकती हूँ, और इसके ऊपर मेरे पास ना टाइमिंग की बाउंड्रीज नहीं रहती है, मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत बोलना चाहती हूँ, लेकिन हम अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम होगा जो आपने मेरे को दिया है। पहले क्या हुआ करता था, पहले के जमाने में लोग नशा लेते थे, ऐसा नहीं कि नहीं लेते थे, लेकिन वो जिम्मेदारियां एक लिमिट चीज में नशा लेते थे, ठीक है। अभी ना हर इंसान स्ट्रेस में जा रहा है, हर इंसान, और उस स्ट्रेस को वो फ्री करने के लिए नशे में घुस रहा है।
1: जी,
0: तो अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो उसको काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, लेकिन काउंसलिंग तक भी कोई हर इंसान आसानी से नहीं पहुंचता क्योंकि किसी को पता ही नहीं ये होती क्या चीज है। तो मैं आपके माध्यम से इतना बोलूंगी, हर आदमी, हर युवा एक घर में है, ठीक है, और उसका परिवार ही उसको अच्छे से समझा सकता है।
1: जी हाँ,
0: उससे बातें पूछ सकता है कि इसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, अगर

0: आपसे एक बात शेयर करूं। मैं ट्रैवलिंग पे थी, ट्रेन में बैठी हुई थी, वहां पे एक लड़का मेरे को नजर आया। अब मैं मोस्टली लोगों को पहचान जाती हूँ, जैसे झारखंड से कोई भी नजर आए ना मेरे को, तो मैं पहचान जाती हूँ। अगर मैं दिल्ली में भी रहती हूँ ना, तो मैं अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ नॉर्थ साइड में, तो मैं पहचान जाती हूँ कि ये बिहार से लग रहा है, ये झारखंड से लग रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कहाँ से हो, बिहार से हो? बोला वेस्ट बंगाल से हूँ। तो वो ना मतलब कि यहाँ पे लुधियाना में कुछ काम कर रहा था, ये बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो मैंने उससे पूछा कि क्या करते हो यहाँ पे? तो बोला कि कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करता हूँ। मैंने कितना पैसा मिलता है? कहता पर डे का 700 रुपया मिलता है।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बोला अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ मतलब कि लुधियाना में। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा काहे के लिए यहाँ पे आए हो? क्या है, युवा पीढ़ी को ना फ्रीडम बहुत पसंद है आज के टाइम में। तो मैंने उससे पूछा काहे के लिए आए हो? तब ऐसे अरे घर वाले किचकिच करते हैं, ऐसा उसने मेरे को आंसर दिया। तो मैंने कहा हाँ वो तो मैं समझ गई, क्योंकि जो तुम 700 रुपया यहाँ कमा रहे हो, तुम वहां भी कमा सकते हो। झारखंड में भी इंसान कमा सकता है अगर कमाने में आए तो। तो वो हंसने लग गया, उसने बोला हाँ, उसने उसको पता लग गया कि ये समझ गई है। ठीक है, क्योंकि इंसान को फ्रीडम चाहिए, कोई डाउट नहीं है। आप घर में रहकर भी इंसान को फ्रीडम दे सकते हैं, ये जिम्मेदारी परिवार की रहती है। अगर मैं आपको सच बताऊं, मैं अभी अगर मैं बोलूं, आदमी या औरत कभी कोई गलत नहीं होता है, गलत होती है सिचुएशन। अभी जैसे आपने बोला कि नशा में क्यों जा रहा है इंसान, क्यों जा रहा है, ये मैं क्यों का आंसर दे रही हूँ आपको। क्यों? उसका कारण यही है कि हर इंसान ज्यादा उम्मीदें, ज्यादा ड्रीम्स, ज्यादा मतलब कोई भी चीज जब अति अति की तरफ जाती है तो वो हानिकारक होती है। ठीक है, अगर हम अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर लेंगे, तो कोई डाउट नहीं है कि नशा हमारे देश में बहुत कम होगा।
1: आपने सही कहा। तो अमनदीप जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, आपने मेरे को मौका दिया मेरी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो थैंक्स करती हूँ मैं आपको, आपको मैं टाइम काफी टाइम से नहीं दे पा रही थी, लेकिन आज मेरे को लगा कि बहुत टाइम हो गया, मुझे कुछ अब बोलना चाहिए जी।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म दिल अपना प्रीत पराई के इस गीत से, लता मंगेशकर के स्वर में।

0: अभी आपने सुना फिल्म तोहफा का ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चाईबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: इस संदेश के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं आशा भोसले के स्वर में फिल्म उमराव जान का ये गीत।

0: श्रोताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अभी आपने सुना ये जरूरी संदेश। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म दिल जलेगी इस गीत से, कुमार सानू के स्वर में।
8: ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात, कुछ भी नहीं,
9: कुछ भी नहीं,
8: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं।
9: वो है कौन?
10: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
8: नाम?

अभी आपने सुना फिल्म वास्तव का ये गीत सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मन से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: उपस्थित हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम जोहर रांची के साथ। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुनीता
1: और मैं विनोद। नमस्कार
0: नमस्कार जोहर विनोद जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सुनीता। बरसात का मौसम जा चुका है, गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है और फेस्टिव सीजन का माहौल है।
0: बिल्कुल,
1: है ना, पंडाल बन रहे हैं, दुकानें सज रही हैं। तो जब ऐसा माहौल हो तो
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल। मेरे साथ दोस्तों इस वक्त यहां पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सुबह के 10:30 बजे के लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के। आज है आखिरी दिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो खेलों का, खास तौर से इंडियन रिप्रेजेंटेशन का, व्हेन इट कम्स इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026, बिकॉज टुमारो द एशियन गेम्स कम्स टू इट्स फॉर्मल ऑफिशियल क्लोजर ऑल्सो। बट अगर आज की सुबह की बात करें तो बहुत अच्छी शुरुआत आज भारतीय खिलाड़ियों ने दी, खासतौर से गोल्फ को सबसे पहले मैं बताती हूँ, जहाँ प्रणवी उर्ज ने आज हिस्ट्री बना दी बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा, द एंटायर टीम ऑल्सो देन वेंट ऑन टू गेट द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज एवर वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर डिड दैट इन 2002। यानी 24 साल के इंतजार के बाद आज जाकर वो इंतजार समाप्त हुआ एक इंडिविजुअल गोल्ड का गोल्फ में, जो प्रणवी उर्स भारत के लिए एशियन गेम्स में लेकर आई। इसके साथ आपको ये भी बताएं, प्रणवी उर्स हेल्ड हर नर्व्स टू विन द वुमेन्स इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, फिनिशिंग द 4-राउंड कॉम्पिटिशन एट 15 अंडर पार। शी मेड पार ऑन द फाइनल होल एज इट सिंगापुर शैनन टैन एंड चाइनाज यिन रोनिंग, हु फिनिश्ड ऑन 14 अंडर टू शेयर द सिल्वर मेडल। अदिति अशोक एंड दीक्षा डागर सेलिब्रेटेड बाई डाउजिंग प्रणवी विद वॉटर ऑन द कोर्स आफ्टर अ मेमोरेबल विक्ट्री।
4: जी, अब एक और अच्छी खबर श्रोताओं को बताएं, नागोया में भारत की 17 साल की तीरंदाज कुमकुम अनिल मोहोद ने आज ऐसा निशाना साधा कि इतिहास बन गया। एशियन गेम्स में पहली बार किसी भारतीय महिला ने रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कुमकुम ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में कोरिया की येजिन ओह को 6-5 से हराया।

0: अरे इतना करीबी रहा कि फैसला शूटआउट में हुआ, जहां कुमकुम ने 10-8 से बाजी मारकर सोना अपने नाम किया। स्कोर लाइन की बात कर लेते हैं तो कुमकुम ने 27-29, 29-29, 30-29, 27-28, 30-28 और शूटआउट में 10-8 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। और यह कुमकुम का इस एशियन गेम्स में तीसरा पदक है। महिला टीम रिकर्व में स्वर्ण, जबकि मिश्रित टीम में रजत पदक, अब व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। 17 साल की कुमकुम का यह एशियन गेम्स का जो पदक है उन्हें LA यानी लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी दिला गया है।
1: Right, and now a quick update on cricket where the India versus Pakistan gold medal match is underway currently. India won the toss today and chose to bat first. Batting, India so far has put, or rather made, 75 runs for the loss of 2 wickets in 5.2 overs, the current run rate being 14.06 per over. India lost 2 quick early wickets of Vaibhav Suryavanshi at 15 and Sanju Samson at just 2 runs. But Abhishek Sharma, who is presently on 46 and 16 balls, and Shreyas Iyer, who has just come onto the ground and has made 3 runs in 4 balls, have been able to solidify and give India a steady start and momentum. Also, Abhishek Sharma presently is just 4 short of his half century. India definitely in a commanding position in the 6th over as of now in this match.
0: कुश्ती की बात कर लेते हैं। साक्षी, कुश्ती के अखाड़े से भारत के लिए शानदार खबर आई है। भारतीय पहलवानों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 2 वर्ग के फाइनल में जगह बना ली, जबकि 2 पहलवान कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे। महिला 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अंतिम पंघाल ने शानदार करते हुए फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल मुकाबले में अंतिम शुरुआत में 0-1 से पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए कुछ ही सेकंड में 6-1 कर दिया और इस शानदार जीत के साथ अंतिम ने अपना पदक पक्का कर लिया। अब वो स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं अमन सहरावत, अपनी ख्याति के अनुसार उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में सेमीफाइनल में कमाल की वापसी करते हुए फाइनल का टिकट उन्होंने हासिल किया। ताजिकिस्तान के आयाला बोलोस्क्यूकी के खिलाफ अमन पहले पीरियड में 2-6 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने ऐसा पलटवार किया कि मुकाबले का रुख पूरी तरह से बदल दिया। अमन ने दूसरे पीरियड में 12 अंक बटोरे और आखिर में मुकाबला 14-8 से जीत लिया। उधर सागर जगलान ने शानदार जीत दर्ज की और पुरुषों के 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल के रेपचेज मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए अब कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। यहां पर इन्होंने 7-3 से जीत दर्ज कर ली। लेकिन एक और मुकाबले की बात कर लेते हैं। 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया को सेमीफाइनल में करीबी मुकाबले में हार मिली। उज्बेकिस्तान के शोर्डेट्स के खिलाफ 9-8 से उन्होंने जो 8-9 से शिकस्त मिली थी, उसके बाद अब वो ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला करेंगे।
1: Right, and a quick update on the medal table. Presently, India is on the fifth position with a total of 79 medals, जिसमें 18 gold, 26 silver और 35 bronze medal हैं। जी हाँ, एक और gold medal भारत अपने नाम अभी कर चुका है, इसलिए हमारी position medal table पर अब 5वीं हो चुकी है। देखना होगा कि आज दिन की समाप्ति तक भारत किस प्रकार से एशियन गेम 2026 में अपने खेलों के इस सफर की समाप्ति करता है और मेडल टेबल पर भारत कहां पर जगह गाएगा। फिलहाल के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम आपसे दोबारा एक बार सुबह 11:30 बजे जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स।
2: एशियन गेम्स 2026 IG नगोया।

0: यदि माँ HIV से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को HIV का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0-9-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: जोहार रांची कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है। विनोद जी, हम लोग आज बहुत अच्छी खबरों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, तो बताइए, मुझे लगता है कि आज जिसने भी न्यूज़पेपर देखा होगा या टीवी देखा होगा या फिर और भी लाइव मैचेस देखे होंगे, उन्हें बहुत गर्व होगा।
2: बिल्कुल, देश तो खुद को गौरवान्वित महसूस कर ही रहा है और खासकर हम झारखंड वासी भी काफी गर्व कर रहे हैं अपनी उन 4 बेटियों को लेकर जिन्होंने मतलब कि पूरे देश और दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया है।
1: बिल्कुल, और झारखंड की बेटी सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारत को हॉकी में गोल्ड मिला है। जापान में जारी एशियन गेम्स में शुक्रवार का दिन भारत के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश को एक ही दिन में 6 स्वर्ण पदक दिलाए, तो ये और भी अच्छा लगता है ना कि जब एक साथ, कहां तो बीच में आ रहा था कि पदक तालिका में हम बहुत कम है, लेकिन अचानक सा एक दिन में 6 गोल्ड मिलना भी अपने आप में एक
2: बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: बिल्कुल, और इनमें से जो 4 गोल्ड है ना, अकेले भारत की बेटियों ने दिलाया है, तो ये बात तो हमारे लिए और भी अच्छी है। इस ऐतिहासिक कामयाबी में झारखंड की बेटी सलीमा टेटे का नेतृत्व सराहनीय रहा, जिनके दम पर भारतीय महिला हॉकी टीम ने गत चैंपियन चीन को 1-0 से चित करके 44 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया है।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा, और खासकर मतलब कि टीम में जो शामिल खिलाड़ियों की बात करें तो हम लोग समय समय पर उनसे संबंधित, उनके जीवन संघर्ष से संबंधित खबरें पढ़ते रहते हैं, और किन मुश्किल हालात में इन्होंने जो बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है वो अद्वितीय है, और निश्चित तौर पर मतलब कि ऐसे लोगों को एक सबक देती है, सीख देती है कि भाई विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं है, अगर हम डटकर मुकाबला करें तो जीत तय है।
1: तो झारखंड की बेटियों के नाम हम बता दें, सलीमा टेटे के अलावा ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और निकी प्रधान ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया। तो झारखंड की बेटियों के साथ हमारे पूरे देश का नाम रोशन हुआ है और हमारे झारखंड के लिए भी गर्व की बात है। और जैसा कि आपने कहा कि विपरीत परिस्थितियों से निकल हमारी बेटियां आगे आती हैं, तो कहते हैं ना, झारखंड गांव में जो है, गांव में बसता है और बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी गांव से निकलकर सामने आते हैं। और साथ ही एक और अच्छी बात हम अपने श्रोताओं को बताएंगे कि एशियाई खेल के महिला तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में शुक्रवार को टाटा में प्रशिक्षित अंकिता भगत, हजारीबाग के पद्मा में प्रशिक्षित कृति शर्मा और महाराष्ट्र की कुमकुम मोहोड़ के दम पर भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 5-3 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और इस शानदार उपलब्धि के साथ इस वर्ष एशियाई खेलों में झारखंड को भी पहला पदक मिल ही गया।
2: बिल्कुल सुनीता, और जैसा कि अभी अंकिता और कीर्ति की बात हम लोग कह रहे हैं कि उसने तीरंदाजी में ऐसा कुछ कर दिखाया कि आज ये पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है, और अगर इनकी जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कभी स्थिति ये थे, हालात कभी ये थे, चाहे वो अंकिता की बात

0: या कीर्ति की बात करें कि इन इनको जो प्रशिक्षण के लिए जो सबसे जो जरूरी होता है धनुष, इनके पास इसकी भी उपलब्धता नहीं थी और ये लकड़ी के धनुष से खुद
1: इन
0: ही
1: प्रैक्टिस किए हैं।
0: प्रैक्टिस किए और इसके बाद जब आवश्यकता पड़ी, जब इनके और कहीं ना कहीं अगर देखते कि हमारी सफलताओं में हमारे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है और जब तक उनका सहारा नहीं मिलता है तो बच्चे सही पथ पर नहीं बढ़ पाते हैं, तो इनके पिता ने कर्ज कर्ज लेकर
1: धनुष
0: अपने
1: खरीदा।
0: दोस्त से धनुष दिया और आज उसी धनुष के बल पर इसने
1: देखिए, इतना
0: बिल्कुल
1: बड़ा काम किया और अपने देश के लिए सोना लेकर आए हैं।
0: और बात हो रही एशियाई खेल की,
1: हाँ
0: तो मैं
1: हाँ
0: बात अब क्या करता हूँ कि नेत्रा ने भी, जो कि ये भी कहीं की बेटी हैं, इन्होंने भी और भारत की ही हमारी बेटी हैं, नेत्रा कुमानन ने आखिरकार अपने चौथे एशियाई खेलों में पहला पदक जीत लिया।
1: वाह।
0: चेन्नई की 29 वर्षीय नेत्रा ने शुक्रवार को महिला डिंगी सेलिंग स्पर्धा में 14 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया। और इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो भारत की प्रणवी उर्स ने एशियाई खेलों की गोल्फ स्पर्धा में स्वर्ण की उम्मीद जगा दी है। पहली बार खेल रही 30 वर्षीय प्रणवी ने शुक्रवार को तीसरे दौर में 4 अंडर 66 का कार्ड खेल 3 स्ट्रोक की बढ़त हासिल की
1: मतलब
0: है।
1: इस बार महिलाओं का और हमारी लड़कियों का जज्बा है। और कहे तो बात कर रहे हैं हम एशियाई खेलों की, तो इंडिया की खबरें बहुत सारी हैं, तो थोड़ी थोड़ी हम बताते चलेंगे। सुजीत कलकल 65 किलो शुरू में ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुरियेव से 2-9 से पिछड़ रहे थे। स्वर्ण उनके हाथ से फिसलता दिख रहा था, पर हरियाणवी पहलवान ने एक के बाद एक सफल मूव से अंतर 8-9 तक कम कर दिया। अब मुकाबले खत्म होने में 20 सेकेंड बाकी थे। सुजीत को जीत के लिए 2 अंक चाहिए थे, तभी उन्होंने निर्णायक टेकडाउन से 2 अंक हासिल किए और 10-9 से जीत कर चैंपियन बने। और दूसरी बात यह है ना कि 28 साल के बाद एक ही दिन में मैदान पर उतरेंगी 2 इंडिया की टीमें।
0: बिल्कुल। और एशियाई खेलों में शनिवार सुबह भारत पाक के बीच स्वर्ण पदक के महामुकाबला अभी जो चल रहा है ना, और दोपहर से उससे हजारों मील दूर एक और टीम इंडिया मुलालामपुर में वेस्ट इंडीज से भिड़ेगी। 28 साल बाद ऐसा दिलचस्प संयोग होगा।
1: तो मतलब बहुत सारी आज खबरें, लग रहा कि अगर हम खेलों की बातें करें तो पूरा 1 घंटा ही चला जाएगा। और एक खबर हम अपने श्रोताओं से और शेयर करना चाहेंगे कि भारतीय फुटबॉल टीम शनिवार को सॉल्ट लेक स्टेडियम में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन और सितारों से सची ब्राजील के खिलाफ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलेगी। मैत्री मैच में 138वें स्थान पर काबिज भारत के सामने विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान की ब्राजील की टीम की कड़ी चुनौती होगी। और यह ब्राजील की सीनियर पुरुष टीम का भारत की धरती पर पहला मुकाबला भी होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत नीचे पायदान पर हम जरूर हैं, लेकिन हमारा जो मनोबल है वो बहुत
0: बहुत
1: ऊंचा है।
0: ऊंचा है बिल्कुल।
1: और हमारा जो देश है, हमारी जो टीमें हैं, उन्होंने भारत के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण दिया है। तो चलिए, खूबसूरत संगीत इसी पे हम अपने श्रोताओं के साथ सुन लेते हैं।

0: और विनोद जी, जोहारा जी, में आगे हम क्या करेंगे बताइए।
1: बिल्कुल, और इतिहास की बातें कुछ हो जाएं,
0: जरूरी है, कुछ जरूरी बातें याद कराना, रिकॉल कराना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज ही के दिन 1880 में पहले मराठी संगीत नाटक संगीत शाकुंतल का पुणे में मंचन किया गया था।
1: और आज के ही दिन 1978 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, पहला और दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था।
0: और 3 अक्टूबर की बात कर रहे हैं हम, तो 1984 में भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक के लिए रवाना की गई थी।
1: 1992 में आज के ही दिन गीत सेठी ने विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती थी।
0: 1994 में भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया था।
1: 1999 में आज के ही दिन आणविक पदार्थों के आवागमन और आणविक दुर्घटनाओं को रोकने हेतु संयुक्त राज्य राष्ट्र अमेरिका तथा रूस ने संयुक्त रूप से केंद्र की स्थापना की थी।
0: 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को संयुक्त रूप से देने की सिफारिश की गई थी।
1: 2008 में आज के ही दिन टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा ने सिंगूर में नैनो कार परियोजना अन्यत्र ले जाने की घोषणा की थी।
0: बात कर लेते हैं उनकी, जो आज हमारे बीच से चले गए। 3 अक्टूबर 2021 को घनश्याम नायक, भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता थे, उनका निधन हुआ था।
1: 1923 में कादम्बिनी गांगुली, जो कि भारत की पहली महिला स्नातक और

0: पहली महिला फिजिशियन थी, उनका निधन हुआ था।
1: 2007 में M.N. विजयन भारतीय लेखक थे, उनका भी निधन हुआ था। और बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है, तो 3 अक्टूबर 1999 को निषाद कुमार ऊंची कूद के भारतीय पैरा एथलीट हैं, उनका जन्मदिन है।
0: 1959 में आज के ही दिन सुबीर गोकर्ण, जो कि भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जन्म हुआ था।
1: और 1928 में अमृतलाल बेगड़, प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार और नम्रता प्रेमी थे, उनका भी जन्म हुआ था।
0: पी परमेश्वरन, जो कि जनसंघ के पूर्व उपाध्यक्ष, दिग्गज लेखक, कवि और प्रसिद्ध संघ विचारक थे, उनका भी जन्म आज के ही दिन 1927 में हुआ था।
1: और आज ही के दिन भारतीय फिल्मों के जाने माने निर्देशक J.P. दत्ता का जन्म 1949 में हुआ था।
0: बिल्कुल सुनीता, और हम बात कर रहे हैं अभी J.P. दत्ता यानी कि ज्योति प्रकाश दत्ता की, क्योंकि एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में देशभक्ति और युद्ध पर आधारित फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनका जन्म आज के ही दिन 1949 में बॉम्बे, जो कि आज का मुंबई है, हुआ था। और अगर इनको फिल्मों की बात करें तो बहुत सारी इन्होंने एक से एक बढ़कर फिल्में की हैं।
1: LOC कारगिल 1999, 2003 युद्ध पर आधारित थी, रिफ्यूजी, उसके बाद यतीम, बंटवारा, क्षत्रिय, उमराव जान और पलटन, साथ ही साथ बॉर्डर, यह उनकी सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म है जो 1971 के भारत पाक युद्ध पर आधारित थी। इस फिल्म को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला था। तो जब इतनी अच्छी फिल्म है, और मुझे लगता है हम सभी ने देखी है, सच में बहुत अच्छी फिल्म है, तो इसी फिल्म का एक गीत हम सुन लेते हैं।

0: बात कर रहे हैं इतिहास की, तो आज के दिन को जानना भी जरूरी है। तो आज पता है क्या है, अभी कौन सा सप्ताह चल रहा है, हम अपने श्रोताओं को बताएं।
1: बिल्कुल,
0: वाइल्ड लाइफ वीक, दो जो कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जंगल से पेड़ों का नाम नहीं है बल्कि हजारों जीवों का घर माना जाता है। जंगल बचेगा तभी वन्य जीव बचेंगे और प्रकृति का संतुलन बना रहेगा।
1: बिल्कुल सही, बाघ जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन जंगल का असली मालिक कोई एक जीव नहीं, पूरा पारिस्थितिक तंत्र है।
0: बिल्कुल, हाथी को जंगल का इंजीनियर कहा जाता है, वो पेड़ गिराता है, रास्ते बनाता है और उसके मल से कई पौधों के बीच दूर दूर तक पहुंचते हैं जो कि वृक्ष भी बन जाते हैं।
1: गिद्ध भले देखने में आकर्षक न लगे लेकिन प्रकृति के सफाई कर्मी है, मृत पशुओं को खाकर वे बीमारियों के फैलाव को रोकने में मदद करते हैं।
0: मधुमक्खियां छोटी होती जरूर हैं, लेकिन खेती और खाद्य सुरक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परागण के बिना हमारी थाली भी

0: अधूरी हो सकती है।
1: सांपों से डरने की बजाय उनके महत्व को समझना भी चाहिए। वे चूहों जैसे जीवों की संख्या नियंत्रित कर किसानों के मित्र की भूमिका निभाते हैं।
0: जंगल में हर जीव की अपनी भूमिका है, छोटा कीड़ा हो या विशाल हाथी। किसी एक कड़ी के कमजोर होने से पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो सकती है।
1: वन्य जीवों को बचाना केवल बाघ या हाथी को बचाना नहीं, इसमें तितली, गोरैया, मेंढक, सांप और छोटे छोटे कीड़े भी शामिल हैं।
0: जंगल में पिकनिक मनाते समय एक बात याद रखें, जंगल हमारा मनोरंजन स्थल नहीं, किसी का घर है। जानवरों को खाना खिलाना प्रेम नहीं, कई बार उनके प्राकृतिक व्यवहार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जंगल से लौटते समय वहाँ अपना कचरा छोड़ना जैसे किसी के घर जाकर अपना कूड़ा उनके कमरे में हम छोड़ आए हैं, ऐसा होता है।
1: वन्य जीव सप्ताह हमें सिर्फ जानवरों की तस्वीरें देखने का अवसर नहीं देता, बल्कि यह याद दिलाता है कि हम इंसान प्रकृति का हिस्सा हैं, उससे अलग नहीं हैं। और सबसे खूबसूरत बात, जंगल में शेर की दहाड़ जितनी जरूरी है उतनी ही किसी छोटी चिड़िया की चहचहाट भी। यही प्रकृति की खूबसूरती है।
0: और बात चिड़िया की हो रही हो तो छोटी चिड़िया को उड़ते देखना, उन्हें मदमस्त हवा में घूमते देखना, उनकी चहचहाट अपने आप में ही एक सुकून दे जाती है।

0: बात कर रहे हैं आज के दिन की, तो आज एक बहुत ही खास दिन है। पता है आज क्या है? आज है अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह।
1: बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो संविधान ने अस्पृश्यता को अस्पष्ट रूप से समाप्त कर दिया है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में व्यवहार निषिद्ध है।
0: बिल्कुल, किसी की जाति, उसके सम्मान, क्षमता या इंसान होने की कीमत तय नहीं कर सकती।
1: बिल्कुल
0: हाँ बिल्कुल, मंदिर, स्कूल, कुआं, सड़क या सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक जीवन में बराबरी हर व्यक्ति का अधिकार है।
1: महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ लंबे समय तक सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया और इसे समाज के लिए कलंक माना।
0: बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता और सामाजिक न्याय को लोकतंत्र की बुनियाद माना है।
1: असली बदलाव सिर्फ कानून से नहीं आता, हमारी भाषा, व्यवहार और रोजमर्रा की सोच में समानता दिखाई देनी चाहिए।
0: किसी को उसके जन्म या जाति के आधार पर अलग करना समाज को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बनाता है, इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, बच्चों को बचपन से ही यह सिखाना जरूरी है कि कोई छुआछूत नहीं, सब बराबर हैं, सब सम्मान के अधिकारी हैं।
0: छुआछूत मिटाना केवल सरकार या कानून की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक के व्यवहार की जिम्मेदारी है। विनोद जी, अब बहुत पहले ऐसा देखा जाता था छुआछूत बहुत ज्यादा थे, धीरे धीरे समय बदला, परिस्थितियां बदली, अब लोगों को समझ में आ गया है कि छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा कोई नहीं होता। अब हमारे देश में लोग बहुत ही प्यार से मिलजुल कर रहते हैं, तो चलिए इसी बात पे एक सुंदर सा गीत हम अपने श्रोताओं के साथ सुनते हैं।

0: बात कर रहे हैं आपस में प्रेम करने की, आपस में मिलजुल कर रहने की, तो इंसान को इंसान से तो मिलजुल कर रहना चाहिए, साथ ही हमें मिलजुल कर प्रकृति के साथ भी रहना चाहिए। जैसा कि हम बता रहे थे कि अभी वन्य जीव संरक्षण सप्ताह भी चल रहा है, और प्रकृति जो है ना विनोद जी, हमेशा हमारा साथ देती है। तो आपको नहीं लगता कि प्रकृति में कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी हैं जिनकी जानकारी हम बहुत कम लोगों को है?
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ ऐसी जानकारी हम अपने श्रोताओं को देते हैं और बात करते हैं आदिवासियों के पूजा स्थल जाहिर थान की, जो हालिया सर्वे में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा केंद्र बनकर सामने आया है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में संथाल, भूमिज, पहाड़िया और मुंडा जनजातियों के लोग बाहा पर्व, सरहुल और अन्य मौकों पर जाहिर थान जाकर पूजा करते हैं। आमतौर पर गांव के बाहर साल के वृक्षों के किसी खास स्थान को पूजा स्थल बनाकर जाहिर थान बनाया जाता है। आदिवासी उक्त पवित्र वन स्थल में प्रकृति माता का निवास मानकर पूजा करते हैं। उक्त स्थान पर पेड़ों के काटने की सख्त मनाही होती है। यह प्रकृति संरक्षण का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो आदिवासी संस्कृति में प्रकृति और मानव के गहरे संबंधों को भी दर्शाता है।
0: बिल्कुल सही बात है, और हम सभी जानते हैं कि प्रकृति और इंसान एक दूसरे के पूरक हैं, इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हाल ही में वन विभाग की ओर से जारी किए गए एक सर्वे में कहा गया है, वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि छोटे छोटे पवित्र क्षेत्र बड़ी मात्रा में कार्बन को संग्रहित कर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहे हैं। अध्ययन में पाकुड़ जिले के 6 वन प्रखंडों में स्थित 46 जाहिर थान का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है।
1: बिल्कुल, शोधकर्ताओं ने पेड़ों की जैव भार, मिट्टी के कार्बन और पत्ती कचरे का जो विश्लेषण कर यह पाया है कि इन उपवनों में लगभग 31,000 टन प्रति हेक्टेयर कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण की क्षमता है। यह शोध यह भी दिखाता है कि आदिवासी समुदायों की पारंपरिक संरक्षण परंपराएं आधुनिक जलवायु नीतियों के लिए प्रेरक बन सकती है।
0: बिल्कुल सही बात है, और प्रकृति संरक्षण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस बात को मान के चलिए कि अगर प्रकृति असंतुलित रहेगी तो हमारा पूरा जीवन असंतुलित रहेगा, और हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जा पाएंगे।
1: हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा केदारनाथ के बाद फिर
0: नेपाल जो बाढ़ आई, और नेपाल के बाढ़ का असर ये हुआ है कि बिहार में बिना बारिश के ही बाढ़ है।
1: और अभी अगर हालिया बात करें तो साहिबगंज की जो स्थिति है, जो कि पूरे झारखंड में एकमात्र जगह साहिबगंज में गंगा बहती है, उसका कटाव इतना तेजी से हो रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से जो ट्रेनें हैं उनकी आवागाही, मैंने कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कुछ ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई हैं, तो इसे समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।
0: तो इसलिए प्रकृति को बचाएं जहां भी मौका

मिले, थोड़ा सा ही छोटा सा प्रयास जरूर करना चाहिए ताकि हम धीरे ही धीरे सही चलकर अपनी गंतव्य तक पहुंच पाए और अपने प्रकृति को संतुलित रख पाए।

0: बात हो रही है चलने की, तो एक सवाल मैं करूं आपसे। गाड़ी चलाते हैं
1: बिल्कुल।
0: तो गाड़ी चला, जब पहले आपके पास जो पुरानी गाड़ी होगी और आज जब नई गाड़ी होगी, तो उसमें कितना अंतर है?
1: बिल्कुल। जैसे जैसे मतलब कि अब तो कहा जाए युग की बात हो रही है, युग बदल चुका है और बहुत सारी इसमें जो तकनीकी चेंजेज बहुत सारे आए हैं। पहले जो गाड़ियां होती थी उसकी स्टीयरिंग या फिर विंडो की बात कर ले, कुछ बात कर ले, तो आज और कल में काफी कुछ अंतर हुआ करता था,
0: गाड़ियां तो
1: है
0: बदल
1: ना।
0: गई, उसके साथ भी बदल गया गाड़ियों गाड़ी चलाने का अंदाज। पता है आपको,
1: बिल्कुल।
0: कार खतरे को भापकर अब जैसे आप गाड़ी में हैं, अभी जैसे गाड़ियां आ गई हैं, ऐसी गाड़ियां बन रही है कि अगर कार ने खुद ही खतरा भाप लिया तो आपको सतर्क कर देगा, और लेन से भटक गए अगर तो भी आगाह कर देगा। इसलिए समझिए कि ड्राइविंग में तकनीक की भूमिका बहुत बढ़ गई है।
1: बिल्कुल। यही नहीं, अगर हम बात करें तो एडवांस्ड जो ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम कार्य करता है, इसमें काम कर रहा है, और ADAS या अडास के फीचर कैसे बढ़ाते हैं सुरक्षा, आप कुछ बताएं इस पे।
0: बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं को बताएं कि कारों में अब हादसे की आशंकाओं को पहले से भांपने वाली तकनीक पर जोर दिया गया है। कैमरा, रडार और सेंसर से लैस ADAS, या जिसे अडास लेवल भी कहते हैं, इसी सोच का हिस्सा है। यह ड्राइविंग के दौरान सड़क और आसपास के हालात पर नजर रखकर जरूरत के मुताबिक ड्राइवर की मदद करता है। तो बहुत ही आसान हो गई है आज चीजें जीवन में विनोद जी, और शायद यही वजह है कि लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, एडवांस चीजों को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें बेहद मजबूत बनाया जा
1: और
0: रहा
1: बिल्कुल
0: है।
1: एडवांस, ऐसा ऐसा वैसा नहीं, अब तो मतलब कि ऐसा भी सिस्टम आ रहा है कि AI के सहारे भी गाड़ियां चलेंगी,
0: बिल्कुल,
1: बिना ड्राइवर के
0: ड्राइवर के, ड्राइवर
1: गाड़ियां गाड़ियां
0: चलती हैं,
1: चलेंगी और
0: बहुत
1: चलती भी
0: चलती
1: हैं।
0: भी हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ड्राइविंग अगर आप करने के शौकीन हैं तो इन सब कारों का मजा उठा सकते हैं, लेकिन ड्राइव करिए लेकिन सुरक्षा के साथ। अपनी
1: बिल्कुल।
0: सेहत का और सुरक्षा का ख्याल जरूर रखना है, कितनी भी नई तकनीक आ जाए उसके साथ मस्ती मजाक नहीं करना
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल, आफ्टर ऑल वह मशीन ही है।
0: हाँ बिल्कुल, और उस पे कंट्रोल आपको रखना है। ऐसा नहीं हो कि तेज चलाने या एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हम कुछ ऐसे ही कर दें जो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह हो। बात सेहत की हो रही हो तो मौसम अभी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चल रहा है, ऐसे में हमारे श्रोताओं से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि वायरल फीवर बहुत तेजी से फैला हुआ है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इन सब चीजों से बचकर स्वस्थ रहें, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल अभी हमारे सामने हैं, उनका आनंद अगर आपको लेना है तो स्वस्थ रहना ही होगा।
1: बिल्कुल।
0: और देखते देखते घड़ी हमें जो है ना अब संकेत देने लगी है कि समय बहुत ज्यादा नहीं है। तो अपने श्रोताओं से हम इतना ही कहेंगे कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका हर दिन शुभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जोहार। रांची से सुनीता,
1: और विनोद को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: जोहार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सभी को सुनीता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम फिल्म वंदना के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे अनजान ने, धुन बनाई है रवि ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतक बीरक, मीका बीरक, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। लीजिए अपनी पसंद का सुनिए फिल्म वंदना का ये खूबसूरत सा गीत।

0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर।
1: शगन आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे जोहर रांची कार्यक्रम। अगला गीत हमने लिया है फिल्म एक नजर से, जिसे गाया मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। साथ ही आप हैं जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, शबाना आलम, नाज प्रवीण और चांदनी नाज। आई आपकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म एक नजर से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। अगला गीत हमने लिया है फिल्म सौदागर से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, और महादेव घाट अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर। अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म सौदागर का ये खूबसूरत सा गीत।

प्यार से सावन इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले हमारे सभी आप बहुत ही प्यारे से श्रोता हैं। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, बाबा धाम से आप हैं मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी व प्रतिज्ञा। साथ ही आप हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर राही, श्रीमती सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर। बदलापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत गवहानकर, प्रणीता गवहानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवहानकर, श्रीमती वैशाली गवहानकर, श्वेता सुमित गवहानकर, कुमारी ध्वनि गवहानकर। परी लीजिए अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म प्यासा सावन में लता मंगेशकर को।

और अगला गीत हमने लिया फिल्म हम किसी से कम नहीं से। इस गीत को गाया मोहम्मद रफी ने, गीत के बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है आरटी बर्मन ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं राजनंद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फरजू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, लुधियाना पंजाब से आप हैं अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर, साथ ही आप हैं औरंगाबाद से राजेश शाबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, बड़ा बाम्बो सुपाईसाई से आप हैं देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेन, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से आप हैं कोमल बेसरा, बासंती बेसरा, अनु माली, सिद्ध कुमारी और पूजा, साथ ही आप हैं बनमाली। आप सभी ने कहा है कि आप अपनी पसंद का यानी हमारी पसंद का कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, तो चलिए हम आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म हम किसी से कम नहीं से सुनवाते हैं। और हमारी आपसे आग्रह है, कुछ यही चाहेंगे हम आपसे कि अपने पसंद के गीत सुनने के लिए हमें खत लिखते रहिए। हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहता है। खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रातों रोड रांची, पिन संख्या है 834001। आपकी पसंद का आखिरी गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म हम किसी से कम नहीं से।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है महिलाओं को संबोधित हमारे दैनिक कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। गृहलक्ष्मी में आज आप चर्चा सुनेंगे नारी शिक्षा, बदलाव की पहली सीढ़ी, महजबी की रसोई और लता की बातें आपके साथ होंगी। जानकारी मिलेगी सुनैना समृद्धि योजना के बारे में। आज के कार्यक्रम में आपके साथ हैं आपकी दो बहुत ही प्यारी सी सखियां लता और महजबी। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और आज हम बात करेंगे ऐसे विषय की जो केवल एक महिला के जीवन को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के भविष्य को बदलने की ताकत रखता है।
1: हाँ लता, मैं जमीन का भी बहनों से स्वीकार करिए नमस्कार। आज की हमारी जो चर्चा का जो विषय है नारी शिक्षा बदलाव की पहली सीढ़ी। कहा जाता है ना कि एक पुरुष को शिक्षित करने में एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला को शिक्षित करने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार में बच्चों की पहली शिक्षिका अक्सर माँ ही होती है।
0: हाँ बिल्कुल महजबी, शिक्षा नारी को केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाती बल्कि उसे अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और संभावनाओं को समझने का अवसर देती है। शिक्षित महिला अपने स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, परिवार की आर्थिक स्थिति और अपने भविष्य से जुड़े फैसलों में अधिक जागरूक भूमिका निभा सकती है।
1: हाँ लता, लेकिन आज भी कई जगहों पर बेटियों की पढ़ाई को लेकर चुनौतियां मौजूद हैं। आर्थिक स्थिति, स्कूल की दूरी, घरेलू जिम्मेदारियां, बाल विवाह और सामाजिक सोच जैसी बाधाएं कई बेटियों की शिक्षा का रास्ता रोक देती है।
0: हाँ बिल्कुल, ऐसे में जरूरत है कि हम यह समझे कि बेटी की शिक्षा खर्च नहीं भविष्य में किया गया निवेश है।
1: हाँ, जब एक बेटी पढ़ती है ना तो उसमें आत्मविश्वास आता है, वो अपने अधिकारों को समझती है, अपने फैसले लेने का साहस पाती है और समाज में अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ती है। और यही इनकी जो आत्मविश्वास है वो नारी शिक्षा का मतलब केवल नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा का अर्थ है आत्मनिर्भरता, जागरूकता, सम्मान, निर्णय लेने की क्षमता।
0: वाह, बहुत खूब कहा तुमने मैजेबी, क्योंकि शिक्षा का अर्थ सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही नहीं है, वहीं तक यह सीमित नहीं है। शिक्षा का सारांश अगर हम यूं समझे तो इससे एक बेटी के अंदर आत्मनिर्भरता, जागरूकता, उसका सम्मान, उसके निर्णय लेने की क्षमता, ये तमाम चीजें विकसित होती हैं। और आज जरूरत है कि हम हर बेटी को स्कूल तक पहुंचने का अवसर दें, उसकी पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए परिवार, समाज और सरकार सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। क्यों मैं जब
1: और ये लता, हम ये भी बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हम नारी को जिस तरह से मजबूती करना है, तो वहां से अगर हम उनको मजबूत बनाएंगे ना तो सबसे जरूरी है कि जो उनकी परवरिश है वहां से शुरुआत करनी होगी। उनके जो बचपन में जिस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, उनकी शिक्षा होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। हर माता पिता को चाहिए कि अपने जो बच्चियां, खासकर बच्चियों को, ऐसा तो बच्चे दोनों लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन लड़कियां जो अपनी एक समाज जब पढ़ी लिखी होती है तो समाज का, परिवार का और हमारे देश को आगे बढ़ाती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी बच्चियां, उन बच्चियों को आप यहां तक सीमित ना रखें कि वो बस एक कुछ भी काम चलाओ, पढ़ाई कर ले और उसके बाद तो उनको तो किचन में जाना है। किचन भी जरूरी है, किचन भी एक बहुत ही अच्छा रास्ता है सभी के दिलों के में जाने के लिए। लेकिन लता, हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि हमें चाहिए बच्चियों की जो शिक्षा है अच्छी होनी चाहिए, आला होनी चाहिए और उनको आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है और तुमने सही कहा। वैसे आज तो समाज में ये मानसिकता जरूर बदली है कि बेटे और बेटियों में भेदभाव कम हुआ है, लेकिन आज भी एक वर्ग है जो अब भी ये भेदभाव की जो भावना है ना वो उनमें अब भी पनप रही है। तो हमें ये भेदभाव का जो लकीर है हमें उसे मिटाना है। हम सबके लिए बेटियां और बेटे सब बराबर हैं, सबको समान अवसर मिलना चाहिए।
1: और लता, ये जो बोल रही हूँ ना कि एक जो लकीर है उसे मिटाना, तो लकीर यहीं से ना मिट सकते हैं कि जब हम अपनी बच्चियों को शिक्षित करेंगे। वो मान लीजिए अगर किसी की माँ या भी लड़की, कोई भी औरत अगर अशिक्षित होती है तो वो जानती हैं परेशानियां, वो समझती हैं कि हमें किस मोड़ से गुजरना है, किस दिक्कत से गुजरना है, किस तरह से परेशानियों को उठाना है, आगे जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त भी किसी तरह की जरूरत पेश आ सकती है। तो हमें चाहिए कि उस परेशानी से बचाने के लिए अपनी बच्चियों को उच्च आला तालीम दें।
0: बिल्कुल, और अगर हम अपनी बेटियों को अवसर देंगे तो हमारी बेटियां भी बादलों में अपने पांव रख करके पंख फैला सकती हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो मैनू एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और जैसा कि बहनों आज है शनिवार और आज होगी लता की वादे, तो बहनों आज जैसा कि हम आपके लिए खास कार्यक्रम पेश कर रहे हैं और बातों ही बातों में बहुत सारी जानकारी भी आपसे साझा होगी, क्यों मैं भी।
4: तो लता आज अपने जो विषय है लता की बातें में क्या बातें करोगी, क्या चीज है जो हमारी बहनों को टिप्स दोगी, बताओ।
3: बिल्कुल मैं भी। बहनों त्योहारी मौसम चल रहा है और त्योहारों की खरीदारी में हमें मन तो बहुत होता है कि बहुत कुछ खरीद ले, लेकिन सावधानी जरूरी है। तो आज लता की बातें में त्योहारों की खरीदारी में सावधानी जरूरी विषय पर हम बात करेंगे। त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों की रौनक बढ़ जाती है ना बहनों। कपड़े, मिठाइयाँ, सजावटी सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, गहने, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें की खरीदारी हम सब शुरू कर ही देते हैं और पसंद भी करते हैं करना। लेकिन त्योहारों की इस खुशी के बीच हमें अपनी जेब और सेहत दोनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अक्सर त्योहार के दौरान बाजारों में आकर्षक ऑफर और भारी छूट के विज्ञापन देखने को मिलते हैं और हम इन्हीं विज्ञापनों के चक्कर में पड़ जाते हैं और ऐसे में जल्दीबाजी में खरीदारी करने के बजाय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना।
4: हाँ लता, तुमने बहुत ही अच्छी बात कही कि इस यानी कि त्योहार का सीजन तो लगभग शुरू हो गया है, तो सबसे पहले आपने जिस तरह से कहा कि बजट तय करें तो अच्छी बात है। जरूरत और इच्छा में अंतर समझे, केवल छूट देकर ऐसी चीजें ना खरीदे जिसके वास्तव में जरूरत ही नहीं है। खरीदारी की सूची पहले से बना ले। ऐसा नहीं है कि आप बाजार गए, जो भी अच्छा लग रहा है आप उसे लेकर के चले आए।
3: बिल्कुल। और बहनों दूसरी जरूरी बात यह है कि कीमत और गुणवत्ता की जांच जरूर होनी चाहिए। किसी भी सामान की खरीदारी से पहले उसकी कीमत, गुणवत्ता, पैकिंग, निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि जरूर देखें। खाद्य पदार्थों में विशेष सावधानी बरतें, पैकेट पर लिखी जानकारी और सील की जांच किए बिना सामान न खरीदें।
4: और ये जिस तरह से तुमने कहा कि हर चीज की आप सावधानी जरूर बरते, हाँ सही बात है। रंग, गंध या स्वाद में असामान्य लगने वाली चीजें से बचे। खुले में रखे खाद्य पदार्थों की स्वच्छता पर भी आप जरूर ध्यान दें और संभव हो तो भरोसेमंद दुकान से ही खरीदारी करें। और यहाँ पे लता एक चीज जरूरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान आप अगर खरीद रहे हैं तो बिल जरूर लें और इसके अलावा वारंटी, गारंटी और रिटर्न की शर्त तो को जरूर समझ ले। ऑनलाइन खरीदारी करते समय वेबसाइट या विक्रेता की विश्वसनीयता की जांचें। किसी अनजान लिंक पर आप क्लिक बिल्कुल भी ना करें। भुगतान करने से बचे और हाँ, डिजिटल भुगतान में भी

0: तो मैंने बात हो रही थी त्योहारी मौसम की और त्योहारों का मौसम हो और रसोई की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है?
1: सही है। तो बहनों, कहते हैं ना कि किसी भी दोस्त या परिवार के सदस्यों को अगर खुश करना है तो कुछ स्वादिष्ट पकवान परोसिए। बहनों, पकवान हमारे भोजन और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में स्वादिष्ट और खास पकवान बनाए जाते हैं।
0: हाँ बहनों, हम जानते हैं कि पकवान केवल स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि प्रेम अपनापन भी बांटते हैं और यही एक दूसरे को करीब भी लाते हैं।
1: लता, बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि हमारे वो पकवान जो बहुत खास होते हैं, जिन्हें लोग भूलते नहीं है, और फरमाइश भी होती है कि हम आएंगे ना तो आप अपने हाथ से वही पकवान खिलाइए।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल
1: तो
0: सही कहा।
1: अब त्योहार का जैसे कि तुमने कहा कि सीजन शुरू होने वाली, तो क्यों ना हम अपनी बहनों को रस मलाई बनाने की विधि बता दें।
0: क्या बात है,
1: तो बहनों तैयार रहिए, हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री लगेंगे। सबसे पहले आप रसमलाई की टिक्की के लिए दूध से बना ताज़ा पनीर 250 ग्राम या आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं कुछ के हिसाब से, लेकिन यहाँ हम 250 ग्राम के हिसाब से बता रहे हैं। मैदा 1 चम्मच, चीनी 1.5 कप, पानी 4 कप, और दूध मलाईदार रबड़ी के लिए, इसके लिए आप तैयार रखें फुल क्रीम दूध 1 लीटर, चीनी 4-5 बड़े चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच और केसर के 5 से 6 धागे। आप सजावट के लिए कटे हुए बादाम, पिस्ता 2 बड़े चम्मच ले सकते हैं, यानी अपने ड्राई फ्रूट जिस तरह से भी वो सजावट के लिए ले सकते हैं। विधि की तरफ आप आए कि हम बताते हैं कि विधि बनाने की क्या है। पनीर तैयार करने के लिए पनीर को अच्छी तरह मस लें। अब जब तक यह बिल्कुल मुलायम ना हो जाए इसमें मैदा डालकर 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से और गूंदें। टिक्कियां बनाने के लिए आप इसे पनीर की छोटी छोटी गोलियां बनाकर हथेली से हल्का हल्का चपटा करके रख ले और ध्यान रखें कि इसमें दरारें बिल्कुल भी ना आए, दरार से खूबसूरती खराब हो जाती है। चाशनी के लिए बहनों, एक बड़े बर्तन में 1.5 कप पानी चीनी और 4 कप पानी डालकर तेज आंच पर उबालें। तेज आंच का मतलब मीडियम होना चाहिए कि बहुत ज्यादा तेज नहीं, आप इसे देख ले और ज्यादा धीमी आंच पर पकाएं। पनीर पकाएं, उबलती हुई चाशनी में पनीर की टिकिया डालें, बर्तन को ढककर लगभग 12 से 15 मिनट तक मध्यम आंच पर इसे पकाएं धीरे धीरे। टिकिया फूल कर आप देखेंगे कि लगभग दुगनी हो जाएंगी। और रबड़ी तैयार करने के लिए आप दूसरे भारी तले के जो बर्तन में 1 लीटर दूध डालकर उबालें, फिर धीमी आंच पर पकाते हुए बीच में चलाएं ताकि दूध नीचे ना लगे, यानी कि उसे धीरे धीरे आपको चलाना है। दूध जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसमें चीनी, इलायची पाउडर और केसर के जो 4-5 धागे हैं ना, उसे मिला करके थोड़ी कुछ मिनट के लिए आप और पकाएं। टिक्कियों की जो चाशनी से उसे निकालें आप, जिस तरह से आपने तैयार रखी थी पनीर की टिक्कियाँ को हल्के हाथ से दबा कर जो उसका एक्स्ट्रा चाशनी होता है ना उसे दबा करके निकाल दें। अब इन टिक्कियों को तैयार गर्म

0: में डालकर 15 से 20 मिनट में धीमी आंच पर रहने दें ताकि दूध का जो स्वाद अच्छी तरह इसे सोख ले। इसे थोड़े से मतलब सोखने के लिए तो आप इसे थोड़ा सा इसे छोड़ना पड़ेगा। ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालें सजावट के लिए। लीजिए रस मलाई को आप अगर जो कमरे के जो ठंडा होने के दें और इसे फिर कम से कम 2-3 घंटे फ्रिज में रखें, यानी कि ये लीजिए ठंडे ठंडे आपका रस मलाई तैयार है। आप इसे परोसे और वाह वाह वाह ही लूटे।
1: क्या बात है मैं जब भी तुमने तो वाकई बहनों के और मेरे मुंह में भी पानी जो है वो तो ला ही दिया है। तो हम आशा करते हैं कि बहनें इस त्योहारी मौसम में रस मलाई अपने किचन में जरूर ट्राई करेंगी। क्यों, और तुमने जिस तरीके से बताया कि कितना ये आसान तरीका तुमने बहनों को विधि बताया कि किस तरह से ये पूरी रस मलाई जो है हम बाहर का स्वाद जो है वो अपने घर
0: घर
1: ले
0: में ले
1: सकते
0: सकते
1: हैं।
0: हैं। बहनों किचन के बहुत सारे व्यवस्थित करने के ढंग होते हैं, अपने अपने सबके किचन किसी के छोटे होते हैं बड़े होते हैं, और किसी के तो मतलब क्या बोले कि जब जिनका कोई दिक्कत होती है तो वो अपने रूम में ही किचन को बना करके रखते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो इस तरह से व्यवस्थित रखने के लिए बहुत सारी टिप्स हमने पिछली बार भी बताया था कि आप अपने छोटे से किचन को किस तरह से व्यवस्थित रख सकते हैं। और छोटे किचन की कुछ बातें होती हैं कि आप उसे छोटे से जगह में आप किस तरह से डब्बे या शेल्फ को लगा करके आप रख सकते हैं। और
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ
1: यानी कि अपने किचन जो हमारा छोटा सा किचन है उसे भी हम बड़े किचन का रूप दे सकते
0: हाँ
1: हैं।
0: और ये तो हो गई किचन की बातें।
1: हाँ
0: अब हम क्या करेंगे ना कि फ्रिज में
1: हाँ
0: फ्रिज के लिए कुछ बातें हैं जो आगे बताएंगे, तो
1: बिल्कुल
0: क्यों ना हम एक प्यारा सा और गीत सुन ले।
1: हाँ हाँ एकदम।

0: बहनों, ये थी हमारी किचन की बातें, लता की बातें और बहुत सारी बातें थी हमने की। अब अगले शनिवार को हम और भी बातें करेंगे, किचन के कुछ बातें बताएंगे, किचन के टिप्स बताएंगे, और तब तक इंतजार कीजिए। और लता, हम बता दें कि अपनी बहनों को इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, अब दे महजबीन
1: और लता को इजाजत। नमस्कार।
2: लता महजबी के साथ आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पेरियोडिक एफएम अपडेट्स बेस्ड ऑन 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 टू बी हेल्ड इन जापान, हमारे दिल्ली केंद्र

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइव अपडेट ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इस वक्त के सबसे अच्छे अपडेट्स, बड़े अपडेट्स, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले की। द T20 मैच दैट इज प्रेजेंटली ऑन फॉर द गोल्ड मेडल, इंडिया वॉन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक बहुत ही विशाल स्कोर 211 का 20 ओवर में बनाया फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, जिसमें दो बल्लेबाजों की बहुत अहम कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। उसमें एक थे अभिषेक शर्मा, हु मेड 61 एंड 28 बॉल्स व्हिच इंक्लूड 3-4-7 सिक्सेस, एंड द अदर वन वाज ईशान किशन, माय अपोलॉजीज, द अदर वन वाज तिलक वर्मा, हु मेड 51 इन 22 बॉल्स। ईशान किशन की भी हम कह सकते हैं साझेदारी जो रही तिलक वर्मा के साथ वो बहुत जरूरी रही, क्योंकि उसी ने बूस्ट दिया तिलक वर्मा को हाफ सेंचुरी बनाने के लिए और साथ ही साथ भारत को एक बहुत ही सॉलिड टोटल पर फिनिश कराने के लिए। बदले में हमने देखा जब पाकिस्तान अभी बल्लेबाजी करने उतरी है तो उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में से 8 ओवर हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 51 रन अभी तक बनाए हैं और 3 विकेट उनके जा चुके हैं। एंड वी कैन से दैट इट इज द अक्षर पटेल शो दैट हैज बीन सो फार ऑन, क्योंकि साहिबजादा परान को अक्षर पटेल ने कैच पकड़ के आउट किया वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पे, मां सदाकत भी आउट हुए तो अक्षर पटेल की गेंद पे हुए, उस्मान खान भी जो इनके विकेट कीपर है उनको भी अक्षर पटेल ने ही आउट किया। तो एक तरीके से बापू शो इज ऑन राइट।
2: जी बिल्कुल, क्रिकेट में हम बिल्कुल गोल्ड मेडल के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन एक गोल्ड मेडल की बात कर लेते हैं जो सुबह आया। प्रणवी उर्स ने एशियन गेम्स में इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में स्वर्ण पदक जीत लिया। जी हां, 23 साल की प्रणवी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी है। प्रणवी ने 15 अंडर 265 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने आखिरी होल पर शानदार संयम दिखाते हुए पार खेला और सिंगापुर की शैनन सुआन, चीन टैन तथा चीन की तीन रूहंग को एक शॉट पीछे छोड़ दिया। इसके बाद महिला टीम स्पर्धा में भी भारत ने रजत पदक अपने नाम किया। प्रणवी उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर की भारतीय टीम ने 4 राउंड में कुल 14 अंडर 546 का स्कोर किया। चीन ने 22 अंडर 538 के साथ स्वर्ण और चीनी ताइपे ने 10 अंडर 550 के साथ कांस्य पदक जीता। वहीं पुरुषों की बात कर लेते हैं, वीर अहलावत छठे स्थान पर चल रहे हैं।
1: जी आश्री रिकर्व में भी आपको कुछ अपडेट्स दे दें, क्योंकि भारत की तरफ से धीरज बम्बा दिवारा और नीरज चौहान केम फेस टू फेस फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच, और हमने देखा कि नीरज वाज एबल टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल इन हिज नेम। दिस वाज अ मैच दैट हैपेंड बिटवीन टू इंडियन शूटर्स, कैन वी से। सो धीरज स्टार्टेड विद एन 8 बिफोर नीरज शॉट अ 10, धीरज हिट अ 10 फॉलोड बाय अ 9 बाय नीरज, धीरज देन अगेन वेंट ऑन टू हिट अनदर 10 एंड देयर बाय द मैच वॉज वन बाय नीरज 6-4 की रीडिंग पर टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल इन हिज नेम। आपको बता दें कि साउथ कोरिया फिनिश्ड ऑफ विद द गोल्ड इन द मेंस इंडिविजुअल रिकर्व, डिफीटिंग जापान्स जूनियर नाकानिशी 6-2 इन द फाइनल। एज अ रिजल्ट वी सॉ दैट जापान गॉट द सिल्वर व्हाइल भारत के नीरज चौहान टुक द ब्रॉन्ज मेडल।
2: जी कुश्ती से भी हम दो पदक यानी दो गोल्ड मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में सेमीफाइनल में कमाल की वापसी करते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया है। ताजिकिस्तान के आयाल बोलोस्क्यूबी को खिलाफ उनका जो मुकाबला था, अमन ने पहले पीरियड में 2-6 से हालांकि वहां ट्रेल कर रहे थे, पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने ऐसा पलटवार किया कि मुकाबले का रुख बदल दिया। अमन ने दूसरे पीरियड में 12 अंक बटोरे और आखिरकार 14-8 से मैच अपने नाम कर लिया। अमन सहरावत का फाइनल मुकाबला बेहद सख्त होने की संभावना है, क्योंकि उनके सामने डीपीआर कोरिया के चांग सॉन्ग हान होंगे जो पुरुषों के 57 किलोग्राम की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर है। वहीं अमन की मौजूदा रैंकिंग 20। खैर जब बात पहलवान की हो और मैट पर पहलवान उतर जाता है तो कागज पे क्या लिखा वो धरा का धरा रह जाता है। वहीं महिला 53 किलोग्राम में अंतिम पंगाल पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल में पहुंच गई हैं। उनके बारे में बताएं तो 53 किलोग्राम का खिताबी मुकाबला उनका सामना होगा 19 की क्योंकि मोए से जापान की खिलाड़ी है। हालांकि यहां पर अंतिम पंगाल मजबूत स्थिति में, वर्ल्ड नंबर 1 अंतिम पंगाल यहां पर गोल्ड मेडल जीत सकती हैं।
1: Right, and also a quick update from the world of volleyball, जहां Indian men's volleyball team finished 6th after losing their 5th and 6th place match to Thailand 3-2. India's campaign included a stunning fight back against Qatar, but a defeat to Pakistan ended their hopes of reaching the semi-finals. And as a result, भारत की men's volleyball team ने इस Asian Games के अंदर इस हार के साथ
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण का। शैक्षिक प्रसारण में आज आप सुनेंगे वार्ता, स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम। वार्ताकार है संजय कुमार, कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।
4: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, यानी परीक्षा के समय तनाव प्रबंधन, जिसमें हम प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल के पहलुओं पर विचार करेंगे। परीक्षा का समय आते ही घर का वातावरण बदल जाता है, बच्चों के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है, माता पिता की चिंता बढ़ जाती है, घर में बार बार एक ही वाक्य सुनाई देता है, पढ़ाई कर ली, परीक्षा सिर पर है। लेकिन आज मैं आपसे पढ़ाई के दौरान होने वाले तनाव की बात करना चाहता हूँ, विशेष रूप से उस तनाव की जो अक्सर हमारी अपनी आदतों से पैदा होता है। जब कोई बच्चा कहता है मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो हमारा पहला जवाब होता है स्ट्रेस मत। सुनने में यह सलाह बहुत आसान लगती है, लेकिन क्या वास्तव में तनाव लेना या न लेना हमारे हाथ में होता है? चलिए जरा हम अपने जीवन को याद करते हैं। क्या कभी किसी इंटरव्यू से पहले हमारे हाथ नहीं कांपे? क्या किसी महत्वपूर्ण निर्णय के पहले हमारी नींद नहीं उड़ी? क्या किसी प्रियजन की बीमारी ने हमें बेचैन नहीं किया? यदि उत्तर हाँ है, तो इसका अर्थ है कि तनाव केवल बच्चों की समस्या नहीं है, यह मनुष्य होने का स्वाभाविक हिस्सा है। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि तनाव कोई बीमारी नहीं है, यह हमारे शरीर और मन की एक स्वाभाविक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो कठिन हो, नई हो, चुनौतीपूर्ण हो या हमारे नियंत्रण से बाहर हो, तब हमारा मन प्रतिक्रिया देता है। यही प्रतिक्रिया तनाव कहलाती है। ध्यान देने वाली बात क्या है, तनाव पैदा करती है। एक ही परीक्षा है, एक विद्यार्थी कहता है मैं तैयारी करूंगा, जितना होगा उतना अच्छा करूंगा। दूसरा विद्यार्थी सोचता है अगर कम अंक आए तो मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। परीक्षा दोनों की एक ही है, लेकिन मानसिक स्थिति बिल्कुल अलग है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति किसी के लिए चुनौती होती है, किसी दूसरे के लिए संकट। तनाव का प्रभाव केवल हमारे विचारों तक सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, मन बार बार चिंता करने लगता है, पढ़ने बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता, फिर शरीर भी प्रतिक्रिया देती है, दिल की धड़कन तेज होना, सिर दर्द, नींद ना आना, थकान महसूस होना, मांसपेशियों में खिंचाव, ये सब उसी तनाव के लक्षण हैं। अब आइए परीक्षा की बात करें। जीवन फिर नीट, जी, एनडीए, यूपीएससी, कैट, न जाने कितने एग्जाम्स, जीवन के हर पड़ाव पर किसी न किसी परीक्षा से हमें गुजरना पड़ता है। इसलिए यह उम्मीद करना कि परीक्षा होगी लेकिन तनाव बिल्कुल नहीं होगा, यह यथार्थ नहीं है। परीक्षा होगी तो तनाव भी होगा। प्रश्न यह नहीं है कि तनाव होगा या नहीं, प्रश्न यह है कि हम उस तनाव को संभालेंगे कैसे। मेरे अनुभव में परीक्षा के समय सबसे बड़ा तनाव पाठ्यक्रम नहीं होता है, सबसे बड़ा तनाव होता है काम को टालने की आदत। अंग्रेजी और परसों का काम न जाने कब तक टलता

0: शुरू में हमें लगता है कि अभी बहुत समय है, लेकिन समय चुपचाप निकलता रहता है। फिर एक दिन अचानक कैलेंडर बताता है परीक्षा अब सिर्फ 10 दिन दूर है। अब वही किताबें पहाड़ जैसे लगने लगती हैं। जो अध्याय पूरे वर्ष में आराम से पढ़े जा सकते थे, वे 10 दिनों में असंभव लगने लगते हैं। यहीं से तनाव का जन्म होता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना अधिकांश समय परिणाम की चिंता में बिताते हैं। अगर कम अंक आ गए तो, अगर मेरा चयन नहीं हुआ तो, अगर सब लोग मुझसे आगे निकल गए तो, परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन समय पर पढ़ना, नियमित अभ्यास करना, दोहराना, यह सब हमारे नियंत्रण में है। याद रखिए, जब हम अपने नियंत्रण वाली चीज़ों को छोड़कर नियंत्रण से बाहर की बातों पर ध्यान देते हैं तब तनाव बढ़ता है, और जब हम रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तब आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए परीक्षा के तनाव का सबसे बड़ा उपचार कोई दवा नहीं बल्कि अनुशासन है। अनुशासन का अर्थ है हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, आज का काम आज पूरा करना, और सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करना। यही छोटी सी आदत आगे चलकर तनाव को आत्मविश्वास में बदल देती है। अब प्रश्न उठता है कि यदि तनाव स्वाभाविक है तो उसे कम कैसे किया जाए। सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि तनाव का समाधान अधिक पढ़ाई नहीं बल्कि सही ढंग से पढ़ाई है। विश्व प्रसिद्ध लेखक स्टीफन आर कोवी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में समय के उपयोग को 4 भागों में बांटा है। पहला, वे कार्य जो महत्वपूर्ण भी हैं और तत्काल करने योग्य भी। दूसरा, वे कार्य जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन अभी अत्यावश्यक नहीं है। तीसरा, वे कार्य जो तत्काल लगते हैं लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। और चौथा, वे कार्य जो न महत्वपूर्ण हैं और न ही अत्यावश्यक। यदि हम ध्यान से देखें तो अधिकांश विद्यार्थी पूरे वर्ष दूसरे वर्ग वाले कार्यों को टालते रहते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, नोट्स बनाना, दोहराना, पुराने प्रश्न पत्र हल करना, ये सब महत्वपूर्ण कार्य हैं। लेकिन क्योंकि परीक्षा दूर होती है इसलिए ये अत्यावश्यक नहीं लगते। फिर जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है वही कार्य अचानक पहले वर्ग में पहुँच जाते हैं, महत्वपूर्ण भी और अत्यावश्यक भी, और यहीं से घबराहट शुरू होती है। इसलिए परीक्षा की तैयारी का सबसे बड़ा मंत्र है महत्वपूर्ण कार्यों को उनके अत्यावश्यक बनने से पहले पूरा कर लेना। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अर्थात समय पर लगाया गया एक टाका बाद में 9 टाकों की आवश्यकता से बचा लेता है। यही सिद्धांत पढ़ाई पर भी शांत रहता है। जबकि पूरे वर्ष पढ़ाई टालने वाला विद्यार्थी अंतिम सप्ताह में 12-12 घंटे पढ़ने के बाद भी असुरक्षित महसूस करता है। अब आइए कुछ ऐसे सरल उपायों की बात करें जिन्हें हर विद्यार्थी आज से ही अपनाना शुरू कर सकता है। सबसे पहला उपाय, एक यथार्थवादी योजना बनाइए। ऐसा टाइम टेबल मत बनाइए जिसमें 14 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। छोटे लक्ष्य बनाइए, आज केवल 1 अध्याय, आज केवल 20 गणित के प्रश्न, आज केवल 2 घंटे पूरी एकाग्रता से अध्ययन। छोटी छोटी सफलताएं मिलकर बड़े आत्मविश्वास का निर्माण करती है। दूसरा, मोबाइल फोन पर नियंत्रण रखिए। आज पढ़ाई का सबसे बड़ा शत्रु कठिन विषय नहीं है बल्कि हर 5 मिनट में आने वाला नोटिफिकेशन है। एक संदेश देखने के लिए मोबाइल उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब निकल गया। यदि संभव हो तो पढ़ाई के समय मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें या किसी दूसरे कमरे में रख दें। तीसरा, पर्याप्त नींद लीजिए। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि पूरी रात जाग कर पढ़ना सफलता की निशानी है। वास्तव में नींद की कमी हमारी याद रखने की क्षमता, ध्यान और निर्णय लेने की शक्ति तीनों को कम कर देती है। थका हुआ मस्तिष्क अधिक समय पढ़ता है लेकिन कम याद रखता है। चौथा, अपने शरीर पर भी ध्यान रखिए। हल्का व्यायाम, 10-15 मिनट की सैर, गहरी सांस लेने का अभ्यास, पर्याप्त पानी और संतुलित भोजन, ये सब विलासिता नहीं बल्कि परीक्षा की तैयारी का हिस्सा है। स्वस्थ शरीर में ही शांत मन रहता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे विद्यार्थियों को बचना चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। हर विद्यार्थी के सीखने की गति अलग होती है। किसी मित्र ने 5 बार रिवीजन कर लिया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप पीछे रह गए हैं। अपनी यात्रा, अपनी तैयारी और अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। परीक्षा से ठीक पहले कोई नया विषय शुरू करने से बचिए। उस समय नए अध्याय से अधिक लाभ पुराने पढ़े हुए विषयों के दोहराव में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि किसी दिन योजना पूरी नहीं हुई तो स्वयं को दोष मत दीजिए। अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। एक दिन की चूक असफलता नहीं होती, बार बार हार मान लेना असफलता बन जाती है। अब मैं माता पिता से कुछ कहना चाहूँगा। परीक्षा के दिनों में बच्चों को केवल किताबों की नहीं विश्वास की भी आवश्यकता होती है। कृपया उनकी तुलना पड़ोस के बच्चों या रिश्तेदारों से न करें। हर बार यह मत पूछिए कितने घंटे पढ़े, कभी यह भी पूछिए आज कैसा महसूस कर रहे हो, कोई कठिनाई है क्या, क्या मैं किसी तरह मदद कर सकता हूँ। याद रखिए, बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से पड़ता है। यदि घर का वातावरण शांत होगा तो बच्चे का मन भी शांत होगा। और अंत में शिक्षकों से, शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाते, वे आत्मविश्वास भी सिखाते हैं। एक शिक्षक का एक प्रोत्साहन भरा वाक्य कई बार विद्यार्थी के जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए परीक्षा के दिनों में बच्चों की केवल गलतियां मत बताइए, उनकी छोटी छोटी प्रगति की भी सराहना कीजिए। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां प्रयास बढ़ता है, और जहां प्रयास बढ़ता है वहां सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या परीक्षा में अच्छे अंक ही जीवन की सफलता का अंतिम प्रमाण है? क्या किसी एक परीक्षा में असफल होने का अर्थ है कि जीवन की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं? यदि हम ईमानदारी से सोचें तो उत्तर है नहीं। दुर्भाग्य से आज अनेक विद्यार्थी परीक्षा को अपनी योग्यता नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व का पैमाना मानने लगे। उन्हें लगता है यदि मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। यही सोच तनाव को भय में बदल देती है। यहाँ मैं विद्यार्थियों और अभिभावकों से एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ। करियर और उद्देश्य एक ही चीज़ नहीं है। करियर केवल एक माध्यम है, उद्देश्य मंजिल है। मान लीजिए आपको रांची से वाराणसी जाना है। आप कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। यदि एक वाहन तो वाहन बदलेंगे, मंजिल वही रहेगी। जीवन में भी ठीक ऐसा ही होता है। यदि किसी विद्यार्थी का सपना डॉक्टर बनना तो मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, लोगों की सेवा करना उद्देश्य है। डॉक्टर बनना उस उद्देश्य तक पहुँचने का एक रास्ता है। यदि किसी कारण से मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं हो पाया तो क्या सेवा करने का उसका उद्देश्य समाप्त होगा? नहीं, वह प्रशासनिक अधिकारी, कार्य चिकित्सा तकनीक विकसित कर सकता है। वह उद्यमी बनकर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल या टेलीमेडिसिन सेवा शुरू कर सकता है। वह सामाजिक संस्था बनाकर स्वास्थ्य जागरूकता का अभियान चला सकता है। रास्ते बदल सकते हैं, मंजिल नहीं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका सपना भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का था। वे अंतिम चयन तक पहुंचे लेकिन चयनित नहीं हो सके। कल्पना कीजिए, यदि उन्होंने उसी दिन यह मान लिया होता कि अब जीवन समाप्त हो गया, क्या भारत को उसका मिसाइल मैन मिलता? क्या हमें वह प्रेरणा? उन्होंने रास्ता बदला लेकिन उद्देश्य नहीं छोड़ा, देश की सेवा करने का उद्देश्य। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है लेकिन पूरा जीवन नहीं। अच्छे अंक आपके लिए कई दरवाजे खोल सकते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से अपेक्षित परिणाम न मिले तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। जीवन हमेशा दूसरा अवसर देता है, इसलिए परीक्षा को पूरी ईमानदारी से दीजिए, पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को केवल अंकों से मत जोड़िए। और अंत में माता पिता से एक विनम्र निवेदन, अपने बच्चों से यह मत कहिए यदि इस बार अच्छे अंक नहीं आए तो सब खत्म हो जाएगा, बल्कि उनसे कहिए हम चाहते हैं कि तुम पूरी मेहनत करो, परिणाम चाहे जो हो हम तुम्हारे साथ हैं। विश्वास मानिए, यह एक वाक्य बच्चे के मन से आधा तनाव उसी क्षण दूर कर देता है। प्रिय शिक्षकों, आप बच्चों को केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा रहे हैं, आप उनके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। आपके शब्द कई बार उनके जीवन भर की आवाज़ बन जाती है। इसलिए बच्चों में अंक प्राप्त करने की क्षमता के साथ साथ असफलता को स्वीकार करने का साहस भी विकसित कीजिए। आज की चर्चा को मैं तीन छोटे संदेशों के साथ समाप्त करना चाहूँगा। पहला, तनाव शत्रु नहीं है, यह संकेत है कि चुनौती हमारे सामने खड़ी है। दूसरा, परीक्षा का सबसे बड़ा तनाव प्रश्न पत्र नहीं बल्कि काम को टालने की आदत है। आज का काम आज करना ही तनाव प्रबंधन का सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय है। और तीसरा, करियर जीवन का साधन है, उद्देश्य जीवन का अर्थ है। यदि रास्ता बदल जाए तो भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। आइए हम अपने बच्चों को केवल परीक्षा में सफल होना ही नहीं बल्कि जीवन की हर परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना करना भी सिखाएं। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।
1: स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे संजय कुमार से कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म डर का ये खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों ने। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है शिव हरि ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म दर्द का ये खूबसूरत संगीत किशोर कुमार आशा भोसले है खय्याम ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब बिर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने

पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीमा पार कराधान, नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके और भारतीय उद्यमों को वैश्विक

0: एक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
1: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्री सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। भारतीय दूतावास ने बचाव अभियान के दौरान निरंतर सहयोग और सहायता के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। और जापान में जारी एशियाई खेलों के क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 15वें ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बनाए। इससे पहले भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाए। इसके अलावा एशियाई खेलों में आज प्रणवी उर्फ ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास रच दिया है। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहुद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। That economic resilience cannot be separated from social resilience and that inclusion is the foundation of resilience in a rapidly changing world. Mr. Radhakrishnan made these remarks during the inaugural address at the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi today. The Vice President said, democracy and development can advance together with consensus, inclusion and responsive policy making, providing the foundation for sustainable growth. He stressed that true resilience lies in ensuring that no citizen, enterprise or region is left behind and called for collective efforts towards building a Viksit Bharat by 2047.
1: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there, we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
2: The government has successfully brought back the hardened narco-trafficking kingpin, Navpreet Singh from Turkey. Sharing this achievement of the country's enforcement agencies, Mr. Shah said that Navpreet Singh used to smuggle heroin and methamphetamine to India from Afghanistan by obtaining Turkish citizenship under the fake identity of Nabab Virk. He added that the agencies tracked him down, ripping apart veil after veil to unmask his true identity and secured his deportation. Home in with multiple cases involving drug trafficking and other crimes. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said

0: India is building a network of free trade relationships that could eventually cover nearly 75 to 80% of the world's economies. Addressing an event organized by the U.S. Indian Community Foundation in Chicago, Mr. Goyal said India has significantly expanded its trade negotiations in recent years, with several more talks underway. He said the growing network would give companies operating from India access to a much larger international market. Mr. Goyal said that before 2014, India had free trade agreements with economies representing around $10 trillion in GDP. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completed 12 years today. The first episode of the program was broadcast on this day in 2014 on the occasion of Vijay Dashami. The 138th episode of Mann Ki Baat was broadcast recently. Over the past 12 years, Mann Ki Baat has provided a unique platform to highlight the positive transformation taking place across the country and to encourage citizens to participate actively in India's development journey. Through the monthly program, the Prime Minister shares inspiring stories of people from across the country who are making a difference in areas including education, healthcare, environmental conservation, innovation and social service. The UAE Attorney General Counselor Dr. Hamad Saif Al-Shamsi has said that investigations into the Fly Dubai flight FZ1073 incident found that the co-pilot attempted to carry out a terrorist attack. Emirates news agency quoted Al-Shamsi saying the co-pilot began executing his plan during the flight by attacking the captain inside the flight deck with a crash axe and attempting to take control of the aircraft. Investigations are continuing to establish the full circumstances and motives behind the incident as well as any links, while technical examinations and analysis of physical and digital evidence are also underway. Five Indian nationals were rescued after a Kuwait-flagged tanker was struck by a projectile in the Strait of Hormuz. The Indian Embassy in Oman said in a post on social media today that it coordinated the rescue of the five Indians on board the MT Kazima 3, who were safely brought ashore. The mission thanked Omani authorities for their continued support and assistance during the rescue operation. In Asian Games cricket, India set a 212-run target against Pakistan in the gold medal clash at Nishin, Japan. In reply, Pakistan were 139 for 4 in 15.5 overs when reports last came in. In Asian Games, Indian archer Neeraj Chauhan upset compatriot Dheeraj Bumadevra 6-4 to bag the bronze medal in the men's individual recurve event in Nagoya, Japan today. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में खनिज सेस पर विवाद जारी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार के रुख को बताया संघीय ढांचे के खिलाफ। झामुमो सांसद महुआ माझी बोली, खनिजों पर पहला हक राज्य का। सरायकेला खरसावां में भीषण सड़क हादसा, कोलकाता से रांची आ रही यात्री बस पलटी, 20 से अधिक यात्री घायल। वियतनाम सड़क हादसे में जान गंवाने वाले झारखंड के दोनों युवकों के शव आज पहुंचेंगे कोलकाता। सड़क मार्ग से लाया जाएगा रांची और जमशेदपुर। राज्य में अगले दो दिन साफ रहेगा मौसम। 5 अक्टूबर से देवघर, दुमका और रांची सहित कई जिलों में फिर शुरू हो सकती है बारिश। और एशियन गेम्स में एक और स्वर्णिम सफलता, तीरंदाजी में भारत की कुमकुम मोहोद ने जीता स्वर्ण पदक। कुल 77 पदकों के साथ पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में खनिजों पर अतिरिक्त सेस वसूलने के राज्य सरकार के फैसले पर पक्ष विपक्ष में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्र के नियमों को दरकिनार करने के इस कदम को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है।
2: देश बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है। जब देश में कानून बन गया, एनार्की नहीं है ना कि हम नहीं मानेंगे, और लूट की छूट नहीं दे सकते, इलीगल माइनिंग करने नहीं देंगे, क्योंकि इलीगल माइनिंग करने से राज्य के राजस्व की हानि होती।
1: वहीं झामुमो सांसद महुआ माझी ने कहा कि खनिज संपदा पर पहला अधिकार राज्य की जनता का है।
3: केंद्र सरकार जिस तरह से तमाम नए नए नियमों को लागू कर रही है, उसे थोप रही है, तो राज्य सरकार

0: सर चारा ही क्या है, हमारे झारखंड के मिनरल से पूरा देश समृद्ध हो रहा है। यहाँ के लोग यहाँ का पॉल्यूशन झेल रहे हैं, यहाँ जमीन उनकी ले ली जा रही है, सब कुछ ये झेल रहे हैं और फायदा दूसरों को ही हो रहा है।
1: राज्य की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य में सियासत तेज है। भाजपा ने राज्य सरकार पर इस योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो का कहना है कि कई योग्य महिलाएं इस लाभ से अब भी वंचित हैं।
2: प्रमाणित करके छटनी कर रहे हैं, पहले जो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज आपको लेने चाहिए थी पहले ले ली थी, अब आप केवल उसमें देख रहे हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है कि नहीं है, ये देख करके कौन किस संप्रदाय का है, कौन किस जाति का है, ये भावना आपके बीच में, ये जो आपके पास आया है ये चीज ठीक नहीं है और इसे देश में बदनामी हो रही है झारखंड राज्य की।
1: पलटवार में कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बताया है।
3: यह सम्मान योजना जिस दिन से शुरुआत हुई इस राज्य में, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी की साजिश रही कि कैसे मैया सम्मान योजना को बंद करवाएं। लेकिन महागठबंधन की यह सरकार है साहब, हम किसी सूरत में मैया सम्मान योजना नहीं रोकेंगे, चाहे आप हमारा 1,36,000 करोड़ हड़प कर जाओ।
1: सरायकेला खरसावा के चौका थाना क्षेत्र में NH 33 पर आज तड़के एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। कोलकाता से रांची जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को

0: के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज अपने सफल 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन शुरू हुआ यह ऐतिहासिक कार्यक्रम अब तक अपनी 138 कड़ियों के जरिए देशवासियों से सीधा संवाद और जन भागीदारी का सशक्त माध्यम बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं द बैंकिंग सेक्टर क्लीन अप यानी जनधन क्रांति की।
1: अंत्योदय के विचार को सच करते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बना रही हैं। बैंकिंग व्यवस्था से दूर रहे करोड़ों लोगों के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना आर्थिक सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच बनकर उभरी है। इस योजना के मूल उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
2: जनधन योजना के तहत देश में 55 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए। जिनको कभी बैंक का दरवाजा देखने का सौभाग्य नहीं मिला था, ऐसे 55 करोड़ लोगों के खाते में ये काम कर रहा है।
1: राज्य में इस जनधन क्रांति का व्यापक असर दिख रहा है। अकेले बोकारो जिले में ही बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों के माध्यम से करीब 15 लाख से अधिक जरूरतमंदों के खाते खोले गए हैं। कोरोना संकट के मुश्किल दौर में जहां इन खातों ने सीधे नगद सहायता पहुंचाकर परिवारों को सहारा दिया, वहीं अब महिलाएं मुद्रा लोन लेकर स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। बोकारो की रीता देवी और कौशल्या देवी इस आर्थिक बदलाव को लेकर अपने अनुभव कुछ इस तरह साझा करती हैं।
3: बाबूडी के हैं कौशल्या देवी। हमको सरकार खाता दिया, हम नहीं जानते थे कि पैसा बैंक में आता था, इसीलिए हम सब सीख गए पैसा निकालने का रखने का, तो सुविधा हमको मिला। अब हम जानते बचत खाता में कितना पैसा बच।
4: मेरा नाम रीता देवी है। जनधन खाता भारत सरकार द्वारा दिया गया है। हम लोग अभी जनधन खाता होने के बाद इसमें किसी पर आधारित रहना नहीं पड़ता है।
1: स्पष्ट है कि जनधन खातों के माध्यम से शुरू हुई यह वित्तीय डिजिटल क्रांति अब झारखंड के ग्रामीण और शहरी इलाकों में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है। सबका साथ सबका विकास की यह भावना वास्तव में जनसेवा से देश सेवा के संकल्प को सिद्ध कर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए बोकारो से मनोज कुमार के साथ समाचार कक्ष से मैं कुंदन कुमार वर्मा।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,43,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। राज्य में 5 अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 5 अक्टूबर से देवघर और दुमका सहित कई जिलों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। हालांकि विभाग ने 8 अक्टूबर तक कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला तीरंदाजी में आज स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। भारत 17 स्वर्ण सहित कुल 77 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में खनिज सेस पर विवाद जारी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार के रुख को बताया संघीय ढांचे के खिलाफ। झामुमो सांसद महुआ माझी बोली, खनिजों पर पहला हक राज्य का। सरायकेला खरसावां में भीषण सड़क हादसा, कोलकाता से रांची आ रही यात्री बस पलटी।

से अधिक यात्री घायल। वियतनाम सड़क हादसे में जान गंवाने वाले झारखंड के दोनों युवकों के शव आज पहुंचेंगे कोलकाता। सड़क मार्ग से लाया जाएगा रांची और जमशेदपुर। राज्य में अगले दो दिन साफ रहेगा मौसम। 5 अक्टूबर से देवघर, दुमका और रांची सहित कई जिलों में फिर शुरू हो सकती है बारिश। और एशियन गेम्स में एक और स्वर्णिम सफलता, तीरंदाजी में भारत की कुमकुम मोहोद ने जीता स्वर्ण पदक। कुल 77 पदकों के साथ पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। घड़ी में बज रहे हैं तो खैर की डेढ़। मेरा नाम है दोस्तों साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी। और सबसे बड़ी खबर इस घंटे की ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा गोल्ड मेडल का T20 मुकाबला फाइनल्स, भारत ने उसमें अपना गोल्ड पक्का कर लिया है। जी हाँ, ऑफिशियल कंफर्मेशन का बस इंतजार हो रहा है, एक गेंद बची है ऑफिशियली मैच की समाप्ति में। भारत ने जहां आज पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 211 बनाए फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, व्हिच इंक्लूडेड टू वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस बाय अभिषेक शर्मा हु मेड 61 एंड 28 बॉल्स एंड तिलक वर्मा हु मेड 51 इन 22 बॉल्स हेल्पिंग इंडिया रीच टू 211। वहीं पाकिस्तान ने जब वो इस टारगेट को चेस करने के लिए उतरा, उनको चाहिए थे 212 जीतने के लिए, लेकिन पाकिस्तान जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ अ फ्यू रन्स। एंड एज आई से दैट, India have brought home the gold medal in the Asian Games 2026. Huge congratulations to the Indian men's T20 cricket team. Pakistan ki pari unke nirdharit 20 over mein chasing 211. They got completely wrapped up for 192 runs. Shahid,
2: शानदार तरीके से भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। उम्मीद भी की जा रही थी भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीतेगी, लेकिन पाकिस्तान इतना संघर्ष करेगा शायद इतनी उम्मीद नहीं थी साक्षी, जिस तरह से पाकिस्तान ने खेला। लेकिन भारतीय टीम ने हर क्षेत्र में पाकिस्तान को परास्त किया, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग।
1: जी ऑफकोर्स, और 6 विकेट गवा के पाकिस्तान ने 20 ओवर में 211 रनों को चेस करते हुए 212 उनको जीत के लिए चाहिए थे। 192 रन्स में इनके पूरे 20 ओवर समाप्त हो गए। पाकिस्तान की तरफ से सबसे अहम किरदार जिसने निभाया, जिस खिलाड़ी ने, वो रहे हसन नवाज, जिन्होंने 51 गेंदों में 96 रन्स बनाए। उनको दो बार जीवन दान भी मिला, पहली बार उनका विकेट ड्रॉप हुआ था 4 रन्स पे, उसके बाद 59 रन्स पे अगेन ही वॉज ड्रॉप्ड एंड देन ही वेंट ऑन टू मेक 96 रन्स, दी ओनली सोल इंपॉर्टेंट बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूटर या बैटर कहना चाहिए हमें, बिकॉज उसके अलावा बाकी सब खिलाड़ियों से कुछ खास हो नहीं पाया। ओवरऑल अ वेरी वेरी सॉलिड डिस्प्ले बाय द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, जैसे शाहिद ने सही कहा, तीनों क्षेत्रों में, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में आज।
2: जी बिल्कुल, शानदार प्रदर्शन किया था। अब 3 गोल्ड मेडल और आस है आज के दिन में, जैसा अंतिम पंघाल है, अमन सहरावत है, इसके अलावा हॉकी टीम से। जी हाँ, 3 गोल्ड मेडल और आने वाले, लेकिन कुछ और मुकाबलों की झलक आपको दिखाऊं। पुरुष स्थान के मुकाबले में भारत को थाईलैंड के हाथों 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और 5वें सेट तक खींचा। अगर सेट स्कोर की बात करें तो 25-19, 17-25, 25-21, 17-25 और 15-17 रहा। भारत ने 2 सेट जीते, लेकिन निर्णायक 5वें सेट में करीबी अंतर से हार गया।
1: जी, और अगर हम यहाँ पे रिकर्व के मैचेस की बात करें, आर्चरी में रिकर्व के, तो भारत के नीरज चौहान और धीरज बम्मा देवारा आज आमने सामने आए फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच, एंड उसमें हमने देखा कि नीरज चौहान बीट हिज फेलो कंपैट्रियट इंडियन धीरज बम्मा देवारा 6-4 इन द मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ब्रॉन्ज मेडल मैच टू क्लेम द ब्रॉन्ज मेडल। जी हाँ, ब्रॉन्ज मेडल घर में वापस आ गया, ये कहना चाहिए घर ही में आ गया भारत के, क्योंकि दोनों भारतीय आर्चर्स हम कहेंगे आमने सामने आज यहाँ पर थे। धीरज फिनिश 4th आफ्टर सेमीफाइनल डिपीट टू साउथ कोरियाज ली वुसियोक, और गोल्ड गया साउथ कोरिया का नाम, सिल्वर रहा जापान के नाम, ब्रॉन्ज आया इसमें नीरज के नाम।
2: जी रग्बी की बात कर लेते हैं, भारत 6 स्थान पर एशियन गेम्स में रहा रग्बी में। रग्बी सेवन टीम का अभियान जो महिलाओं का था 6 स्थान पर समाप्त हो गया। 5वें और 6 स्थान के मुकाबले में भारत को कजाकिस्तान से 0-20 से हार का सामना करना पड़ा। पहले हाफ में कजाकिस्तान ने 10-0 की लीड ली थी, बढ़त बनाई थी, और दूसरे हाफ में भी 10 अंक जोड़कर मुकाबला 20-0 से अपने नाम कर लिया।
1: जी, और अब भारत की एक बार मेडल टेबल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अब इस जीत के बाद, इस गोल्ड मेडल के साथ, जो भारतीय क्रिकेट टीम, मेंस क्रिकेट टीम T20 के अंदर हमारे लिए लेकर आज आई अगेंस्ट पाकिस्तान, भारत की जो गोल्ड है, गोल्ड मेडल्स, वो अब 19 हो चुके हैं। हमसे ऊपर है उज्बेकिस्तान 4 स्थान पर इस वक्त, जिनके पास 21 गोल्ड मेडल है। यानी भारत को अगर उज्बेकिस्तान के साथ टक्कर में आना है या उनको रिप्लेस करना है 4 स्थान पर, तो कम से कम हमें उज्बेकिस्तान के 21 गोल्ड के बराबर तो आना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि भारत इस समय 5वें स्थान पर कुल मिलाकर 81 मेडल्स कमा चुका है, जिसमें से ऑफकोर्स एज आई सेड 19 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज मेडल है। सो ओवरऑल सो फार apologies over there, 18 gold, 26 silver, 36 bronze, which makes it 80 medals in total for India. Yani, Bharat ko is waqt chahiye ki wo Uzbekistan ke saath agar barabari karna chahta hai, to unko kam se kam 3 medal aur kamane padenge. Ab dekhna hoga ki kis tarah se aaj ka din samapt hota hai Bharat ke liye. Ummeed karte hain ki Bharat chauthe sthan par is Asian Games mein apna safar samapt kar paaye. Filhal ke liye mujhe Sakshi Mandwal aur Mohammad Shahid Azmi ko dijiye ijazat. Hum judenge aapke saath ek bar fir se dopahar ke 2:30 baje.
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया
3: आप सुन रहे थे एशियन गेम अपडेट्स हमारे दिल्ली केंद्र से. आइए उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी अब सुनते हैं. कलाकार हैं श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी.

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई ये गजल।

जगजीत सिंह के गाए इस गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भील दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भील दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75% से 80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले

0: भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
1: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, और वो सब छोटे छोटे देश थे अभी तक। और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे, उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप विकसित देश, और उन सबकी अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
4: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गाने के, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पाता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गाइनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि ये भी हो जाएगा ऑपरेशन, जो आज भी आपका है ना नहीं है पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CPS में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जोरन जोनल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे न छूटे।
5: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वर द underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy, from there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: Reserve Bank ke governor Sanjay Malhotra ne

0: कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
1: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख कृष्ण स्वामी। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें, X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता के फाइनल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: अपडेट का
5: एशियन गेम्स 2026 IG नगोया।

0: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 पर ताजा अपडेट के साथ। घड़ी की सुई में 2:30 बज गए हैं और आज की सबसे खास बात है कि गोल्ड मेडल की हैट्रिक लग गई है। जी हां, 3 गोल्ड मेडल भारत ने अब तक जीत लिए हैं, लेकिन आने वाले एक घंटे में कुछ और पदक भारत की झोली में आ जाएंगे। उसी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। कुश्ती के मुकाबले शुरू होंगे और अगले एक घंटे में 3 बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले हैं। कुश्ती के मैट पर भारत का शानदार प्रदर्शन, जैसा मैंने बताया, जारी है। भारत के 4 पहलवान पदक की दौड़ में बने हैं, जिनमें से 2 पहलवान स्वर्ण पदक के लिए और 2 कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में अमन सहरावत ने सेमीफाइनल में तजाकिस्तान के अयाल बेलोविस्की को 14-8 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब अमन के पास स्वर्ण पदक जीतने का मौका है। अमन सहरावत का फाइनल मुकाबला डीपीआर कोरिया के चांग सॉन्ग हान से होगा, जो पुरुषों के 57 किलोग्राम की वर्ल्ड रैंकिंग पर टॉप पर हैं। वहीं मौजूदा रैंकिंग अमन की बात में 20 है। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम का जो भार वर्ग है, वहां अंतिम पंघाल शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल पहुंच गए। अंतिम की नजर अब स्वर्ण पदक पर होगी। सेमीफाइनल का मुकाबला अंतिम ने 6-1 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी, अब वह स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगी। अंतिम पंघाल जो विश्व रैंकिंग के पहले पायदान पर है, खिताबी मुकाबला उनका होगा, उनके सामने होंगी 19 नंबर की जो विश्व रैंकिंग है, जापान की क्वे का मोए, उनसे सामना होगा, जो 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट है। हालांकि उन्होंने गोल्ड मेडल 55 किलोग्राम भार वर्ग में जीता था। वहीं 2 और मेडल आने वाले जिनके बारे में बता दूं। दूसरी ओर 74 किलोग्राम में जो फ्री स्टाइल का मुकाबला है, सागर जगलान रेपेचेज मुकाबले में उज्बेकिस्तान के राजमबेक जमालबो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक के मुकाबले में जगह बनाई। कांस्य पदक का मुकाबला कुछ देर बाद उनका शुरू होने वाला, जबकि 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में हार गए थे, लेकिन उन्हें कांस्य पदक मुकाबला जीतने का भी मौका, हालांकि सेमीफाइनल मुकाबला बेहद करीबी था, 8-9 से दीपक पुनिया को शिकस्त मिली थी। यानी अमन सहरावत, अंतिम पंघाल, इसके अलावा सागर जगलान और दीपक पुनिया, इन चारों से पदक की भारत को उम्मीद है।
1: जी, और अब बात कर लेते हैं कि आज का दिन भारत के नजरिए से कैसा रहा। तो सबसे पहले द बिग न्यूज ऑफ द डे दैट केम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। आपको याद दिला दें कि एशियन गेम्स 2026 में सबसे पहला स्वर्ण पदक हमारे लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम लेकर आई थी T20 के मैदान में, और अब आज आखिरी दिन पर द इंडियन मेन्स T20 क्रिकेट टीम हैज ऑल्सो डिफीटेड पाकिस्तान एंड वन अस द गोल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट जो इस साल इंट्रोड्यूस हुआ हमारे एशियन गेम्स के उसमें कंटिजेंट के अंदर, 2 गोल्ड लेकर आया भारत के। आपको बताएं कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करके टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जिसमें उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 211 बनाए थे फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स बाय इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस बिकॉज ऑफ तिलक वर्मा एंड ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा एट द टॉप। एंड देन लेटर पाकिस्तान जब उसको चेस करने आई तो 192 पर पाकिस्तान की पूरी पारी सिमट गई। अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कमिंग ओवर देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस थैंक्स टू हसन नवाज हु वाज एबल टू मेक 96 इन 51 बॉल्स। उसमें हसन नवाज को 2 बार जीवन दान भी मिला, इसी वजह से पाकिस्तान शायद 192 तक पहुंच गया, बट स्टिल दे फेल शॉर्ट ऑफ द नीडेड रन्स टू चेज द टारगेट। ओवरऑल अगर बात करें तो आज भारत का दिन किस तरीके से रहा। दिन की शुरुआत दोस्तों हमने देखी होती हुई गोल्फ से, यहां पर प्रणवी उर्ज ने आज हिस्ट्री बना दी बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। ये 24 साल बाद हुआ था, क्योंकि इससे पहले गोल्ड गोल्फ में, अगर इंडिविजुअल गोल्फ में कभी आया था तो वो 2002 में था, जब शिव कपूर हमारे लिए वो गोल्ड लेकर आए थे। और उसके बाद हमने आर्चरी में देखा, अगेन हिस्ट्री गेटिंग क्रिएटेड टुडे, जहां पर कुमकुम महोद ने भी आज गोल्ड मेडल जीत कर हिस्ट्री बना दी आर्चरी के अंदर, जहां इंडियन वुमेन्स रिकर्व आर्चर ने आज एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड जीता। वहीं आर्चरी रिकर्व में भी आज हमने अपने नाम एक मेडल कर लिया, दैट मीन्स आर्चरी ओवरऑल बहुत अच्छा गया, बिकॉज नीरज चौहान वॉज फेस टू फेस विद ऑफकोर्स एन इंडियन धीरज, जो उनके सामने थे धीरज बुम्बा देवारा, एंड नीरज चौहान ने धीरज को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सो ओवरऑल अ गुड डे फॉर द इंडियन आर्चर्स एंड डेफिनेटली अ गुड डे इफ यू लुक एट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया ऑल्सो शाहिद फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एशियन गेम्स का, क्या लास्ट डे इंडियन पार्टिसिपेशन का।
0: जी बिल्कुल, लास्ट डे, अभी कई मेडल आने बाकी है, कोई भी मुकाबला जीत सकता, कोई भी खिलाड़ी मुकाबला हार सकता, ऐसा ही एक मुकाबला हारी है एक खिलाड़ी फुजिनामी, जो 9 साल तक लगातार अजेय थी, 9 साल तक कोई भी कुश्ती नहीं हारी थी, 155 मुकाबला उन्होंने लगातार जीता था। 57 किलोग्राम वर्ग में उत्तर कोरिया की विश्व पदक जो रजत पदक विजेता खिलाड़ी है इल सिन सोन, उन्होंने उनके जो रथ का जो घोड़ा था लगातार अजय जो रथ पे सवार थी पिनफॉल करके उनको शिकस्त दी। आपको यह भी बता दूं, इसी खिलाड़ी ने आज भारत की जो खिलाड़ी मनीषा उसको हराकर 155वीं जीत दर्ज की थी, लेकिन 156वीं जीत दर्ज नहीं कर पाए दोस्तों। और क्या कुछ घटित होता, क्या रिकॉर्ड्स बनते हैं, आने वाले अगले घंटे में आपको बताएंगे जब हम आपसे मुखातिब होंगे 3:30 पर। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओ, आइए सुनते हैं फौजी भाइयों को समर्पित हमारा कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम हम सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
5: दम्भ का स्तंभ खंडम दम त्रिशूल गाड़ के प्रलयंकारी गति से बिन

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: கடற்படை பாரதிய சேனா
1: जय भारती कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं हूं सुनीता। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म सलामे इश्क के इस गीत के साथ, जिसे गाया है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है शंकर एहसान लॉ ने।

अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर।

इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान ने और शब्द रचना विशाल डडलानी की, संगीत है विशाल और शेखर का।

बदला भोर इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे आतिफ असलम की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं दिनेश विजयन और प्रिया सरैया ने।

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश दौरे के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने भोपाल में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सहकार से समृद्धि के मंत्र को दोहराया। देश में लागू तीन नए कानूनों की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि पूर्व के कानून अंग्रेजों ने अपनी सरकार को बचाने के लिए बनाए थे। नए कानूनों का उद्देश्य नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाएगी। इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ई समन, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है।
0: जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में जेल में बंद जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। हालांकि अभी इसकी सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। उनकी ओर से निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज करने को चुनौती दी गई है। सरायकेला खरसावां के चौका थाना क्षेत्र में NH 33 पर आज तड़के एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। कोलकाता से रांची जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज अपने सफल 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन शुरू हुआ यह ऐतिहासिक कार्यक्रम अब तक अपनी एक कड़ियों का सशक्त माध्यम बना है। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मालदा रेल मंडल के DRM मनीष कुमार गुप्ता ने साहिबगंज में गंगा नदी के कटाव से प्रभावित रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। उन्होंने साहिबगंज बरहरवा रेलखंड पर सकरी गली और महाराजपुर स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक का जायजा लिया। इन स्टेशनों के बीच पोल संख्या 219 से 32 के बाद गंगा नदी के तेज कटाव के कारण रेल पटरी के नजदीक पानी पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि समस्या के अस्थायी समाधान के लिए प्रयास जारी है।
2: पिछले 2-3 दिन से पूरी हम लोगों की टीम यहाँ पे काम कर रही है। हमने देखा कि यहाँ पे आज स्तर जो है कल के कंपैरिजन में बढ़ गया है और गंगा नदी की जो बहाव है वो भी बढ़ गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन की जो वाटर लेवल कितना बढ़ता है और स्पीड कितनी रहती है उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे।
0: भारत ने एशियाई खेलों की क्रिकेट स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए 19वां स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाला। स्वर्ण पदक के लिए हुए इस मुकाबले में तिलक वर्मा ने मात्र 22 गेंदों में 51 रन की पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने शानदार अर्ध शतक लगाया। भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 211 रन बनाए थे। पाकिस्तान की टीम 192 रन पर ही सिमट गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को हर भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाला बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और जज्बे से देश का मान बढ़ाया है। सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारत ने महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीतकर अपने जुझारूपन, परिश्रम, अनुशासन तथा संघर्ष का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की यह उपलब्धियां देश के करोड़ों युवाओं को खेल के मैदान में आगे बढ़ाने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देगी। भाजपा नेताओं ने आज गुमला के रायडी में वीर शहीद बख्तर साय और मुंडल सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने वीर शहीदों के संघर्ष और योगदान को याद किया। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही और प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी का ये गीत, जिसे गाया है के सुनिधि चौहान और हार्डकोर ने। गीत के बोल लिखे हैं शाद कामिल ने, धुन बनाई है प्रीतम ने।
1: It's P on the track. Let's go.

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। हमारे दिल्ली केंद्र से कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं कार्यक्रम में सिक्किम के एक युवा साइबर शोधकर्ता और एक बहुत बड़े तकनीकी विशेषज्ञ से, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी नामित किया है और विभिन्न बड़ी संस्थाओं जैसे माइक्रोसॉफ्ट और तमाम ऐसी तकनीकी दुनिया की संस्थाओं ने उन्हें उनके काम को उन्होंने पहचान दी है। करीब दुनिया की 328 संस्थाओं ने उनकी उपलब्धि को पहचाना है। विवेक राज तमांग का काम साइबर सुरक्षा को लेकर है। साइबर सुरक्षा की खामियों को लेकर उन्होंने कई शोध किए हैं। आइए सुनते हैं उनकी उपलब्धि और सफलता की कहानी।
1: पश्चिम सिक्किम के रहने वाले विवेक राज तमांग को दुनिया भर की 328 संस्था से मान्यता और सराहना मिली है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार इस उपलब्धि की पुष्टि 25 जुलाई 2026 को हुई। विवेक ने अलग अलग संस्थाओं की वेबसाइट और डिजिटल सिस्टम में मौजूद सुरक्षा खामियों की पहचान की और उनकी जानकारी संबंधित संस्थाओं को दी, ताकि इन खामियों को दूर किया जा सके। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में इसे सुरक्षा खामियों की जिम्मेदारी से जानकारी देना कहा जाता है। विवेक को उनके काम के लिए बग बाउंटी प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र और सम्मान सूची में जगह सहित कई तरह की मान्यताएं मिली हैं। उनकी 328 मान्यताओं में नासा, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी रिस्पांस सेंटर और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी CERT इन जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं।
2: I explored and learned about different areas of computer science, but when I discovered cybersecurity and ethical hacking, I finally found something that I could truly see myself enjoying every single day. My journey was also not entirely traditional. Of course, I have my degree, certification. Courses can give you a strong foundation, but I believe ethical hacking is something you really learn by constantly exploring, practicing and challenging yourself.
1: साइबर सुरक्षा जैसे तेजी से बदल रहे क्षेत्र में विवेक का सफर दिखाता है कि सही तकनीकी ज्ञान, लगातार सीखने की इच्छा और जिम्मेदारी के साथ काम करके युवा वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। मायनाक चैटर्जी, दिल्ली राम दुलाल की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: श्रोताओं, त्रिपुरा की 5 दशक पुरानी गोमती जल विद्युत परियोजना त्रिपुरा की एक बड़ी आधारशिला रही है और इसे दोबारा से पुनर्जीवित करने को लेकर अब विचार किया जा रहा है। 1970 में शुरू हुई इस परियोजना से त्रिपुरा के लिए स्वच्छ बिजली की आपूर्ति को पूरा किया जाता रहा है और दोबारा से अब उम्मीद है कि नए सिरे से जब गोमती जल विद्युत परियोजना शुरू होगी तो त्रिपुरा में स्वच्छ बिजली की मांग को पूरा किया जा सकेगा। तो आइए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में गोमती जल विद्युत परियोजना के पुनर्जीवन की कहानी को सुनते हैं।
3: कहानी 1965 में शुरू हुई थी। उस समय त्रिपुरा में बिजली से जुड़ी सुविधाएं धीरे धीरे विकसित हो रही थी। राज्य के जल संसाधनों का इस्तेमाल कर बिजली पैदा करने के उद्देश्य से गोमती जल विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू किया गया। 5 साल बाद 1970 में यह परियोजना शुरू हुई। इसमें बिजली बनाने वाली 3 इकाइयां थी। हर इकाई की क्षमता 5 मेगावाट थी और परियोजना की कुल क्षमता 15 मेगावाट थी। कई वर्षों तक इन जरिए मशीनें पुरानी होती गई। साल 2010 में पहली इकाई ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद 2021 में दूसरी इकाई भी बंद हो गई। तीसरी और आखिरी इकाई भी अपनी पूरी 5 मेगावाट क्षमता से बिजली पैदा नहीं कर पा रही थी। इसकी क्षमता घटकर करीब 3 मेगावाट रह गई थी। इसके बाद अगस्त 2024 में आई भीषण बाढ़ ने परियोजना को और बड़ा नुकसान पहुंचाया। तीसरी इकाई भी बंद हो गई और 5 दशक से ज्यादा समय से बिजली पैदा कर रही यह परियोजना पूरी तरह ठप हो गई। त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा पावर जनरेशन लिमिटेड यानी TPGL परियोजना के पुनरुद्धार पर काम कर रहे हैं। हाल की रिपोर्टों के अनुसार परियोजना को फिर से चालू कर करीब 10 मेगावाट स्वच्छ बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जरूरी इसी उद्देश्य से पानी के अंदर रोबोट की मदद से जांच की गई। इसके लिए रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी ROV का इस्तेमाल किया गया।

0: मरम्मत के बाद इस्तेमाल करने लायक पाई जाती हैं, तो आगे तकनीकी जांच, मरम्मत और मशीनों को दोबारा लगाने का काम किया जा सकता है। वहीं अगर संरचनाओं को ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो अधिकारियों को यह तय करना होगा कि परियोजना को दोबारा शुरू करना तकनीकी और आर्थिक रूप से कितना संभव है। लेकिन यह निरीक्षण त्रिपुरा की इस पुरानी जल विद्युत परियोजना को फिर से शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गोमती परियोजना ने दशकों तक त्रिपुरा को जल संसाधनों से बिजली उपलब्ध कराई है। अगर इसे सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से दोबारा शुरू किया जा सका तो यह राज्य के बिजली नेटवर्क में फिर से योगदान दे सकती है। सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं नेहा गोस्वामी।
1: उत्तर भारत की प्रतिभाओं ने फिर अपना परचम लहराया है। मणिपुर की रोशोबिना देवी ने इस बार फिर से तीसरा अपना पदक एशियाई खेलों में जीता। वुशु खिलाड़ी रोशोबिना देवी ने इस बार पदक जीतकर फिर से नया इतिहास लिखा है। तो आइए रोशोबिना देवी के बारे में विस्तार से जानते हैं, कैसे उन्होंने अपने खेल का सफर शुरू किया और कैसे वो एशियाई खेलों तक अपनी प्रतिभा को ले गई और भारत का नाम रोशन किया।
2: रोशोबिना देवी का जन्म 30 दिसंबर 2000 को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के कौसिफाई मायाई लिकाई में हुआ। इनके माता पिता छोटे किसान हैं। बचपन में गांव में एक वुशु प्रतियोगिता देखने के बाद रोशोबिना की इस खेल में रुचि पैदा हुई। पांचवी कक्षा में रहते हुए उन्होंने वुशु सीखने का फैसला किया। शुरुआत आसान नहीं थी, माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन रोशोबिना ने खुद अभ्यास जारी रखा। उनके पिता के अनुसार वो गांव के बच्चों के साथ चावल की भूसी से भरी बनियान को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करके अभ्यास करती रही। बाद में उन्हें इम्फाल स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI सेंटर में प्रशिक्षण का मौका मिला। वहाँ उनके खाने और ट्रेनिंग की व्यवस्था हुई और उन्होंने कोच मैबाम प्रेम कुमार सिंह के मार्गदर्शन में अभ्यास शुरू किया। 2016 में बुल्गारिया में आयोजित जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में रोशोबिना ने 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। 2017 में उन्होंने एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया और आगे चलकर 60 किलोग्राम वर्ग में अपनी पहचान बनाई। 2018 में महज 17 साल की उम्र में उन्होंने जकार्ता एशियाई खेलों में पदार्पण किया और कांस्य पदक जीता। इसके बाद 2019 में उन्होंने दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया। 2023 में हांगझोऊ एशियाई खेलों में रोशोबिना ने 60 किलोग्राम सांडा वर्ग के फाइनल में जगह बनाई और रजत पदक जीता। उसी साल उन्होंने विश्व वुशु चैंपियनशिप में भी रजत और मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनके सफर में चोट ने भी चुनौती पेश की। 2024 में घुटने की चोट के कारण उन्हें लंबे समय तक खेल से दूर रहना पड़ा। वापसी के बाद 2026 एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और शुरुआत में टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन बाद में चोट के कारण खाली हुई जगह पर रोशोबिना को भारतीय टीम में शामिल किया गया। जापान जाने का ये मौका उन्हें एशियाई खेलों से कुछ ही दिन पहले मिला। इसके बावजूद उन्होंने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल तक पहुंची। फाइनल में उनका सामना चीन की झांग शियो ओ से हुआ, जहां रोशोबिना को 0-2 से हार मिली और उन्होंने रजत पदक जीता। इस रजत के साथ रोशोबिना ने 2018 का कांस्य, 2023 का रजत और 2026 का रजत एशियाई खेलों में लगातार 3 पदक अपने नाम किए। वो एशियाई खेलों में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय वुशु खिलाड़ी बनी।
3: अच्छा लगा, ये मेरा 3rd एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
2: पदक जीतने के बाद रोशोबिना ने अपने परिवार के त्याग को याद किया और कहा कि उनके माता पिता ने उनकी खेल यात्रा में बहुत सहयोग किया। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में अशांति के बीच तैयारी करना उनके लिए मुश्किल रहा और अगर उन्हें ज्यादा समय मिलता तो वो बेहतर तैयारी कर सकती थी। मणिपुर के एक छोटे से गाँव से शुरू हुआ रोशोबिना का सफर अब भारतीय वुशु के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। उनका ये सफर मेहनत, संघर्ष, चोट से वापसी और मिले मौके को सफलता में बदलने की कहानी है। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी, आकाशवाणी समाचार।
1: अब खेल की ही बात हो रही है तो अपनी सहयोगी निशा की अगली रिपोर्ट में हम इस बार एशियाई खेलों में पूर्वोत्तर की एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मेरा

0: चानू की भी उपलब्धि को सुन लेते हैं। उन्होंने जहां एक तरफ कॉमनवेल्थ खेलों और ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया, तो इस बार एशियाई खेलों में भी अपना पहला पदक जीता है। तो मीराबाई चानू ने किस तरह से इस बार फिर से भारोत्तोलन में एक नया कीर्तिमान रचा है और एशियाई खेलों के पदक की कमी को भी पूरा किया है, आइए हम इस रिपोर्ट में सुनते हैं।
1: मणिपुर की नोंगपोक कांगचिंग से शुरू हुआ मीराबाई चानू का सफर एशियाई खेलों के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। लगातार मेहनत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने भारतीय भारोत्तोलन में अपनी अलग पहचान बनाई। मीराबाई ने 2014 के एशियाई खेलों से अपने एशियन गेम सफर की शुरुआत की थी, जहां वह 9वें स्थान पर रही थी। 2016 के रियो ओलंपिक में वह कोई वैध लिफ्ट दर्ज नहीं कर सकी। इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी की और 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम समेत कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के बावजूद एशियाई खेलों का पदक उनकी उपलब्धि की सूची से दूर था। 2018 के एशियाई खेलों में वह चोट के कारण हिस्सा नहीं ले सकी, जबकि 2023 के हांगशो एशियाई खेलों में क्लर्क एंड जर्क के दौरान लगी चोट के बाद वह चौथे स्थान पर रही थी। 2026 में मीराबाई ने इस इंतजार को खत्म किया। 23 सितंबर को महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल वजन 198 किलोग्राम रहा। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की री सॉन्ग गम ने 2015 किलोग्राम वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता था और मीराबाई ने रजत पदक हासिल किया।
2: That smile on her face knows that the trophy cabinet is complete for Mirabai Chanu. The one medal that was missing in her trophy cabinet was that medal at the Asian Games. She clinches that now, a silver medal.
1: मीराबाई का यह पदक इसलिए भी खास रहा क्योंकि भारत ने एशियाई खेलों में भारोत्तोलन का पिछला पदक 1988 में जीता था। 28 साल बाद मीराबाई ने भारत को इस स्पर्धा में फिर पदक दिलाया। मीराबाई पहले ही ओलंपिक, विश्व चैंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीत चुकी थी। अब एशियाई खेलों का पदक भी उनकी उपलब्धियों से जुड़ गया है। पदक जीतने के बाद मीराबाई ने कहा कि एशियाई खेलों में पदक जीतना उनका सपना था और इस उपलब्धि से उनका सपना पूरा हुआ। मीराबाई चानू की यह उपलब्धि उनकी लंबे संघर्ष, चोटों से वापसी और लगातार मेहनत की कहानी भी है।
3: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स इससे पहले भी मैं काफी इंजुरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है एक प्लेयर्स के बाद। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
1: अब एशियाई खेलों में पहला पदक जीतकर अपने करियर की एक महत्वपूर्ण कमी भी पूरी कर ली है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
4: आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म आवारा का ये गीत मुकेश की आवाज में।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पीरियोडिक एफएम अपडेट्स बेस्ड ऑन 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 टू बी हेल्ड इन जापान। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवार। बेहद शानदार अमन सहरावत ने प्रदर्शन किया, ओलंपिक मेडलिस्ट ने आज क्या कमाल की कुश्ती लड़ी है। पीछे होते हैं आगे होते हैं, इस तरह से लगातार उठा पटक के बाद ये फाइनल मुकाबला गोल्ड मेडल भारत के पक्ष में आया। 57 किलोग्राम की कुश्ती थी, अमन सहरावत ने एशियन गेम्स के जो आज का फाइनल मुकाबला था शानदार स्वर्ण पदक जीत लिया। पुरुषों की फ्री स्टाइल के 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में अमन ने उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग को 11-7 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल की शुरुआत अमन के पक्ष में रही, उन्होंने मुकाबले में 4-1 की बढ़त बनाई, लेकिन विश्व चैंपियन हान चोंग सोंग ने जोरदार वापसी की

0: और स्कोर 7-6 अपने पक्ष में कर लिया। मुकाबला जो था निर्णायक मोड़ तक पहुंचा और आखिरी मिनट में अमन पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहीं पर अमन ने अपनी असली ताकत दिखाई। मुकाबले में करीब एक मिनट बाकी रहते ही उन्होंने शानदार टेकडाउन लगाया, चोंगसोंग को नीचे गिराकर अंक हासिल किया और देखते ही देखते स्कोर 11-7 पहुंच गया। इसके बाद अमन ने अपनी बढ़त कायम रखी और स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। इससे पहले अमन का दिन सिर्फ फाइनल तक पहुंचना ही नहीं था, उन्होंने जो आज मुकाबले जीते वो कमाल के मुकाबले थे। उन्होंने इससे पहले जापान की यामातो ओगावा को 20-9 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया और क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के नुरदाद एतानोव को 12-1 से मात दी। सेमीफाइनल में अमन ने जबरदस्त वापसी की और ताजिकिस्तान के एयाल बोलेस्वेस्की के खिलाफ राउंड में जो पहला राउंड था 2-6 से पीछे होने के बावजूद उन्होंने अगले राउंड में 12 अंक बटोरते हुए 14-8 से जीत दर्ज कर ली। और आज का मुकाबला क्या शानदार मुकाबला था। यहां पर अमन ने दिखाया क्यों ओलंपिक मेडलिस्ट है, अमन ने दिखाया क्यों वो चैंपियन की कुश्ती लड़ते हैं, क्यों एक चैंपियन पहलवान है। क्योंकि पीछे जब होते हैं वहां से चिंता की लकीर जरूर कोच के चेहरे पे थी, चिंता की लकीर भारतीय दर्शकों पे थी, लेकिन जब वापसी करते हैं तो बैक टू बैक पॉइंट हासिल करते हुए मुकाबले को जीत लेते हैं और भारत के जो झोली है उसको स्वर्ण पदक एक और झोली डाल देते हैं और भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 20 तक पहुंचा देते हैं। साक्षी
1: जी शाहिद, थैंक यू सो मच एंड वी गिव यू अ क्विक अपडेट ऑल्सो नाउ एज टू हाउ हैज द डे बीन सो फार फॉर इंडिया एंड ऑफकोर्स जो आज के दिन में अब घटित होने वाला है द इम्पोर्टेंट बिग गेम कमिंग अप इन हॉकी, जहां हम देखेंगे इंडिया इज गोइंग टू बी अप अगेंस्ट मलेशिया इन द गोल्ड मेडल मैच। में बात कर रही हूं भारतीय मेन हॉकी फाइनल मैच को याद बाद, इनफैक्ट कल हरा 44 साल बाद भारत को एक बार फिर से गोल्ड मेडल दिलवा दिया एशियन गेम्स के मैदान में। और आज उम्मीद करेंगे कि भारतीय मेन मलेशिया को हराकर वो गोल्ड हॉकी में भारत के नाम करवाए। अ क्विक रैप एट हाउ द डे वेंट सो फार फॉर इंडिया आल्सो वी विल हैव अ लुक। सो फार इट्स बीन अ वेरी एक्शन पैक्ड डे फ्रॉम एन इंडियन एंगल। इन आर्चरी 17 ईयर ओल्ड कुमकुम मोहत प्रोड्यूस रिमार्केबल परफॉर्मेंस टू विन द वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व गोल्ड मेडल। हर विक्ट्री मार्क्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन द वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट। एंड हम इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इंडिया ऑल्सो सिक्योर्ड अनदर आर्चरी मेडल इन द मेन्स इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट। नीरज Indians had fallen short in the respective semi-finals. Dheeraj had earlier lost 3-7 to South Korea's Lee Woo-seok, while Neeraj went down 1-7 against Japan's junior Nakanishi. And finally, two Bharati archers aamne-saamne aaye, jisme baazi maar gaye Neeraj apne paksh mein aur unhone wahan se bronze medal apne naam kiya. Golf mein bhi ek historic moment aaya, jahan Pranavi Urs won the women's individual stroke play gold medal. She finished the four-round competition at 15 under par one stroke ahead of China's Jin Ruong and Singapore's Shen Yun Tan. एंड फाइनली जैसे अभी आपको शाहिद ने रेसलिंग के बारे में बताया, क्रिकेट के अंदर आज हमने स्वर्ण पदक हासिल किया है पाकिस्तान को हरा कर ओवरऑल इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर, बोथ द इंडियन वुमेन एंड मेंस टीम गेटिंग अस अ गोल्ड इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026।
0: एक और कुश्ती का नतीजा सामने आया, हालांकि कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं रहा है। भारत के सागर जगलान को पुरुषों के फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग कांस्य पदक मुकाबले में कजाकिस्तान के नुरकोस कैपनाओ के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ सागर का एशियन गेम्स में जो अभियान था चौथे स्थान पर समाप्त होगा। करेंगे लेकिन अभी दो कुश्ती बाकी है, अंतिम पंघाल की कुश्ती बाकी, दीपक पुनिया की कुश्ती बाकी। यहां उम्मीद करेंगे कम से कम यहां पर अंतिम पंघाल जो खिताबी मुकाबला लड़ेंगी, स्वर्ण पदक का मुकाबला लड़ेंगी, वहां उम्मीद है वो एक और स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाले। वहीं दीपक पुनिया कांस्य पदक का मुकाबला लड़ेंगे, उम्मीद करेंगे वहां भी वो कामयाब हो।
1: जी एंड बिफोर वी रैप अप, क्विकली गिविंग यू अ मेडल टेबल काउंट आल्सो। भारत इस समय 5वें स्थान पर है, कुल मिलाकर 82 मेडल्स, 20 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज के साथ भारत और मलेशिया गोल्ड मेडल का मुकाबला हॉकी में अब शुरू होने जा रहा है। देखेंगे अगर यहां से भारत जीता तो एक और गोल्ड भारत के नाम होगा एंड वी स्टैंड टाइड इन दैट केस विद उज्बेकिस्तान। लेकिन उसके लिए हमें 70 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी देखने के लिए कि क्या भारत यह स्वर्ण मेडल जीतता है इस मुकाबले में कि नहीं। फिलहाल के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम आपके साथ जुड़ेंगे एक घंटे बाद 4:30 विद द लाइव अपडेट्स वंस अगेन।
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं वक्त है कार्यक्रम रांची मेलोडीज का। रांची मेलोडीज जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे

0: संगीत और जो आपको और हमें दोनों को ही बेहद पसंद है। राजी मेलोडीज कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ सुनीता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये कार्यक्रम हम सुनेंगे भारतीय सेना के सम्मान में इस गीत के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: रांची मेलोडीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म श्री 420 के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। नजरें मिली तो सब कुछ बदल गया, नजरें मिली तो सब कुछ बदल गया, मेरी खुशी की वजह पूछोगे तो तुम ही हो।

इश्क तुझसे मेरे यार रहने दे, इश्क तुझसे मेरे यार रहने दे, दिल की तड़प बेशुमार रहने दे, आज बस चाहत की बात कर, कल के लिए ये तकरार रहने दे।

हमें कहां मालूम था कि इश्क होता है क्या, हमें कहां मालूम था कि इश्क होता है क्या, एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गई।

ऐसा नहीं कि दिन नहीं निकलता, ऐसा नहीं कि दिन नहीं निकलता या रात नहीं होती, मगर सब अधूरा सा लगता है जब तुमसे दिल की बात नहीं होती।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आज जनसेवा से देश सेवा के तहत वडनगर से वाराणसी तक निकली सेवा यात्रा के छत्तीसगढ़ से गुमला आगमन पर जारी खंड के कमलपुर में स्वागत तथा अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने जातीय संवाद में जनजातीय समाज के उत्थान, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर सार्थक चर्चा की। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज जिला निर्वाचन अधिकारियों ईआरओ और एईआरओ के साथ वर्चुअल माध्यम से एसआईआर की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि एसआईआर के तहत नोटिस की सुनवाई के दौरान अलग अलग दस्तावेज मांगने की आवश्यकता नहीं है। पात्र अभियान चलाने और 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क लगाने का निर्देश

0: दिया। जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में जेल में बंद जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। हालांकि अभी इसकी सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। उनकी ओर से निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज करने को चुनौती दी गई है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी में आज एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया है। घटना के बाद पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। भारत ने एशियाई खेलों की क्रिकेट स्पर्धा में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 211 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन ही बना सकी। भारत की जीत में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की तूफानी अर्धशतकीय पारी के बाद गेंदबाजों ने अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे। नमस्ते।
1: केंद्र श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम कल्याणी, जिसमें आज चर्चा सुनेंगे आप नशापान से बिगड़ता तन और मन, वार्ता होगी सामाजिक हिंसा के कारण बचाव एवं रोकथाम, वार्ताकार है शिमा कश्यप, चर्चा सुखी परिवार निर्माण में महिलाओं की भागीदारी, सूत्रधार है युवराज कुमार, प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

श्रोताओं नमस्कार जोहार। दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी और मैं हूं आपका दोस्त युवराज। और कार्यक्रम के इस खूबसूरत सफर में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं जीवन तभी सुंदर और सार्थक बनता है जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने रिश्तों को सहेजें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। तो आइए कुछ पल अपने लिए निकालिए और जुड़ जाइए कल्याणी के इस खूबसूरत सफर में। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण चर्चा, भेंट वार्ता और मन को छू लेने वाला मधुर गीत। तो दोस्तों दिल थाम कर नहीं बल्कि दिल खोल कर सुनिए अपना कार्यक्रम कल्याणी। श्रोताओं आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो केवल किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार और समाज को प्रभावित करता है। विषय है नशापान से बिगड़ता तन और मन। मित्रों नशा चाहे शराब का हो, तंबाकू का हो या किसी अन्य नशीले पदार्थ का, शुरुआत अक्सर छोटी छोटी आदत से ही होती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यवहार, सोच और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने लगती है। दोस्तों नशे का सबसे पहला असर हमारे शरीर पर पड़ता है। लगातार नशापान से शरीर की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। व्यक्ति को थकान, कमजोरी, दैनिक कार्यों में परेशानी महसूस होने लगती है। तंबाकू और धूम्रपान जैसी आदतों भी स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसान का कारण बन सकती है। श्रोताओं लेकिन नशा केवल तन को नहीं मन को भी प्रभावित करता है। नशे की आदत व्यक्ति की सोच, व्यवहार और भावनाओं पर असर डाल सकती है। चिड़चिड़ापन, बेचैनी, तनाव और अपने ऊपर नियंत्रण रखने में कठिनाइयां जैसी समस्या सामने आ सकती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से दूर होने लगता है और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी प्रभावित हो सकता है। नशे का प्रभाव परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी बढ़ सकता है। कमाई का एक हिस्सा नशे में खर्च होने से बच्चों की पढ़ाई, घर की जरूरतें और भविष्य की योजनाएं प्रभावित हो सकती है। कई बार परिवार में तनाव और विवाद भी बढ़ने लगते हैं। तो क्या नशे से बाहर निकल

0: संभव है? जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल संभव है। इसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि व्यक्ति अपनी समस्या को स्वीकार करे और मदद लेने में संकोच ना करे। परिवार को भी व्यक्ति को अपमानित करने के बजाय सहयोग और प्रोत्साहन देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर चिकित्सक, नशा मुक्ति केंद्र या प्रशिक्षित विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए। श्रोताओं, स्वस्थ शरीर और शांत मन ही सुखी जीवन की मजबूत नींव है। इसलिए आइए हम स्वयं नशे से दूर रहें और अपने परिवार तथा समाज को भी नशा मुक्त बनाने में अपनी भूमिकाएं निभाएं। याद रखिए, नशा कुछ समय का भ्रम दे सकता है, लेकिन स्वस्थ जीवन ही सच्ची खुशी और सफलता देता है। श्रोताओं, अभी आपने सुनी नशापान से होने वाले शारीरिक और दुष्प्रभावों पर हमारी चर्चा। इसी महत्वपूर्ण विषय को थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए अब हम आपकी मुलाकात एक महिला अधिवक्ता से कराने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गंभीर सामाजिक विषय पर कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगी। और इस भेंट वार्ता का विषय है सामाजिक हिंसा के कारण बचाव एवं रोकथाम। दोस्तों, साथ ही इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद है झारखंड उच्च न्यायालय की अधिवक्ता श्रीमती सीमा कश्यप जी। श्रोताओं, परिवार और समाज में सुख शांति तभी कायम रह सकती है जब हम एक दूसरे के अधिकारों, सम्मान और गरिमा का ख्याल रखें। लेकिन आज सामाजिक हिंसा एक ऐसा गंभीर समस्या है जो व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित कर सकती है। हिंसा केवल शारीरिक नुकसान तक सीमित नहीं है, मानसिक प्रताड़ना, धमकी, अपमान, भेदभाव और अन्य प्रकार का दुर्व्यवहार भी हिंसा का रूप ले सकता है। इसके पीछे सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और व्यवहार से जुड़े कई कारण हो सकते हैं। जरूरत है कि हम हिंसा के कारणों को समझें, उसके शुरुआती संकेत को पहचानें और पीड़ित व्यक्ति को उचित सहयोग तथा कानूनी सहायता की भी जानकारी दे। साथ ही समाज में जागरूकता, संवाद और सम्मान की भावनाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है झारखंड उच्च न्यायालय की महिला अधिवक्ता श्रीमती सीमा कश्यप जी। सीमा मैडम, आपके हमारे स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है, जोहार।
1: नमस्कार युवराज जी, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार, जोहार।
0: मैडम, पहले हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको बतलाइए, जो सामाजिक हिंसा है किन किन कारणों से हमारे समाज में दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है?
1: सामाजिक हिंसा का अर्थ पहले तो हमको समझना होगा। सामाजिक हिंसा जो है समाज से संबंधित जो भी समूह या मेलजोल से जुड़ा रहता है उसको समाज कहते हैं। और सामाजिक हिंसा व्यक्तियों या समुदायों द्वारा किया जाने वाला वह बलपूर्वक कृत्य है जिसका समाज पर व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा, झड़प व दंगे शामिल किए जाते हैं, जो कि अधिकतर धार्मिक पंथ, किसी पंथ या सामाजिक संप्रदाय के बीच में होते हैं। उनको समाज में जिससे कि अलगाव पैदा हो जाता है, शांति भंग हो जाती है, उसको ही सामाजिक हिंसा कहेंगे हम।
0: तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो सामाजिक हिंसा है उनका क्या कारण हो सकता है, किन कारणों से ये दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है?
1: सामाजिक हिंसा का कारण के लिए सबसे पहले तो अशिक्षा और जागरूकता की कमी है। रूढ़िवादी व्यवस्थाएं जो पूर्वग्रह से चली आ रही हैं, उनको हम आंख बंद करके फॉलो किए जा रहे हैं। संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण है और संवाद की कमी है। ये सब चार पांच जो मुख्य कारण है, इससे समाज वाले जो लोग हैं उसमें सामाजिक हिंसा से प्रभावित होने वाले हैं। सबसे गंभीर और सीधा असर युवराज जी इसका कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक समूह पर पड़ता है। समाज में हिंसा फैलता है तो सुरक्षा का जो ताना बाना है वो टूट जाता है और कमजोर और संवेदनशील वर्ग में जैसे कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, दिव्यांग, ये लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं।
0: जी,
1: क्योंकि इनसे उनका शारीरिक, मानसिक, यौन उत्पीड़न का शिकार बन जाते हैं वो, बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है। तो ये सामाजिक हिंसा से का व्यापक क्षेत्र है, जैसे कि घरेलू हिंसा है, सांप्रदायिक हिंसा है, लैंगिक या सामाजिक जो बोलेंगे समूह या सामूहिक हिंसा है, ये

0: बहुत ही व्यापक क्षेत्र है इसका, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह ये रुक जाए, इसका व्यापक असर पड़ता है सामाजिक हिंसा का।
1: तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो रूढ़िवादी सोच है, जो रूढ़िवादी विचार है लोगों का, उससे ऊपर आना पड़ेगा। और दूसरी सबसे गंभीर समस्या है कि साक्षरता की कमी, जो हम
0: जी
1: लोग में साक्षर नहीं होने के कारण, पढ़े लिखे नहीं होने के कारण, गलत विचारों को अपनाकर सामाजिक हिंसा का कहीं ना कहीं ये मुख्य कारण बनता सा जा रहा
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो मैडम, इन हिंसाओं को, जो भी हमारे समाज में हिंसा हो रही है, उनको रोकने के लिए कानून में क्या क्या प्रावधान है? कानून में इनका कैसे, कानून के द्वारा इन जो सामाजिक घटनाएं घट रही है उनको हम कम कर सकते हैं?
0: भारतीय कानून और व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं इसके लिए। इसको प्रशासनिक, दंडात्मक और सुरक्षात्मक उपायों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ कानूनी तरीके हैं, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई है। कभी भी कहीं अगर दंगा और बलवा रोकना हो, जैसे कि सार्वजनिक शांति भंग कोई करता है तो उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है, या घृणा भाषण जैसे हेट स्पीच पर रोक लगाया गया है, धर्म जाति या भाषा के नाम पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान है। भीड़ द्वारा हिंसा, जिसको कि मॉब लिंचिंग कहा जाता है, भीड़ द्वारा हिंसा या हत्या के मामलों में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है और मृत्युदंड तक का भी प्रावधान है। और इसके लिए प्रतिबंधात्मक और निवारक उपाय भी हैं, जैसे कि हिंसा भड़कने की आशंका है तो उससे पहले ही प्रशासन निम्न कदम उठा सकते हैं, जैसे कि धारा 144 लागू कर देती है, और किसी इलाके में तनाव की स्थिति है तो मजिस्ट्रेट इकट्ठा होने पर रोक लगा देती हैं। निवारक नजरबंदी भी किया जाता है, असामाजिक तत्वों को हिंसा शुरू होने से पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है, और जैसे कि उनसे बॉन्ड वगैरह भरवाया जाता है कि जिससे कि हिंसा शुरू होने से पहले संदिग्ध लोगों से भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए कानूनी बॉन्ड भराया जाता है। और अभी अभी का जो समय है, इसमें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ही अफवाह फैलता है। सोशल मीडिया इसके लिए सबसे बड़ा कारण है। जितने भी आजकल सामाजिक हिंसा अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा ही फैलाया जा रहा है, तो इसको भी रोकने के लिए है कि आईटी एक्ट के तहत जैसे भड़काऊ पोस्ट, फर्जी खबरें, नफरत फैलाने वाली वीडियो, इन सब पर रोक लगाया गया है।
1: मैंने अपने बहुत सही बातें को बतलाई कि अभी जो ज़्यादातर अभी केसेस जो देखे जा रहे हैं
0: जी
1: वो है सोशल मीडिया में।
0: जी
1: सोशल मीडिया में ऐसे आपत्तिजनक ऐसे पोस्ट डाले जा रहे हैं जिससे कि लोग भड़क जा रहे हैं और उनसे समाज में एक तनावपूर्ण माहौल सा बन जा रहा
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: तो इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसे कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं?
0: जैसे कानूनन आपातकालीन स्थिति में प्रशासन किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे इंटरनेट सेवाएं हैं, उन सबको अस्थायी रूप से बंद कर देती है कि ताकि इस तरह के न्यूज़ ज्यादा फैले नहीं और समाज में शांति भंग ना हो। आईटी एक्ट के तहत दंड का भी प्रावधान है, उनके
1: जी
0: खिलाफ आईटी एक्ट का केस लागू कर दिया जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो ये सब प्रावधान, बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं।
1: तो कुल मिला के कहा जाए कि इन सब घटनाओं से बचने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं जिनके द्वारा उनको दंडित किया जा सकता
0: जी
1: है।
0: जी
1: अब मैडम, अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो डैन बिसाही का केस बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा को मिल रहा बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इसका रोकथाम के लिए कानून क्या कहता है?
0: डायन बिसाही का मुद्दा भी पूरी तरह कानूनन अपराध और सामाजिक अंधविश्वास का है। इसको भी अशिक्षा के कारण ही ये ज्यादा फैलता है, जागरूकता की कमी है गांव देहातों में। लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डालसा है और झालसा है, इसके तहत मुफ्त कानूनी सलाह दिया जाता है और गांव-गांव जाकर के प्रचार किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, समझाया जाता है। और इससे निपटने के लिए तो कानूनी कार्रवाई और सामाजिक जागरूकता दोनों का सहारा लेना बहुत जरूरी है। अगर कभी इस तरह का कुछ अगर घटना होता है तो तुरंत ही कानूनी कार्रवाई कदम उठाना चाहिए, पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए, एफआईआर कर सकते हैं। जो कि ये डैन बिसाही का जो मामला है, ये गैर जमानती होता है,
1: जी
0: कानून में इसका प्रावधान है। स्थानीय प्रशासन और नोडल अधिकारियों का मदद लिया जा सकता है। हर जिले में मुख्यालय में डीएसपी को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। यदि स्थानीय थाना प्रभारी एसएचओ अगर कार्रवाई करने में आनाकानी करता है, तो आप सीधे जिले के एसपी या नोडल ऑफिसर से लिखित शिकायत कर सकते हैं। मुफ्त कानूनी सहायता भी मिलती है, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर समाधान है इसके लिए भी। तो सबसे बड़ा तो है कि अशिक्षा ही इसका मुख्य कारण है
1: मुख्य
0: गांव।
1: कारण।

0: है, खड़ा है, उनको कब मुफ्त में उनको जो भी सुझाव है, जो भी सहायता है उनके द्वारा प्रदान किया जा
1: जी
0: सकता है।
1: जी
0: मैंने अपने बहुत सारी बातें को बताई, तो अंत में हमारे जो श्रोता है उनको अब चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: सामाजिक हिंसा के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी युवराज जी कि किसी भी सभ्य समाज के लिए ये गंभीर कलंक और उसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। जब समाज का एक समूह किसी दूसरे समूह, जाति, धर्म या लिंग के खिलाफ नफरत या शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो पूरा समाज इससे प्रभावित होता है। तो इन सबसे हमको बचना चाहिए कि किसी को हम ठेस ना पहुँचाएं, अपना जो व्यवहार है उसको थोड़ा नियंत्रित करके रखें और सभी से, क्योंकि समाज है तो सबसे मेल प्रेम से रहना जरूरी होता है। सब तरह के लोग हैं यहाँ पे, तो सबके भावनाओं का कद्र करना चाहिए।
0: मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारियां दी, कानूनी पहलुओं को विस्तार पूर्ण अपने बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार।
1: जवाहर
0: तो श्रोताओं, अभी हमने सुना बहुत ही गंभीर चर्चा पर एक विशेष भेंट वार्ता, जिसके वार्ताकार थी झारखंड उच्च न्यायालय की अधिवक्ता श्रीमती सीमा कश्यप जी। श्रोताओं, सामाजिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर हुई इस सार्थक बातचीत के बाद अब कुछ पल संगीत के नाम। संगीत मन को सुकून देता है और हमें भावनाओं की एक खूबसूरत दुनिया में ले जाता है। तो आइए इसी खुशनुमा माहौल को आगे बढ़ाते हुए फिल्म हमशक्ल का मधुर गीत काहे को बुलाया मुझे बलमा सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं यह एक प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, संगीत की सुरीली प्रस्तुति के बाद अब हम अपने कार्यक्रम को एक ऐसे विषय की ओर ले चलते हैं जिसका संबंध सीधे हमारे घर परिवार, हमारे जीवन की खुशियों से भरा है। परिवार केवल दीवारों का नाम नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान, सहयोग और आपसी समझ से बनता है। एक सुखी परिवार के निर्माण में परिवार के प्रत्येक सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और महिलाओं की भूमिका भी इसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आइए हम अपने दूसरे चर्चा की ओर बढ़ते हैं, सुखी परिवार के निर्माण में महिलाओं की भूमिका। श्रोताओं, महिला परिवार की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। वह परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ने, घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने और बच्चों के संस्कार एवं शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि परिवार की खुशियों और जिम्मेदारियों की पूरी जिम्मेदारी केवल महिला की नहीं है। सुखी परिवार तभी बनता है जब पति पत्नी और परिवार के सभी सदस्य मिलकर जिम्मेदारियां निभाएं। मित्रों, महिलाएं बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके व्यवहार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों से बातचीत करना, उनकी समस्याओं को समझना और उन्हें अच्छे संस्कार देना उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। परिवार के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महिलाओं की भागीदारी लगभग बढ़ रही है। महिलाएं नौकरी, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा या अन्य कार्यों के माध्यम से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान देती है, इसलिए उनके काम और निर्णयों को सम्मान मिलना आवश्यक है। दोस्तों, घर के छोटे बड़े निर्णयों में महिलाओं की राय को

देना भी परिवार की आपसी विश्वास को बढ़ाता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की बातचीत सुनते हैं और मिलकर निर्णय लेते हैं तो परिवार में तनाव और मनमुटाव कम हो सकता है। इसी तरह महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत विकास, परिवार तथा समाज में सकारात्मक योगदान दे सकती है। श्रोता की समानता, सम्मान और सहयोग से मजबूत होती है, इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्यों को एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिकी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज की प्रस्तुतियां, बातें, गीत संगीत का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

कार्यक्रम कल्याणी अभी आप सुन रहे थे। सूत्रधार थे युवराज कुमार, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। दोस्तों, ये वक्त है आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने का। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार का वक्त होगा शाम 5:00 का। कार्यक्रम युववाणी सुनिए 5:02 से श्रमिक लोक। इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा 5:30 का। प्रादेशिक मुख्य समाचार एक बार पुनः आप सुनेंगे शाम 6:00। किसान वाणी ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:02 से।

हमारी दुनिया इस कार्यक्रम का वक्त होगा 6:32 का प्रादेशिक समाचार सुनिए शाम 7 बजे। सात बजकर 15 पर सुनिए लोकगीत हो भाषा में, कलाकार होंगे बुधन सिंह कुंकल और साथी। क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार आप सुन सकेंगे 7:20 से। समाचार ध्वनि चित्र का आज का अंक आप सुन सकेंगे 7:45 से। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा में शामिल होइए रात्रि 8 बजे। 8:30 पर जानिए क्या है सुर्खियों में।

समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 का, न्यूज़ एट 9 सुनिए 9 बजे, और उर्दू में समाचार आप सुन सकेंगे 9:15 से हमारे दिल्ली केंद्र से। राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती का वक्त होगा 9:30 का, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के टॉप श्रेणी के कलाकार द्वारा आप सुनेंगे वादन। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

रात्रि 10 बजे से आप सुन सकेंगे दिल्ली हाइलाइट्स कैप्सूल्स बेस्ड ऑन 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 टू बी हेल्ड इन जापान। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार का वक्त होगा रात्रि 11 बजे का।

0: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपके साथ सीमा तिवारी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:35 हो चुके हैं दोस्तों। अक्टूबर का महीना यानी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का महीना, शक्ति के सभी रूपों को महसूस आ जाएगी हम तक कुछ दिनों में। बारिशों से आजाद हुआ मौसम, वैसे 2-4 दिन की बूंदाबांदी होने के आसार नजर आते हैं और बदले बदले से हमारे ख्याल नजर आते हैं। शामें होने वाली हैं और भी खूबसूरत, सो इस खूबसूरत शाम में आनंद लीजिए हमारे गीतों का।
1: अखियों

शिक्षा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो रांची पर।

और एक गीत जिसमें तारीफ भी है, अदा भी है, थोड़ी सी शरारत भी। कहते हैं मोहब्बत में किसी की एक अदा ही काफी होती है दिल हार जाने के लिए, और यहाँ तो मामला कुछ ऐसा है।

कुछ गीत ऐसे होते हैं दोस्तों, जिन्हें सुनकर पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। लेकिन इश्क की कहानी केवल मस्ती तक कहाँ रुकती है? कभी-कभी किसी की अदाओं का असर इतना गहरा होता है कि दिल खुद से ही कह बैठता है, अब तो बचना मुश्किल है। इश्क में ये दिल भी बड़ा बेपरवाह होता है, ना नफे की सोचता है ना नुकसान की, बस किसी एक पर आकर ही बात।

मोहब्बत की एक दिलचस्प बात है दोस्तों। हम कहते रहते हैं कि सब कुछ हमारे बस में है, लेकिन दिल कब किसी का हो जाए इसका फैसला शायद हम कभी कर ही नहीं पाते। और जब दिल अपनी मनमानी पर उतर आए तो इंसान समझदार होते हुए भी थोड़ा सा निकम्मा हो ही जाता है। दिल को बहुत समझाया कि जरा संभल कर चल, वो मुस्कुरा कर बोला, इश्क में हिसाब कैसा।

कितना अजीब है ना, एक तरफ दूरी हमें तन्हा करती है और दूसरी तरफ किसी की एक झलक ही सारी उदासी भुला देती है। और आज की पीढ़ी ने शायद इसी एहसास के लिए खूबसूरत सा शब्द चुन लिया है, नशा। लेकिन ये नशा किसी चीज़ का नहीं, किसी की आँखों का, किसी की मुस्कान का, किसी की मौजूदगी का है। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं खुशबू की तरह, दिखाई कम देते हैं और महसूस बहुत ज़्यादा।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है अब तक के मुख्य समाचार का, सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज राजधानी में फुटपाथ दुकानदारों के बीच कैनोपी अम्ब्रेला का वितरण किया। रक्षा मंत्रालय के उपक्रम गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSI और CSR के तहत कैनोपी अम्ब्रेला उपलब्ध कराए गए हैं। इस मौके पर श्री सेठ ने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य स्तरीय फेयर प्राइस शॉप डीलर संघ की आज रांची में महत्वपूर्ण बैठक हुई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैठक में राज्य भर के राशन डीलरों की समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि डीलर संघ की मांगों को लेकर विभाग गंभीर है और जल्द ही उसका समाधान निकाला जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज जिला निर्वाचन अधिकारियों ERO और AERO के साथ वर्चुअल माध्यम से SIR की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि SIR के तहत नोटिस की सुनवाई के दौरान अलग अलग दस्तावेज मांगने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुमार ने पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए विशेष आउटरीच अभियान चलाने और 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क लगाने का निर्देश दिया। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 5 से 9 अक्टूबर तक गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है, हालांकि इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। भारत ने एशियाई खेलों की क्रिकेट स्पर्धा में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 211 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर

0: 192 रन ही बना सकी। भारत की जीत में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की तूफानी अर्धशतकीय पारी के बाद गेंदबाजों ने भी अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पे। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। 6:55 पर हम आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम, कार्यक्रम आपकी पसंद। 7:30 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसमें आज चर्चा होगी तेलहनी फसलों में सरसों एवं तीसी की खेती। वो लोग की सुनिएगा शंकर चंद्र मुर्मू और साथियों के स्वर में। आज के मेहमान के अंतर्गत भेंटवार्ता होगी स्वच्छता ही सेवा है। भेंटवार्ताकार होंगे रामचरित्र प्रसाद और इनसे बातें करेंगे ठाकुर चंद्र मुर्मू। संथाली लोकगीत का आनंद लीजिएगा रामचंद्र टुडुआ और साथियों के स्वर में। 8 हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर हम आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर आप सुनते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसे रिले किया जाता है आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10 आप सुनिए एशियन गेम पर कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:20 पर हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11 हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में, और 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम

ये आकाशवाणी का चाईवासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पे। शाम के 5:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म बेमी साल से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर।

अगला गीत है आप तो ऐसे ना थे, गायक लगा रहे हेमलता।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अगला गीत है फिल्म चौदहवीं का चांद से। गायक लगा है मोहम्मद रफी।

0: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म निकाह का ये नगमा, आवाजें महेंद्र कपूर की है।
1: अभी अलविदा मत कहो।

इस गीत के साथ ही श्रोता, हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से। कुछ ही पल में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहला गाना है फिल्म नया दौर से, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले।

अभी आपने सुना फिल्म साजन का ये नगमा, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। और आइए सुनते हैं फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। गायक कलाकार हैं आशा भोसले।

अभी आपने सुना फिल्म गीत गाता चल, फिल्म का ये गाना, आवाज़ें थी जसपाल सिंह की। इसके साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ज पे। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सेवा सुशासन माह की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर श्री मरांडी ने बताया कि सेवा सुशासन माह के तहत 7 अक्टूबर को झंडा मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने आज लोहरदगा के कुडू में आयोजित प्रखंड स्तरीय जनजातीय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज के लोगों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं और जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जानकारी ली और अधिकारियों को जनजातीय समाज से जुड़े मामलों का समयबद्ध और विधिसम्मत समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति मोर्चा ने रनपास में स्थायी निदेशक की नियुक्ति, आउटसोर्सिंग व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरोध में आज धरना दिया। मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष महेश कुमार मनीष ने मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। राज्य स्तरीय ललिता टूडू मेमोरियल थ्रो बॉल प्रतियोगिता का आयोजन हजारीबाग में किया गया। प्रतियोगिता में 16 जिलों के 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर 2 नवंबर को कोलकाता में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम का चयन किया जाएगा। एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 1-5 से पराजित कर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही भारत 18 स्वर्ण समेत 89 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत पर हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में जश्न का माहौल है। टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ी झूमते थिरकते एक खुशी का इजहार कर रहे हैं। हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज कोनबेगी ने कहा कि टीम का नेतृत्व सिमडेगा की खिलाड़ी सलीमा टेटे ने किया, जो गौरवान्वित करने वाला है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: যিনি সমাজের প্রচলিত বাধা ভেঙে চিকিৎসার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নিজের স্থান তৈরি করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে প্রতিভা, পরিশ্রম এবং সাহস থাকলে নারীরাও যে কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। ভারতের নারী জাগরণ ও আধুনিক চিকিৎসা ইতিহাসে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হবে। শ্রোতাবন্ধু, এখন নিয়ে নিচ্ছি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444-99 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम आपका स्वागत सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमेश दास का नमस्कार। कैसे हैं श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। श्रोताओं, जब हम किसी बीमारी की बातें करते हैं तो एक भयावह दृश्य हमारे आंखों के सामने आ जाता है, और खासकर अगर हम देखें कैंसर की बातें करें तो फिर रूह तो कांप उठता ही है। तो चलिए, आज हम कार्यक्रम की शुरुआत कैंसर जैसे रोग से करते हैं। कैंसर के जोखिम को कम करने और इससे बचाव के लिए श्रोताओं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना सबसे असरदार होता है। अगर हम बचाव के बारे में बातें करें तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि तंबाकू से दूरी बनाएं। जी हाँ, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन ना करें, या फेफड़े, मुंह और गले के कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरी बात, स्वस्थ आहार लें। जी हाँ, खाने में ताजे फल, हरी सब्जियाँ और साबुत अनाज को शामिल करें। खासकर अगर मैं कहूँ तो ये जो है ज़्यादा तला भुना खाना नहीं चाहिए, और ख़ासकर तो विशेष बात है कि डिब्बा बंद चीनी वाले पेय पदार्थों से बचें। अगर आप शराब पीते हैं तो शराब सीमित करें, यानी शराब का सेवन कैंसर के कई जोखिमों को बढ़ाता है, इसलिए इससे ज़्यादा जितना हो सके उससे दूर रहें। अपना वजन को कंट्रोल में रखें। रोजाना कम से कम 30 मिनट कसरत या शारीरिक गतिविधि करें। मोटापा कई तरह के कैंसर का कारण बन सकता है। और अगर हम बातें करें तो धूप से बचाओ। जी हाँ, त्वचा के कैंसर से बचने के लिए तेज धूप से खुद को बचाएं और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, या फिर धूप से बचने का उपाय जरूर करना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं कि टीकाकरण, जी हाँ, HPV और हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगवाएं, जो इनसे होने वाले कैंसर के खतरे को रोकता है।

0: अंत में मैं यही कहूँगा कि आप नियमित स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं। तो चलिए इस पर और कुछ हम विशेष जानकारी, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण संदेश सुन लेते हैं।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: तो आइए श्रोताओं, कैंसर कारण व बचाव पर कुछ विशेष जानकारी लेते हैं डॉक्टर राजीव से। अच्छा, खासकर अगर हम इस क्षेत्र की ओर देखें तो लोग पहले के अपेक्षा कुछ ज्यादा ही कैंसर रोगी मिलने लगे, तो इसका कारण क्या हो सकता है?
3: दो कारण है। एक तो है कि आपका वेस्टर्नाइज थोड़ा सा लाइफस्टाइल हो रहा है, खाने में मिलावट बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का समस्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, खराब आदतें जैसे तंबाकू का सेवन करना, आपका सिगरेट का स्मोकिंग करना, अल्कोहल का लेना, ये सब भी बढ़ रहा है। इसके कारण से क्या है कि हम लोग प्रकृति से दूर जाते जा रहे हैं। जैसे हमारा नगर का सभ्यता बढ़ती जा रही है, प्रकृति से हम लोग दूर जा रहे हैं और इसके कारण से भी कैंसर का चांसेस बढ़ रहा है। दूसरा एक पहलू और भी है, क्योंकि अभी विज्ञान का जो अग्रगति हुआ है उससे हमारे पास डायग्नोस्टिक मतलब रोग को डिटेक्ट करने का क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पहले जो इलनेस होते थे वो पकड़ा ही नहीं जाता था कैंसर की तरह, अभी हम लोग ईजिली हम लोग कैंसर पकड़ रहे हैं। इसके लिए दोनों हो रहा है, कैंसर ट्रूली बढ़ भी रहा है और कैंसर पकड़ में भी ज़्यादा आ रहा है। तो ये दोनों मिलकर अब आपको लग रहा है कि कैंसर का संख्या बहुत ज़्यादा रिसेंट टाइम्स में एकदम एक्सप्लोड कर रहा है।
0: कैंसर के भी बहुत सारे प्रकार हैं, ये कौन कौन
3: जी? सबसे पहले आपको पता करना होगा कैंसर कोई एक रोग नहीं है। कैंसर एक बहुत बड़ा मतलब शायद लाखों रोग है एक कैंसर ये सब शब्द के बीच में। सबसे पहले अगर आपको डिवाइड करना है कैंसर को, आप दो तरफ से डिवाइड कर सकते हैं, एक ब्लड कैंसर और एक सॉलिड कैंसर। अगर आप ब्लड कैंसर में जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत प्रकार के मिलेंगे, ल्यूकीमिया मिलेंगे, लिम्फोमा मिलेंगे, मायलोमा मिलेंगे। अगर आप सॉलिड कैंसर में आ रहे हैं तो फिर आपको कार्सिनोमा मिलेगा, सार्कोमा मिलेगा, मेलानोमा मिलेगा। तो फिर ये जो मतलब साधारण मानुष जो लोग हैं वो समझते हैं कि हर कैंसर का ही एक ही इलाज है, कैंसर का एक ही रोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम लोगों को पता है कि कौन से पेशेंट का सार्कोमा हुआ है, कौन सा पेशेंट का मेलानोमा हुआ है, कौन सा पेशेंट का कार्सिनोमा हुआ है।
0: खासकर अगर महिलाओं की बातें करें तो महिलाओं में कौन कौन से कैंसर प्रायः देखने को मिलते हैं?
3: ये हमारे जो अगर आप हमारे देश के बारे में बात करें तो फिर कुछ दिन पहले तक, शायद 5-6 साल पहले तक सर्वाइकल कैंसर एक नंबर का में था, सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर होता था। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग देखें कि स्पेशली जो अर्बन सेंटर्स है, जो नगर है, शहर है, वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर का जो इंसिडेंस है वो कम घटता गया, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन बढ़ गया, अवेयरनेस बढ़ गया शहर में, तो फिर सर्वाइकल कैंसर कम हो गया। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर का नंबर अभी बढ़ गया है। तो शहर में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शहर में सर्वाइकल कैंसर कम हो गया है। जो हम लोग गाँव में देख रहे हैं कि गाँव में सर्वाइकल कैंसर भी है और ब्रेस्ट कैंसर भी है। तो कुल मिला के अगर आप देखें अभी ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर को जंप करके पहले नंबर पे आ चुकी है, दो नंबर पे अभी सर्वाइकल कैंसर है, तीन नंबर पे वो है जो मेल में सबसे कॉमन है, वो है ओरल कैंसर और मुंह का कैंसर का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग औरतें मर्द दोनों ही ओरल टोबैको, च्यूएबल टोबैको लेते हैं, तंबाकू लेते हैं, उसके कारण से उनका ओरल कैविटी का कैंसर होता है।
0: अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, खासकर अगर हम कैंसर मरीजों को देखते हैं जब वो जैसे विशेषज्ञों के पास जाते हैं तो एक स्टेज बोला जाता है, ये पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, ये तीसरा स्टेज, ये क्या है थोड़ा सा उसमें?
3: देखिए, स्टेज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हम आप सोच लीजिए कि एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है, तो ब्रेस्ट कैंसर में अगर जो ट्यूमर है वो एकदम छोटा सा है, ब्रेस्ट का ही एक पार्ट में वो सीमित है, तो फिर हम लोग कहेंगे स्टेज वन, ठीक है। दूसरा कोई भी ऑर्गन आप ले सकते हैं, ब्रेस्ट हो, लंग हो, कोई भी, मैं ब्रेस्ट का एग्जांपल।

0: अगर वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा साइज़ में बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है कि थोड़ा सा बढ़ गया, अभी आपको सर्जरी के साथ और कुछ ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेज टू। अब स्टेज वन और स्टेज टू दोनों ही क्यूरेबल है, बहुत आसानी से क्यूरेबल है अगर पकड़ा जाए, स्टेज वन और भी आसानी से और स्टेज टू भी। अभी अगर ये जो लोकल जिस जगह का कैंसर है वो अगर जो आसपास का जो ग्लैंड है वो ग्लैंड को पकड़ लेता है, जिसको हम लोग परिभाषा में कहते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है, तो ब्रेस्ट से आप सोचिए कि अगर हमारे बगल जो है आर्मपिट जो है वह उसके साइंटिफिक कहते हैं एक्जिला, तो वो एक्जिला में अगर हम लोग जो ग्लैंड है या लिम्फ नोड है वो उसको अगर कैंसर पकड़ लेता है तो फिर हम लोग कहते हैं स्टेज थ्री। ये ब्रेस्ट में ही नहीं बाकी सब ऑर्गन के लिए भी सही है, आसपास के अगर ग्लैंड को पकड़ लेता है तो उसको कहते हैं स्टेज थ्री। और स्टेज फोर क्या है? स्टेज फोर है कि अभी वो जो कैंसर है वो खून के माध्यम से, ब्लड वेजल्स के थ्रू शरीर के कोने कोने में पहुँच चुका है। हो सकता है कि वो ब्रेस्ट से निकल के लंग में चला गया हो, पेट में चला गया हो, ओवरी में चला गया हो, तब हम लोग कहते हैं स्टेज फोर। स्टेज फोर का क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि आपको अभी किसी भी तरह से पेशेंट को क्योर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट हटा भी दो फिर भी आपका कैंसर का जो सेल्स है वो रह जाएगा शरीर के दूसरे अंश में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पेशेंट को स्टेज टू, स्टेज वन, एटलीस्ट स्टेज थ्री में आप अगर पकड़ के मेरे पास लाएंगे तो मैं उनको क्योर का एक चांस दे सकता हूँ, लेकिन स्टेज फोर में क्योर का चांस नहीं है। लेकिन स्टेज फोर का कैंसर भी हम लोग अच्छी तरह से रख सकते हैं, उनका सिम्टम्स जो है दर्द हुआ और भी जो भी समस्या है उनको हम लोग हल कर सकते हैं और उनका आयु बढ़ाने का कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए औजार हमारे पास है।
1: हमारे बहुत सारे श्रोता भी सुन रहे होंगे, उनके जहन में ये आ रहा होगा कि इस तरह की जो खतरनाक बीमारी हम कहेंगे इसकी बचाव हम कैसे कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे?
0: सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको जो खराब जो आदतें हैं जैसे स्मोकिंग करना, आपको पता है स्मोकिंग से लंग कैंसर सबसे कॉमन है, गले का कैंसर, सब कैंसर हो सकता है स्मोकिंग से, आप स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए। दूसरा है कि ओरल जो टोबैको, किसी भी फॉर्म का अगर आप टोबैको आपको लेना है, तंबाकू लेना है, वो बंद कर दीजिए, एकदम मत लीजिए, कोई भी टोबैको सेफ नहीं है। और एक थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए, जो इस प्रदेश का उतना समस्या नहीं है, ये शहरी इलाकों में ज़्यादा रहता है। दूसरा है कि आपको खाना जो है आजकल शहर में ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है सब कुछ, हम लोग पैकेज्ड पकाने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग पैकेट में खाना खरीद के लाते हैं, उसको बना लेते हैं, डीप फ्राई करके लेते हैं, कबाब्स लेते हैं, चार्ड जो फूड होता है वो लेते हैं, ये सारे ही कैंसर कर सकते हैं। तो इसके कारण चलते हम लोगों को ये सब तरफ भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट एक और है, कैसे हम लोग बचाव करते हैं, जैसे सीए सर्विक्स, आपने कहा सीए सर्विक्स 100% बचाव हो सकता है एक वैक्सीन लेने के लिए। आप कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी भी बजट में एक एलोकेट किए थे कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन जो है, जिसे एचपीवी वैक्सीन या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन कहा जाता है, वो अगर आप लगाते हो तो फिर सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, अनाल कैंसर, गले का कुछ कैंसर, सबसे आपको मुक्ति मिल सकती है। तो ये सारे कुछ कुछ काम करना है और कुछ कुछ काम नहीं करना है, इसी से आप अपने शरीर को रोगमुक्त रख पाएंगे।
1: अंत में चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कैंसर के खिलाफ जो युद्ध है उसमें भाग लेना है तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, जिसे हम लोग बंगाली में सचेतनता कहते हैं, वो होना पड़ेगा, आपको सचेतन होना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। और आपको आप मत जाइए, आप कोई अवैज्ञानिक पद्धति की तरफ नहीं जाइए, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट कम है, उसका खर्चा कम है। आप सरकारी हॉस्पिटल में आइए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आइए और आके आप दिखाइए। अगर आपका शरीर में कोई भी रोग है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप हमारे पास आइए, हम आपको देखेंगे और आपका पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति में आपका इलाज करेंगे ताकि आपको कम्प्लीटली क्योर किया जा सके।
1: तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी हम जानकारी ले रहे थे कि कैंसर से हम कैसे बचें, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राजीव। सचमुच श्रोताओं, अगर हम देखें कैंसर रोग के बारे में, तो सबसे अहम बात तो हम ये कहेंगे कि धूम्रपान से ज़रूर बचें और दूरी बनाएं।

श्रोताओं, कैंसर रोग के बाद अब आइए कुछ और हम जानकारी लेते हैं हृदय रोग के बारे में। तो श्रोताओं, हृदय रोग से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और खान पान पर भी विशेष ध्यान देना सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर हृदय रोग के मुख्य कारण अगर हम देखें तो खून में वसा या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से धमनियों में ब्लॉकेज होने लगती है। बीपी नियंत्रण हमेशा रखें, ना रहने पर दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। बढ़ा हुआ शुगर लेवल जो है हृदय रोग के लिए खतरे को दुगुना कर देता है। मानसिक तनाव और चिंता दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं फिर कहूंगा कि स्मोकिंग रक्त वाहिकाओं को कमज़ोर करती है और ब्लॉकेज बढ़ाती है। अब हम बातें करें कि हृदय रोग से हम बचाव कैसे करें, तो इसके लिए भी वही बातें, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, वजन नियंत्रण

0: नियंत्रित रखें, धूम्रपान त्यागें और तनाव से मुक्त रहें। तो चलिए, जब हम बातें कर ही रहे हैं तो कुछ और हम जानकारी ले लेते हैं। हृदय रोग कारण व निदान जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कौशिक।
1: वजह हो सकता है पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, यहाँ पे जो लोग देख रहा हो करीबन ज़्यादा लोग पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से होता है। इसके साथ साथ लोकलिटी भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, इसका लाइफस्टाइल हो सकता है, कुछ फैमिलियल और जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो इस प्रॉब्लम से जो हार्ट का प्रॉब्लम बीमारी यहाँ से ज़्यादा लग रहा है। खान पीने से ज़्यादा लगभग इसका रिलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स काम करता है। बहुत सारे पुअर सोशल स्टेटस में कुछ है, रीमेटिक हार्ट डिजीज यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत है, जो पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में कॉमन है, जो खूब बहुत कम उम्र में एक बुखार होता है, उसका साथ साथ आर्थ्रालजिया जॉइंट पेन होता है, वो हार्ट का इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग रूमेटिक फीवर बोलते हैं। तो इस तरह में रूमेटिक फीवर के बाद हार्ट का भाल का ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, तो हम लोग तब उसका रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, तो भाल ठीक से नहीं काम करते हैं। तो उस टाइप का मरीज में लास्ट दो बार जो देखा, बहुत सारे पेशेंट उस टाइप का बीमारी में सफ़र कर रही थे।
0: अच्छा, ये हार्ट का बीमारी कहने से लोग घबरा जाते हैं, अचानक इनकी मौत भी हो जाती है। हाँ। अगर मान लीजिए इसका कुछ सिम्टम्स ऐसा है जिसे पता चले कि हाँ इसे हार्ट,
1: देखिए ज़्यादा सडन डेथ जो हो रहा है ना, हार्ट से ही ज़्यादा हो रहा है, और वो डेथ का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो हार्ट अटैक जो बोलते हैं, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और एक चीज़ है ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट, सडनली यंग सम खूब बहुत कम उम्र का लड़का सडनली डेथ हो गया, यह सुना सकते हो, तो उसका वजह है मोस्ट लाइकली कार्डियक अरेस्ट, नथिंग बट वन टाइप ऑफ एरिदमिया बोलते हैं हम लोग, हार्ट का रिदिम जो होता है एबनॉर्मल होता है, सडनली हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, हार्ट पंपिंग फेल हो जाता है, तब वो सडनली कोलैप्स कर जाता है, ये एक चीज़ है। और एक जो है हम लोग मैनेज करते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अगर जल्दी से जल्दी उसको अस्पताल में ले जा सकते वो है हार्ट अटैक। इसके उसके लिए आप टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, जब टाइम बढ़ जाएगा, टाइम चला जाएगा तो हार्ट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। जितना जल्दी इमरजेंसी में जा सकते हैं, जितना जल्दी वो हार्ट अटैक के लिए हम लोग जो कॉरोनरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी, वो जो बंद हुआ आर्टरी खोल देते हैं, उसका जितना जल्दी हम लोग कर पाते हैं ना, तो उसका जल्दी उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है।
0: एक अंतिम सवाल है कि हार्ट की बीमारी ना हो, इसके लिए आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं बोलूँगा हार्ट का बीमारी नहीं होने के लिए उसका लाइफस्टाइल का थोड़ा समझ में चलना पड़ेगा, डाइट हैबिट का थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। स्मोकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स फॉर द हार्ट डिजीज, सो स्मोकिंग और एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, मे बी ओरल इनटेक ऑफ टोबैको, दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर द हार्ट डिजीज, सो दिस फैक्टर्स कैन बी मॉडिफाइड। आदमी लोग चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं ये जो खराब जो अभ्यास है, और जो प्रेशर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसके उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर का चेक करना पड़ेगा, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल के उसका ब्लड शुगर लेवल का चेक करना पड़ेगा, बिकॉज दिस हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड शुगर हाई कोलेस्ट्रॉल दिस आर ऑल इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स, दोज कैन बी ट्रीटेड, सो डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना पड़ेगा, उसका ये सब चीज़ है कि नहीं देखना पड़ेगा, अगर है तो डॉक्टर्स का एडवाइस फॉलो करना पड़ेगा।
2: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में, अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम भी समाप्त होता है। पर हाँ, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है खत हमें ज़रूर ज़रूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चायवासा, पिन कोड है 833201। पता फिर एक बार मिला लें, कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चायवासा, पिन कोड है 833201। तो आप रमेश दास को बिता दें नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
2: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
1: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
2: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
1: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
6: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
7: कंडोम,
6: गर्भ निरोधक गोलियाँ,
8: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। वडनगर से वाराणसी तक निकली सेवा यात्रा पहुंची गुमला, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने किया स्वागत। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राशन डीलरों की सुनी समस्याएं, मांगों पर जल्द समाधान का दिलाया भरोसा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने फुटपाथ दुकानदारों के बीच कैनोपी अम्ब्रेला का किया वितरण, कहा रेहड़ी पटरी वाले अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा। CEO के रवि कुमार ने SIR को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा, 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क लगाने का निर्देश। और एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर जीता स्वर्ण, पदक तालिका में 4th स्थान पर भारत। रांची में राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता शुरू। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक निकली सेवा यात्रा के आज गुमला जिले के जारी प्रखंड के कमलपुर पहुंचने पर स्वागत तथा अभिनंदन किया। इस दौरान जनजातीय संवाद का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी नेताओं ने जनजातीय समाज के उत्थान, सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहलों की सराहना की।
10: हमारी महिलाओं और बेटियों के लिए जिन तरह अलग अलग योजना के माध्यम से, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, आज बहनों को सशक्त करने का काम SHG के माध्यम से बहनों को सशक्त करने का काम हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने किया। तो निश्चित रूप से हर छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखते हैं एक अभिभावक के तौर पे।
9: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सेवा सुशासन माह की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर श्री मरांडी ने बताया कि सेवा सुशासन माह के तहत 7 अक्टूबर को झंडा मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा।
11: 7 अक्टूबर को तय है कि सभी देश के जो शासकीय जिला है वहाँ एक बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, ज्योति यात्रा के साथ लोग पहुँचेंगे और देश के प्रधानमंत्री एक ही जगह से वो संबोधित करेंगे और सभी जगहों पर हमारे कार्यकर्ता जनता उसको देख पाएंगे, सुन पाएंगे।
9: राज्य स्तरीय फेयर प्राइस शॉप डीलर संघ की आज रांची में महत्वपूर्ण बैठक हुई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैठक में राज्य भर के राशन डीलरों की समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा।

0: दिलाया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि डीलर संघ की मांगों को लेकर विभाग गंभीर है और जल्द ही उसका समाधान निकाला जाएगा।
1: पूरे राज्य के फेयर प्राइस डीलर्स यहां आज इकट्ठा हुए हैं। स्मारक पत्र हमारे हाथ में है, 8 पॉइंट्स पर इन लोगों ने अपनी मांगे रखी हैं। मैं माननीय मंत्री श्री इरफान जी के सामने उनसे बात करूंगा, उनके साथ इन 8 बिंदुओं के समस्या के निराकरण के लिए पहल करूंगा। जरूरत पड़े तो कैबिनेट के बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इनकी समस्याओं से अवगत कराऊंगा।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज राजधानी में फुटपाथ दुकानदारों के बीच कैनोपी अम्ब्रेला का वितरण किया। रक्षा मंत्रालय के उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE के CSR के तहत कैनोपी अम्ब्रेला उपलब्ध कराए गए हैं। इस मौके पर श्री सेठ ने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य महत्वपूर्ण हिस्सा है।
2: प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि समाज के हर अंग को ध्यान देना, और रेहड़ी पटरी वाले जो देश की आर्थिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है, क्योंकि बिना रेहड़ी पटरी वालों के हम किसी बाजार की कल्पना नहीं कर सकते। हमको सब्जी खरीदना है, फल खरीदना है, हमको चाट खाना है, तो रेहड़ी पटरी वाले, ये हमारी भारतीय संस्कृति है रेहड़ी पटरी। आज कोई भी ऐसा नगर नहीं है देश के अंदर जहाँ रेहड़ी पटरी वाले नहीं है।
0: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने आज लोहरदगा के कुडू में आयोजित प्रखंड स्तरीय जनजातीय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज के लोगों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं और जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जानकारी ली और अधिकारियों को समयबद्ध एवं विधिसम्मत समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति मोर्चा ने रनपास में स्थायी निदेशक की नियुक्ति, आउटसोर्सिंग व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरोध में आज धरना दिया। मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष महेश कुमार मनीष ने मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज जिला निर्वाचन अधिकारियों ERO और AERO के साथ वर्चुअल माध्यम से SIR की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि SIR के तहत नोटिस की सुनवाई के दौरान अलग अलग दस्तावेज मांगने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुमार ने पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए विशेष आउटरीच अभियान चलाने और 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क लगाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं द बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप यानी जनधन क्रांति की। आइए सुनते हैं इस योजना पर देश के प्रधानमंत्री का क्या विजन है।
3: देश के करोड़ों बहनें ऐसी थी जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था, वो बैंकिंग सिस्टम से कोसों दूर थी। इसलिए हमने सबसे पहले जनधन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। आज देश में 42 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं। इनमें से करीब 55% खाते हमारी माताओं बहनों के हैं।
0: प्रधानमंत्री के इसी विजन का असर धनबाद जिले में साफ दिख रहा है।
4: मेरा नाम महेंद्र पुरी है, हम धनबाद के रहने वाले हैं। मेरा जनधन का खाता 2017 में खुला है। जब से ये खुला है तब से बहुत आसानी हो गया है। ये सब चीज के लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे।
5: हम आजाद योगी हैं, मैथन धनबाद में होटल लाइन में काम करते हैं। इससे पहले जब मेरा जनधन खाता नहीं था तो हमको बैंक में लाइन में खड़ा कर रहने में इतना परेशानी था कि मेरा काम बाधित हो जाता था। लेकिन जब से जनधन खाता खुला है तब से मेरा सारा काम ऑनलाइन हो रहा है।
0: एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 1-5 से पराजित कर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इसी जीत के साथ भारतीय टीम ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ ही भारत 21 स्वर्ण समेत 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में खेलो झारखंड अंतर्गत रांची के खेलगांव में आज 2 दिवसीय राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने किया। इस मौके पर झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव मधुकांत पाठक ने कहा कि झारखंड में खेल प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों को और अधिक सुविधाएं देने की जरूरत है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 5 से 9 अक्टूबर तक गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है, हालांकि इसके बाद 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वडनगर से वाराणसी तक निकली सेवा यात्रा पहुंची गुमला। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने किया स्वागत। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राशन डीलरों की सुनी समस्याएं, मांगों पर जल्द समाधान का दिलाया भरोसा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने फुटपाथ दुकानदारों के बीच कैनोपी अम्ब्रेला का किया वितरण, कहा रेहड़ी पटरी वाले अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा। सीईओ के रवि कुमार ने SIR को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा, 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क लगाने का निर्देश। और एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर जीता स्वर्ण पदक तालिका में चौथे स्थान पर। रांची में राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
7: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
6: 104 नंबर वो क्या है बहन?
7: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
8: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
11: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
12: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
13: बढ़ती बच्ची, किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
12: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
13: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
12: माहवारी प्रारंभ होती है,
13: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
12: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
14: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
15: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: पीएम श्री आदर्श उच्च विद्यालय तिलमी और पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कालामाटी में आदर्श युवा ग्राम सभा का आयोजन किया गया। पंचायती राज मंत्रालय और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त प्रयास से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने ग्राम सभा की पूरी बैठक का रोल प्ले किया। आदर्श ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित फूदी पंचायत की मुखिया अनिमा कच्छप ने बताया,
2: बच्चियों के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास रहा। जो भी समस्या आती है गांव में, चूंकि बच्चियां सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से ही आती हैं और बहुत ऐसे जगह से आती हैं, शायद वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्या है, तो इन्होंने देखा होगा उन समस्याओं को और उसी को इन्होंने प्रस्तुत किया यहाँ पर, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने

0: समस्याओं को रखा।
1: 1 अक्टूबर को खूंटी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। खूंटी उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन, उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश समेत जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में संयुक्त रूप से श्रमदान करते हुए निर्धारित क्षेत्र में साफ सफाई की। 30 सितंबर को खूंटी के व्यवहार न्यायालय परिसर में पोस एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिला सुरक्षा, यौन उत्पीड़न रोकथाम और निवारण के लिए बनाए गए अधिनियम 2013 की विस्तृत चर्चा की गई। अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी शिकायत समिति की अध्यक्ष विद्यावती कुमारी ने पोस एक्ट के प्रावधानों और शिकायत निवारण की जानकारी दी। उन्होंने कहा,
2: जो ये जर्नी है वो स्टार्ट हुआ 1997 से, राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां से शुरुआत हो के वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गया, जहां पे गाइडलाइन आई विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से। वो स्ट्रगल रहा 2012 तक, जब तक कि ये एक्ट हमारे देश में लागू नहीं हुआ। तो वो मैडम जो है उस समय पे विशाखा का गाइडलाइन होते हुए भी उन्होंने IPC का राह चुना और FIR दर्ज की।
1: खूंटी व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार ने कहा कि हर कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण माहौल बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा,
3: वर्क प्लेस पे महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए है, जिसमें वो निर्भय होकर के अपना बेस्ट जो है दे सके और पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके एक स्वच्छ वातावरण में काम कर सके।
1: खूंटी जिले के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी गंभीर बीमारियों का इलाज आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत गरीबों और असहायों को मिलने लगा है। इस संबंध में इलाजरत मरीजों, परिजनों और डॉक्टरों ने बताया,
4: सुदूर क्षेत्र में जो कैंप लगाए थे तो उससे फायदा हुआ, लोगों में जागरूकता बढ़ी है और वहाँ से भी लोग आ रहे, धीरे धीरे प्रचार हो गया तो पेशेंट आने लगे। अब समझ में आया कि आयुष्मान से है, बस पेशेंट को समझाना पड़ता है कि आपके लिए आयुष्मान कार्ड है, इससे फ्री में इलाज हो सकता है आप पर, तो लोग समझ के कराने लगते हैं।
5: मेरा नाम राजेंद्र पासवान है, बिहार से आए हुए हैं और मेरा यहाँ गंगा हॉस्पिटल में झारखंड में भर्ती है जी, और आयुष्मान कार्ड नहीं रहता मेरा, किसी तरह कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सरकार का धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री।
1: इधर दूसरी तरफ 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के अवसर पर खूंटी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक जागरूकता आधार एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण, नालसा की योजना तथा माता पिता के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 पर विस्तार से चर्चा की गई। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
6: अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पे। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की है। सुनना चाहे गोल्डन रेडियो लिस्नर क्लब राज पैलेस मौनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, राजीव वर्मा, रितेश सोनी, दुधनाथ भारती, पारुल पल्लवी, शैलजा सोनी, रविदास मंदिर हकीकतपुरा मऊ यूपी से मुन्ना स्वर्णकार, सोनू स्वर्णकार, आर्यन स्वर्णकार, लिटिल पीहू स्वर्णकार एवं पूरा स्वर्णकार परिवार, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, बठिंडा पंजाब से रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक एवं समस्त डागला परिवार, बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, समीमा खानम, निम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, परी, मुस्कान और नबीहा, बड़ी बाजार चाईबासा से ही भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य, कुचाई बिद्री से केपी सेठ सोए, सरिता सोए, दुर्गामती, राजकुमारी, रेशमी, विशाल, मुन्ना और सनी, ग्राम सुराबेड़ा से बासिंग सरदार, वीरू सरदार, रमेश, कमल सिंह और अंशु एवं सरदार परिवार। इसी गीत को सुनना चाहा चांडिल ग्राम हरुड़ी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मन

से कोमल बेसरा, बसंती अन्नू, बनमाली, सिद्धू कुमारी और पूजा, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सौतन का ये प्यारा सा नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

अगली पसंद आप सबों की है, जो जो कुड़मा से मनोज गगराई, बसंती गगराई, सोनाली गगराई, आयशा गगराई, रचना गगराई, जितेंद्र गगराई, महाली साई से बिरबल महाली, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, फूलमणि महाली, शकुंतला महाली, सुमांती महाली, यशोदा महाली, शांति महाली, गांव कोयडा से पोंडे बोईपाई, रेशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा बोईपाई, मोनिका बोईपाई, सुनीता बोईपाई, मीनाक्षी बोईपाई, देवीचरण भंज और तारकेश्वर बांदा, खसवा पतिसाई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, सोनुआ गांव पोड़ाहाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक, मकरू आचार्य, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, मायसा खान, हदिया खान, आशमा सालिया, सोएब खान, पोतरा मुश्तवा खान, राउ भाई, साईद भाई, अमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू, तुरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी, अर्पिता कुमारी, छोटा निमरी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी, रोहन कुमार, बड़ा निमरी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार, वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर, चांदपुर चौक पोटका से संतोष कुमार भगत, बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम और मौसमी, संतोष आनंद। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दिल की राहें, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz से और आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱳᱠ ᱜᱤᱛ ᱛᱮ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱠᱚ
1: ᱤᱱᱥᱟᱱᱚ ᱠᱮ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱭᱟ ᱤᱭᱩᱱᱮᱥᱠᱳ ᱠᱟ ᱥᱚᱱᱫᱮᱥ ᱦᱮ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱛᱮᱞ ᱚᱨ ᱜᱮᱥ ᱡᱚᱞᱟᱱᱟ ᱯᱮᱲ ᱠᱟᱴᱱᱟ ᱚᱨ ᱯᱚᱥᱩᱣᱳ ᱠᱚ ᱯᱟᱞᱱᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱢᱟᱱᱵᱤᱭᱚ ᱠᱟᱢ ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
2: नैन संदेश को चनप इलामियन बेपटा चपगर वायुम लिया चा सगया को स्वच्छता ही सेवा है मीना भी सहर है राम चरित्र प्रसाद अंड ठाकुर चंद मुर्मू तक इन जपगर्तन मार वो आयुम लिया
3: बच्चों को सीखने हम साथ रहेंगे तभी हमारा जीवन आगे स्वस्थ हो सकता है। यहाँ देखा जाता है जहाँ जब कभी से पानी का जो है पानी से मामला जीवन का सबसे ज्यादा है, लोग क्या करते हैं पानी खुला हुआ रहता है उसी पानी को यूज कर देते हैं, पानी गंदा है उसी पानी को पी लेते हैं।

0: हम स्वच्छ भारत का भी बन सकते हैं। जब हमारा धर्म और हमारा गाँव स्वच्छ होगा कभी नीचे गाँव कभी हम स्वच्छ भारत का तो जरूरत है कि हम इसके लिए सफाई का पूरा ध्यान दें, कहीं गंदगी नहीं होना चाहिए, कोई श्रेणी का शौचालय का उपयोग करना चाहिए, यदि शौचालय में कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको अभिगम ठीक करना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम में जारी सब दिक्कतें होती है और खास करके हमारा जो बच्चे जो देश का भविष्य है उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनको बचपन से ही आदत डालनी चाहिए, बच्चा प्रति जागरूक करना चाहिए कि हमें इस तरह से साफ सुथरा रहना चाहिए, शौचालय का सबूत करना चाहिए, शौचालय में जाना चाहिए, खाते समय हाथ को धोना चाहिए, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग लगाना चाहिए और सबसे की मच्छर नहीं पड़ते इसके लिए अगल बगल का सफाई जरूरी है, साफ सुथरा रहना चाहिए, कहीं टायर में या कोई बर्तन में या खराब हुआ कोई हंडी में पानी जमा रहता है उस पानी को हाथ जमा नहीं रखे और समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते रहना चाहिए ताकि मच्छर कमते रहे और हमारा घर द्वार बाहर सबसे शुद्ध वातावरण में रहे, हम स्वच्छ रहे तभी हमारे एक अच्छा नागरिक स्वस्थ आदमी रह सकते हैं, तभी हम देश निर्माण अपना हाथ में। हाँ, मेरा प्रयास है कि हम लोगों को जागरूक करें और एक से दो दो से चार से लोग आगे बढ़ते हैं, कोशिश हो जितना आदमी जितना हम जोड़ सके आदमी को सफाई के प्रति जितना जागरूक कर सके ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे नागरिक का अधिकार है, शासक कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे को सिखा दें, दूसरे को जागरूक करें, खुद ही जागरूक व्यक्ति के लिए धन बनता है, इस तरह से हम अपने जागरूक हैं दूसरे को भी इस तरह से जागरूक करें, हम यदि स्वस्थ हैं तो दूसरे को स्वस्थ रहने का ऐसी तरीका या स्वस्थ रखने का प्रेरणा दें, ताकि हम यदि अगल बगल स्वस्थ वो स्वस्थ हैं हम कितना स्वस्थ रहेंगे हम खुद वो स्वस्थ रहेंगे, इसलिए जरूरत है कि हम स्वास्थ्य का ध्यान रहें, हम लोगों को जागरूक करें कि भाई कहीं भी ये गंदगी है गलत बात है, ऐसा नहीं रहना चाहिए, सबके रास्ते बाहर में जाने उसको आप रोकिए, वहाँ नहीं जाने दीजिए, शौचालय का उपयोग कराइए, शहर किनारे कहीं भी गंदगी हो रहा है उसको आप रोकिए, ये गलत चीज है, बिल्कुल सरकारों से ध्यान देना है, सुबह का मौसम में ये सब लोग ज्यादा करते हैं इसका, इसलिए यदि ऐसा करते हैं तो हमारा साफ सफाई ज्यादा रहेगा, इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है हम स्वास्थ्य पर ध्यान दें, ताकि हमारे प्रधानमंत्री की जो घोषणा है या घोषणा आदमी के यहाँ की जनता की शिक्षा ही है, ना कि प्रधानमंत्री की अकेला की भी है, और हर जनता हर नागरिक और गांधी के जिसका जो सपना है उन्हीं को आज देश के प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार के रूप में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं।
1: ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱥᱚᱪᱪᱷᱚᱛᱟ ᱦᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱦᱮ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱥ ᱯᱟᱥ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱚᱱᱫᱟᱜᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱷᱟᱹᱲᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱟᱣᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱧᱚᱜ ᱦᱚᱪᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱞᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱠᱚ
2: ᱢᱟᱱᱚᱱᱤᱭᱚ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱡᱤ ᱠᱮ ᱫᱩᱨᱫᱚᱨᱥᱤ ᱱᱮᱛᱨᱤᱛᱵ ᱢᱮ ᱯᱤᱪᱷᱞᱮ 8 ᱥᱟᱞᱚ ᱢᱮ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱮᱵᱚᱢ ᱤᱥᱥᱮ ᱡᱩᱲᱮ ᱠᱥᱮᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱟᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱵᱟᱱᱟᱱᱮ और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
3: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं, और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं, बातें हमारे जो खेल चलते तो बढ़िया।
2: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
4: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी, उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
2: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जाए।

0: इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
1: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
2: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
3: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
4: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
5: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
6: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: नैन संदेश को चनाब इला तोंडु सुमारे अंडोमियन संताली सिविल दुरंग तेबो रासलेनो रामचंद्र टूडू अंडो जुड़ी को पाए थे

आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। कार्यक्रम का पहली फरमाइश है आप सबों की। संबलपुर कांकरे से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका यादव और तेजल यादव। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दो दिलों की दास्तान। इस फिल्म का गाना आवाजें हैं सुरेश वाडेकर, पूर्णिमा, लता मंगेशकर की।

अगली फरमाइश है अमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मृत्युदाता का ये नगमा। आवाज़ें हैं अलका याग्निक, मोहम्मद अजीज और विनोद राठौड़ की।

और आइए सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे अगला गीत। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली। गायक लकार हैं लता मंगेशकर।

अगली फरमाइश आप सबों की आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वांकर राही, सरिता ग्वांकर, प्रिंस एकांश ग्वांकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वांकर, प्रणीता ग्वांकर, आकार हार्ट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश ग्वांकर, श्वेता सुमित ग्वांकर, कुमारी ध्वनि ग्वांकर परी, लाडला टुक टुक। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म क्यामत से क्यामत तक का यह गाना, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की है।

अगली फरमाइश आप सबों की। स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक एवं समस्त डागला परिवार, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म ऑल राउंडर का ये गाना। आवाज़ें हैं किशोर कुमार की।

अगली फरमाइश बड़ा निमड़ी चाईबासा से तुलसी पथिक मीरा देवी बजरंगी ठाकुर मीतू रंजन राजीव रंजन मौलिक रंजन अमित कुमार सुमित कुमार और शुभम कुमार की है। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म क्रोध का ये नगमा आवाजें रूप कुमार राठौड़ और साधना सरगम की।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे ये अगला गीत। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ जिला बुरहानपुर मोहत से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन, तैमूर तड़वी, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजुबाई तड़वी, सन्नी बाबू, परू तड़वी एवं समस्त तड़वी परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मेरा सुहाग, इस फिल्म का गाना, आवाजें हैं आशा भोसले की।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ से। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछली एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडल लो।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भील दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना

0: नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
2: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
3: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
2: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
4: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
2: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT कासिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मित के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मित की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मित हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े हैं।
0: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
6: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

भारत ने जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सोने के 5 चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते। हॉकी में भारत ने मलेशिया को 5-1 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता और 2028 में लॉस एंजलिस में मुनाकिदा होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने T20 फाइनल में रवायती हरीफ पाकिस्तान को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता है। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने मर्दों के 57 किलोग्राम के जुमरे में शुमाली कोरिया के आलमी चैंपियन चुंग सॉन्ग हान को फाइनल में 11-7 से शिकस्त दी। खवातीन के इनफरादी तीरंदाजी मुकाबले में कुमकुम महोद ने सोने का तमगा जीता। गोल्फ में प्रणवी उर्स ने खवातीन के इनफरादी खिताब में एशियाई खेलों में सोने का तमगा जीतने वाली भारत की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। भारत ने भी टीम मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल कर लिया है। पहलवान अंतिम अंगल ने खवातीन के 53 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। दीपक पुनिया ने मर्दों के 97 किलोग्राम के जुमरे में मंगोलिया के गैन कुआंग बतार को शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता। तीरंदाज नीरज चौहान ने मर्दों के इनफरादी रिकर्व मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल किया है। मजमुई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत तमगों की फहरिस्त में भारत चौथे मकाम पर पहुंच गया है। भारत के तमगों की तादाद 85 हो गई है, जिसमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। जमहूरिया ने कहा कि यह कामयाबी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि मर्द और खवातीन दोनों टीमें चैंपियन हो गई हैं। न्यू चंडीगढ़ के मुलापुर में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 352 रन का निशाना रखा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 351 रन बनाए। केएल राहुल ने बगैर आउट हुए 87 गेंदों में शानदार 129 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 92 रन और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन बनाए। अंशुल कंबोज ने अपना पहला एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच खेला। इसी तरह नीतीश रेड्डी की टीम में वापसी हुई है। मोहम्मद सिराज भी सीरीज में अपना पहला मैच खेल रहे हैं। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने अब से कुछ देर पहले तक 31 ओवर्स में 3 विकेट पर 216 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मालियाती एहतियात, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी और मुसलसल इस्लाहात के जरिए पिछली एक दहाई के दौरान भारत में इक्तिसादी ताकत और इस्तेहकाम आया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारतीय अमल ने तब्दीली आएगी। आंध्र प्रदेश के सिरी सिटी में एक निजी सनती यूनिट में बॉयलर फटने के हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की हॉकी और क्रिकेट टीमों ने सोने के तमगे जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम महोद और गोल्फ खिलाड़ी प्रणवी उर्स ने भी सोने के तमगे हासिल किए। भारत ने आज सोने के 5, चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, पर ऐसा मन मिला कि जरा से प्यार में डूबा रहा और जीवन बीत गया। साहित्य के आकाश पर कुछ हस्ताक्षर ऐसे होते हैं जिनकी रचनाएं समय की धूल में धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि वक्त के साथ और अधिक प्रखर होती चली जाती हैं। इस वर्ष हम भारतीय कविता के शिखर पुरुष कवि रत्न कुंवर नारायण का जन्मशती वर्ष मना रहे हैं। कुंवर नारायण का संपूर्ण रचना कर्म इस बात का साक्षी है कि एक संवेदनशील रचनाकार अपने युग के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ से किस प्रकार संवाद स्थापित करता है। चक्रव्यूह, आत्मजयी, अभिज्ञ और कुमार जीव तक उनकी कविताओं में पौराणिक कथा संदर्भों के माध्यम से आधुनिक समाज के जटिल अंतर विरोधों और मानवीय विडंबनाओं का बेहद गंभीर अंकन मिलता है। पर वहाँ कविता भी है। वो जहाँ एक ओर मनुष्य के नितांत एकांत और आंतरिक संघर्ष पर विमर्श करते हैं, वहीं दूसरी ओर युग जीवन की उथल पुथल को भी पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी कविता का मुख्य स्वर बनाते हैं। कुंवर नारायण के इसी सृजनात्मक लेखन शैली के अलग अलग अंतः सूत्रों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामेश्वर राय।
1: कुंवर नारायण भाषा के स्तर पर, विचार के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर हमें समृद्ध करते हैं कि उनकी भाषा ठहरी हुई भाषा नहीं है। जिस तरह से हिंदी कविता में छायावाद की भाषा को आप फ्रेम कर सकते हैं, आप उसको पढ़कर कह सकते हैं कि ये छायावाद की भाषा है या ये प्रसाद की भाषा है, ये महादेवी की भाषा है, कुंवर नारायण की रचनाएं भाषा को एक निश्चित ढांचे या मुहावरे में कैद कर लेने की छूट नहीं देती। इसलिए उनकी भाषा के तीन तहें हैं। दरअसल पहली तह वो है जहाँ पर कुंवर नारायण की कविताओं का मिजाज दार्शनिक है। उस दार्शनिकता को व्यक्त करने के लिए कुंवर नारायण जिस भाषा को विकसित करते हैं वो अभिजात्य संस्कृत निष्ठ भाषा है, वो आत्मजयी की भाषा है। दूसरा, कुंवर नारायण की कविताएं खास तौर पर जो इतिहास पर हैं, जैसे उन्होंने फतेहपुर सीकरी पर, दिल्ली पर, लखनऊ पर जो कविताएं लिखी, उनकी कविताओं में उर्दू के शब्द आते हैं, डिक्शन भी उनका उर्दू के करीब जाता है। और तीसरी तरह की वे कविताएं हैं जहां पर वो जीवन के सामान्य अनुभवों को दर्ज करते हैं, वहां बोलचाल की भाषा भी है। तो आप देखेंगे कि कुंवर नारायण की कविताएं कविताओं की भाषा परतदार भाषा है, जिसमें तत्समता भी है, जिसमें उर्दू भी है और जिसमें बोलचाल की भी है। निर्भर करता है कि वो कविता किस विषय पर, किस इलाके में लिखी गई है। मोटे तौर पर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि भाषा एक अलग किस्म की चीज़ है और अंतर्वस्त्र कुछ अलग किस्म की चीज़ है। जिस प्रकार किसी भी छिलके को उसके फल से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से किसी भी रचना को उसकी भाषा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। दरअसल जो अनुभूति है, जो विचार है, वो तो भीतर है, वो घटित हो रहा है रचनाकार के अंदर। जब भी वह रूप लेगा, जब भी वह बाहर आएगा, जब भी वह अभिव्यक्त होगा, तो साहित्य में उसका एकमात्र माध्यम भाषा है। किसी दूसरी कला में भाषा अपेक्षित नहीं है, न मूर्ति में, न चित्रकला में, न संगीत में। केवल साहित्य है जिसकी सत्ता ही भाषा पर निर्भर करती है। इस तरह से जब भी अनुभव बदलेगा, जब भी संबंध बदलेंगे, जब भी दृष्टिकोण बदलेगा, तो निश्चित रूप से भाषा बदलेगी।
0: कुंवर नारायण की भाषा में संकोच, शालीनता और एक गहरी मध्यम आँच थी, मानो वे शोर से किसी दूर एकांत में बैठकर खुद अपने ही वजूद से बहस कर रहे हों। आज जब हमारी युवा पीढ़ी एक अजीब से मानसिक भंवर और लगातार पीछा करते सेल्फ डाउट से गुजर रही है, तो कुंवर नारायण की ठहरी हुई लेखन शैली एक मुकम्मल इलाज की तरह सामने आती है। वो हमें सिखाते हैं कि हर उलझन का तुरंत जवाब पाना जरूरी नहीं, कभी कभी सवालों के साथ चुपचाप जीना भी एक बड़ी बौद्धिक ताकत है। और अब इस दार्शनिक थाल से बाहर निकलकर साहित्य के कुछ और पन्ने पलटते हैं, एक दूसरे अध्याय का रुख करते हैं। साहित्य लेखन में शालीनता और तहजीब के नाम पर हमेशा से कुछ तयशुदा लकीरें खींचती जाती हैं, खासतौर पर तब जब बात एक स्त्री के लिखने, बोलने और सोचने की हो। लेकिन उन तमाम गढ़ी हुई सीमाओं को अपने बेबाक अक्खड़ कलम से बीच से चीर देने का हुनर अगर किसी ने सबसे पहले आजमाया तो वो थी इस्मत चकताई। सुनिए हमारी ये प्रस्तुति, कागजी है पैरहन।
2: आने वाली 24 तारीख उर्दू कथा साहित्य की उन ग्रैंड डेम की याद को समर्पित है जिन्होंने पितृ सत्तात्मक साचों को पहली बार बौद्धिक धरातल पर चुनौती दी।
3: बदायूं के रूढ़िवादी कुंबे की तंग दीवारों से लेकर जिंदगी भर की आजमाइशों तक इस्मत का वजूद मुसलसल बगावत था।
2: छुई मुई, बैलेंस शीट और उनके बहुचर्चित उपन्यास तेरी लकीर ने उस मध्यम वर्गीय यथार्थ को कागज पर उतारा जिससे मुख्य धारा का साहित्य अक्सर आंखें चुरा लेता था।
3: उन पर अश्लीलता के इल्जाम मढ़े गए और अदालतों के कटघरे खड़े किए गए।
2: मगर अदालत में पेशियों के उस दौर के बीच भी सादत हसन मंटो के साथ उनकी वो बेपरवाह संगति इस बात की गवाही थी कि वो किसी भी कानूनी पहरे से दबने वाली कथाकार नहीं थी।
3: और आगे चलकर जब वक्त ने उनके इस विद्रोही साहस के महत्व को स्वीकार किया तो साहित्य में उनके इस अनूठे अवदान के लिए उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी सम्मान से भी अलंकृत किया गया।
2: अदब की इस महफिल में इस्मत चुगताई के तीखे फलसफे और उनकी कहानियों के ताने बाने को अपनी दस्तकारी से सजा रहे हैं कलाकार उदित यादव और आमना।
4: जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्जे हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खिलने में है निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। इस्मत से मेरी पहली मुलाकात के नक्श अभी तक दिलो दिमाग में महफूज हैं। बहुत ही सादा लिबास में थी, छोटी कन्नी की सफेद धोती, सफेद जमीन का काली खड़ी लकीरों वाला चुस्त ब्लाउज, हाथ में छोटा पर्स, पाँव में बगैर एड़ी का ब्राउन चप्पल, मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक, छोटे मगर घुंघराले बाल, जरा सा मुस्कुराने पर भी गालों में गड्ढे पड़ जाते थे।
5: इस्मत पर लिखने के दौरे पड़ते हैं, ना लिखे तो महीनों गुजर जाते हैं, पर जब दौरा पड़े तो सैकड़ों सफे उसके कलम के नीचे से निकल जाते हैं। खाने पीने नहाने धोने का कोई होश नहीं रहता, बस हर वक्त चारपाई पर कोहनियों के बल औंधी लेटी अपने टेढ़े मेढ़े आराम और इमला से बेनियाज खत में कागजों पर अपने ख्यालात मुंतकिल करती रहती है। टेढ़ी लकीर जैसा तूल तवील नॉवल मेरा ख्याल है इस्मत ने कुछ 7-8 नशिस्तों में खत्म किया था। उसका कलम और उसकी जबान दोनों बहुत तेज हैं। लिखना शुरू करेगी तो कई मर्तबा उसका दिमाग आगे निकल जाएगा और अल्फाज बहुत पीछे हाफते रह जाएंगे। बातें करेगी तो लफ्ज एक दूसरे पर चढ़ते जाएंगे। शेखी बगाड़ने की खातिर अगर कभी बावर्ची खाने में चली जाए तो मामला बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तबीयत में चूंकि बहुत ही उजलत है इसलिए आटे का पेड़ा बनाते ही सिकी सिकाई रोटी की शक्ल देखना शुरू कर देती है। इस्मत की तबीयत में जिद है, बिल्कुल बच्चों की सी। पहले शादी से इनकार करती रही, जब आमादा हुई तो बीवी बनने से इनकार किया, बीवी बनने पर जो तो रजामंद हुई तो माँ बनने से मुनकिर हो गई। तकलीफें उठाएगी, सोबतें बर्दाश्त करेगी मगर जिद से कभी बाज नहीं आएगी। میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ زندگی کی حقائق سے دو چار ہو کر بلکہ ٹکرا کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے،
4: بھائی میں بولڈ اس لیے ہوں کیونکہ بھائیوں کے ساتھ پلی تھی، سینا پیرونا کاڑنا اور بننا ان سب چیزوں میں میرا کبھی جی ہی نہیں لگا، اور رونے گلا پھاڑ کر چلانے میں ہم سب بھائی بہنوں کو خاصی مہارت حاصل تھی۔ ہماری اماں بوکھلا کر ہمارا کہنا ماننے پر مجبور ہو جاتی، ہمیں اپنی اس طاقت کا شدت سے احساس تھا۔ بچے رو پیٹ کر ہی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں۔
5: اماں کے ہاتھ اگر پڑ جاؤں تو خام خواہ ہی مار دیتی تھی۔ ہم پوچھتے کہ بھائی کیوں مارا ہے، ہم نے کچھ بھی شرارت نہیں کی، تو جواب میں کہتی آج نہیں کی تو کل کرو گی، لیکن پھر بھی بڑی پیاری لگتی تھی۔ پتہ نہیں اتنا مارتی تھی تب بھی مجھے کیوں اتنی اچھی لگتی تھی۔
4: خیر صاحب، بچپن جیسے تیسے بیتا، یہ کبھی پتہ نہ چلا کہ لوگ بچپن کے بارے میں ایسے سہانے راگ کیوں الاپتے ہیں۔ بچپن نام ہے بہت سی مجبوریوں کا، محرومیوں کا، بڑے ہو کر ایک پوزیشن بنتی ہے جو ناانصافیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتی ہے۔ آٹھ بڑے بھائی بہنوں کی شفقتیں جھیلنے کے بعد بڑے ہونے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ جب گھر میں چھوٹے بھانجے بھتیجے پیدا ہونے لگے تو اپنی بزرگی کا احساس نہایت تسلی بخش ثابت ہوا۔
5: میری بہنیں نہایت سگھڑ تھیں، اردو فارسی قرآن شریف کے علاوہ کشیدہ کاری، بنائی سلائی اور کھانے پکانے میں مشاہ، اور میں نہایت پھوہڑ۔ بھائیوں کی نقل میں پیڑوں پر چڑھنا، سائیکل دوڑانا، ہر جگہ مجھے اپنی شکست کا احساس ہوتا۔ انہیں بھی مجھ پر ترس کیوں آتا آخر؟ میں ابا کی شہ پر ان کی برابری پر تلی ہوئی تھی۔ عظیم بھائی ہمیشہ کے بیمار ہی تھے، میں لڑکی ہونے کی وجہ سے بھائیوں کے ساتھ نبھا سکتی تھی اور وہ بیماری کی وجہ سے مجبور تھے، پر صاحب انہیں کچھ مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ لڑکے تو بیل ہوتے ہیں، تم بیل کیوں بنو، پڑھائی میں تم ان سے ٹکر لو، وہاں تم انہیں مار لو گی۔ پھر انہوں نے مجھے بڑی محنت سے پڑھانا شروع کیا، دو بار مجھے ڈبل پروموشن دلوایا۔ ان کی شے پا کر میں نے قرآن کا ترجمہ، حدیثیں اور اسلام کی ہسٹری پڑھی، اور اپنے ابا کے بزرگ دوستوں کے بیچ بیٹھ کر اپنی تازہ تازہ معلومات کا اظہار کرنا شروع کیا۔ مگر ابا کی شے پا کر میں نے اپنے والد کے معمری دوستوں کی صحبت میں بہت کچھ سیکھا۔
4: میری اماں کو میری حرکتیں ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، میرے انجام کی انہیں سخت فکر تھی۔ یہ مرد مار باتیں عورتوں کو زیب نہیں دیتی، وہ اتنی گہرائی سے نہ ان باتوں کو سمجھتی تھی اور نہ سمجھا سکتی تھی۔ مگر مجھے معلوم ہوا کہ میری اماں کیوں ڈرتی تھی، یہ مرد کی دنیا ہے، مرد نے بنائی اور بگاڑی ہے، عورت ایک ٹکڑا ہے اس کی دنیا کا جسے اس نے اپنی محبت اور نفرت کے اظہار کا ذریعہ بنا رکھا ہے، وہ اسے موڈ کے مطابق پوچھتا بھی ہے اور ٹھکراتا بھی ہے۔
5: میں نے اپنی زندگی کے نہایت دلچسپ اور نہایت ہی کٹھن لمحے لکھنے کے سہارے جھیلے ہیں، یہ قلم میرا رزاق بھی ہے اور ہمدم بھی، تنہائی قبولتا چالتا دوست بھی، اس کی موجودگی میں میں نے کبھی اکیلا پن محسوس نہیں کیا۔ میں جب چاہوں اس اڑن کھٹولے کے ذریعے جسے چاہوں بلا لوں، اور جب وہ آئے تو جی چاہے ان سے کہوں، ہساؤں رلاؤں یا جی جلا کر خاک کر دوں، پھر موڈ آئے تو پرزا پرزا کر کے فنا کر دوں، کٹ پتلیوں کی طرح پتلے بنا کر جیسے چاہوں نہ چاہوں۔
4: میں نے چوری چپکے جب انگارے پڑھی، رشید آپا ہی مجھے ایک ایسی ہستی نظر آئیں جنہوں نے مجھ میں خود اعتمادی پیدا کی، میں نے انہیں اپنا گرو مان لیا۔ علی گڑھ کی چھوٹی زہر آلود فضا میں وہ بڑی بدنام تھی، میری صاف گوئی کو انہوں نے سراہا، اور پھر میں نے ان کی بتائی ہوئی کتابیں چاٹ ڈالی۔ پھر میں نے لکھنا شروع کیا اور میرا ڈراما فسادی ساقی میں چھپا۔ اس کے بعد اور کہانیاں لکھیں اور کوئی کہانی رد نہیں ہوئی۔ ایک دم مجھ پر اعتراض ہونے لگے، لیکن رسالوں سے میری کہانیوں کی مانگ بڑھنے لگی۔ میں نے اعتراضات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ منٹو کے فون سے معلوم ہوا کہ اس پر بھی مقدمہ چلا ہے، اسی کورٹ میں اسی روز اس کی بھی پیشی ہے۔ پھر صفیہ اور منٹو دوڑے آئے۔ منٹو نہایت حشاش بشاش، جیسے کسی نے وکٹوریا کراس دے دیا ہو۔ میں دل میں بڑی نادم تھی، बज़ाहिर बहादुरी जता रही थी मगर मंटो से मिलकर शाहिद की भी ढारस बन गई और मुझे बड़ी तसल्ली हुई। दिल में तो धकड़ पकड़ हो रही थी मगर मंटो ने वो शह दी कि मेरा भी डर निकल गया। कहने लगा, अरे एक ही तो मारखे की चीज लिखी है आपने, अमा शाहिद तुम भी क्या आदमी हो यार, तुम भी चलना, तुमने जाड़ों का लाहौर नहीं देखा।
5: चुप करो मंटो साहब, सफिया नर्वस होने लगी और फिर मुगलजात के भरे खत खुत का ताता लग गया। ऐसी अनोखी पेचदार भारी भरकम गालियां कि मुर्दे के सामने बक दी जाएं तो उठकर भाग जाए, मुझे ही नहीं मेरे पूरे खानदान को, शाहिद को और मेरी 2 महीने की बच्ची को कि उसकी पैदाइश की खबर कहीं छप गई थी। मुझे अपनी डाक से डर लगता था जैसे लिफाफों में सांप बिच्छू और अजगर बंद हों। डरते डरते खत खोलती, अगर सांप बिच्छू दिखाई पड़ते तो 2 लफ्ज पढ़कर खत जला देती। अगर शाहिद के हाथ खत पड़ जाता तो फिर तलाक की नौबत आ जाती। मुझे अपने जुर्म का एतराफ था, सिर्फ मंटो एक ऐसा वाहिद इंसान था जो मेरे इस बुजदिलाना रवैये पर भड़क उठता था। मैं खुद अपने खिलाफ थी और वो मेरी हिमायत करता था। तरक्की पसंदों ने ना मुझे फटकारा ना मेरी तारीफ की और मुझे इस रवैये से बड़ा इत्मीनान होता था। मैं खुशकिस्मत हूँ कि जीते जी मुझे समझने वाले पैदा हो गए। मंटो को तो पागल बना दिया गया, तरक्की पसंदों ने भी उसका साथ ना दिया, मुझे तरक्की पसंदों ने ठुकराया नहीं और ना ही सर पर चढ़ाया। मैं बहुत आसूदा हाल थी, फिल्मों से हमारी बहुत अच्छी आमदनी थी और अदबी मौत या जिंदगी की परवाह ना थी। और वैसे मैं तरक्की पसंदों की खुद भी चमची बनी हुई थी और बड़े जोर शोर से इनकलाब ला रही थी।
4: पत्रस बुखारी ने इस्मत के बारे में लिखा था कि हमें इस बात को तस्लीम करने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि इस्मत की शख्सियत उर्दू अदब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कुछ ऐसी पुरानी फसीलों में रखने डाल दिए हैं कि जब तक वो खड़ी थी कई रास्ते नजरों से ओझल थे। इस कारनामे के लिए उर्दू जानने वालों को ही नहीं बल्कि उर्दू के अदीबों को भी उनका एहसान मंद होना चाहिए।
5: इस्मत फुहश निगार है, हल्का हल्का तंज और मजा इस्मत के स्टाइल की मुमताज खूबियां हैं। इस्मत तलवार की धार पर चलती हैं, उन पर बहुत कुछ कहा गया है और कहा जाता रहेगा, कोई उन्हें पसंद करेगा कोई ना पसंद, लेकिन लोगों की पसंदीदगी और ना पसंदीदगी से ज्यादा अहम चीज इस्मत की तख्लीकी कुव्वत है। बुरी भली जैसी भी है कायम रहनी चाहिए। अदब का कोई जुग्राफिया नहीं, उसे नक्शों और खाकों की कैद से जहां तक मुमकिन हो बचाना चाहिए।
4: कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं,
5: तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं,
4: तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं,
5: तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं,
4: अपनी तारीख का उनवान बदलना है तुझे,
5: उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।
6: अभी आपने सुनी इस्मत चटकाई के बागी और बेखौफ जीवन पर आधारित एक जीवंत दास्तान कागजी है परहन, जिसे प्रस्तुत किया उदित यादव और आमिना ने। साहित्य की इस दुनिया के भी अजीब रंग हैं। अगर आप इस्मत आपा के उपन्यासों और कहानियों के पन्नों को पलटें तो वहाँ चांद कोई आसमान का सजावटी खिलौना नहीं बल्कि वो किरदारों के अकेलेपन का खामोश गवाह बनता चलता है। जैसे उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर में शमन का कमरा हो या फिर उनकी कहानियों में कोठरियों की घुटन, जहां आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा और खिड़की से झांकता वो चांद ही पात्रों की तन्हाइयों का इकलौता हमराज होता है। शरद पूर्णिमा की रात जब गगन धुले हुए दूधिया प्रकाश से नहाया सा रहता है, जब इस रात की ठंडी और रेशमी चांदनी आंगन की सिलवटों को छूती है तो हवा में एक अजीब सा नशा और खामोशी घुल जाती है। ये सिर्फ शरद का चांद नहीं बल्कि सदियों से कवियों की रूह में उतरता वो जादुई एहसास है जो हर दिल की अनकही धड़कनों को अल्फाज दे जाता है। महाकवि कालिदास के मेघदूत से लेकर रीतिकाल के कवियों तक और आधुनिक काल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में

0: चांद कभी सपने की तरह उतरता है, या फिर हरिवंश राय बच्चन या शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में वो तन्हाई और प्रेम का हमसफर बनकर चमकता है। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हो या फिर सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति चित्रण, हर बड़े रचनाकार ने शरद पूर्णिमा के इस चांद को अपनी संवेदनाओं का आईना बनाया है। आइए चांद और कविताओं के इसी रुपहले ताने बाने को सुनते हैं हमारी अगली लघु प्रस्तुति चांद कविताओं का हमसफर में। सचिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय की एक कविता है चांदनी चुपचाप। चांदनी चुपचाप सारी रात सूने आंगन में जाल रचती रही, मेरी रूपहीन अभिलाषा अधूरे पन की मध्यम आंच पर तजती रही, व्यथा मेरी अनकही आनंद की संभावना के मनश्चित्रों से परचती रही। मैं दम साधे रहा मन में अलक्षित आंधी मचती रही, प्रातः बस इतना कि मेरी बात सारी रात उघड़ कर वासना का रूप लेने से बचती रही।
1: शरद पूर्णिमा की रात आसमान में खिला चांद और उसकी चांदनी। भारतीय साहित्य में चांद का ये रूप सिर्फ प्रकृति का सुंदर दृश्य नहीं बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक बेहद ही आत्मीय माध्यम भी रहा है।
2: भक्ति काल के कवियों से लेकर आधुनिक दौर के रचनाकारों तक चांद ने प्रेम, विरह, स्मृति और जीवन के अनेक भावों को शब्द दिए हैं। कविता में चांद के इसी बदलते रूप और उसके साहित्यिक उपख्यानों पर एक नजर डाल रही हैं डॉक्टर रिजवाना फातिमा, पूर्व शिक्षिका, दिल्ली विश्वविद्यालय।
0: हिंदी कविता में चांद केवल आकाश में चमकने वाला एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि वह प्रेम, सौंदर्य, विरह, स्मृति, कल्पना, अकेलेपन और मानवीय संवेदनाओं का एक बहुआयामी प्रतीक है। चांद को किस रूप में देखा जाता है, ये कवि की दृष्टि उसकी भावभूमि, सामाजिक संदर्भ और काव्य परंपरा पर निर्भर करता रहा है। चांद को सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता रहा है। चांद का उज्ज्वल चेहरा, उसकी शीतलता, उसकी आभा, प्रेम की कोमलता तथा आकर्षण को वो व्यक्त करती है। लेकिन इसके साथ ही भक्तिकालीन कविता की अगर मैं बात करूं तो सूरदास, उन्होंने वहां पर चांद को खिलौने के तौर पर प्रयुक्त किया है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, कृष्ण जिद कर रहे हैं अपनी माता से कि वो चांद रूपी खिलौना लेना चाहते हैं। चांद जो है वो प्रतीक रहा है मानवीय संवेदनाओं का, जो मानवीय रिश्ते हैं। हम भक्तिकाल से निकल कर के रीतिकालीन कविता की तरफ जब आते हैं तब देखते हैं कि वहां पर चांद जो है वो विरह और अकेलेपन के साथ में प्रिय व्यक्ति की भी याद दिलाने का कार्य करता है। नायिका के मुख के सौंदर्य की भी बात करता है। उदाहरण के तौर पर बिहारी की कविता को लिया जा सकता है। कहते हैं पत्रा ही तिथि पाइये वाघर के चिन्ह पास, नित प्रति पुण्य रहे आनंद उपजास। मतलब कि नायिका का जो मुख है उसकी आभा के सामने चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़ रही है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि नायिका के घर के आसपास जो आसपास हमेशा ही पूर्णिमा बनी रहती है क्योंकि उसका मुख का उजाला ही इतना देखे। चांद से भी श्रेष्ठ नायिका का मुख है ये। केशव ने रामचंद्र कामे सीता के मुख के सामने चंद्रमा को दोषयुक्त सिद्ध किया है। तो कुल मिलाकर के जो चांद है वो हमें अलग अलग रूपों में आता हुआ दिखाई देता है कविता।
1: शरद पूर्णिमा के चांद का भारतीय साहित्य और परंपरा में विशेष आध्यात्मिक महत्व भी है। शरद पूर्णिमा की चांदनी में छिपे इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए सुनिए दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर निशा नाथ पुरोहित को।
3: शरद चांदनी मेरा अंतःस्पंदन तुम भी क्षण क्षण जी लो, यह जीवन केवल वही जीवन नहीं है जो इस लोक में बिताया गया है। शरद चांदनी का महत्व आध्यात्मिक भी है। इस अध्यात्म में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कृष्ण रूपी परमात्मा, गोपिकाएं रूपी आत्माएं और उन सब का मिलजुल कर होने वाला नृत्य अर्थात शरद चांदनी का यह सुंदर उत्सव बहुत आगे तक आध्यात्मिकता को छू लेने वाला है। मणिपुरी रास लीला में शरदोत्सव का या शरद रास का विशेष महत्व है। आगे अपनी कविता में लिखते हैं, शरद चांदनी बरस रही है, अंजुरी भर पी लो, तुम भी क्षण क्षण जी लो। शरद ऋतु यही तो वो है जिसकी कवियों ने लेखकों ने बहुत प्रशंसा की है।
2: सदियां बीत गईं, दौर बदल गए, लेकिन चांद को निहारने और उसे शब्दों में पिरोने का सिलसिला आज भी जारी है। कभी वो प्रेम का प्रतीक बनता है तो कभी विरह और स्मृतियों का।
1: ये चांद है जो हर दौर में कवियों की कल्पना को रोशनी देता रहा है और आज भी कविताओं में अपनी जगह बनाए हुए है।
2: काव्य वाचन स्वर सौम्या वाजपेयी, छात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं हूँ प्रांजल।
2: चांद कविताओं का हम सफर। अभी आपने सुनी ये विशेष लघु प्रस्तुति। ऋतुओं के बदलते रंगों के बीच जब हवाओं में त्योहारों की आहट और मौसम में गुलाबी सी ठंड घुलने लगती है तो ये महीना अपने साथ केवल ऋतु परिवर्तन की ही अनुभूति नहीं लाता बल्कि साहित्य की उन अमर स्मृतियों को भी हमारे सामने लाता है जिनकी आभा समय बीतने के साथ और गहरी होती जाती है। वो नाम हमारी भाषा में होते हैं, हमारी स्मृतियों में होते हैं और कभी कभी हमारे अपने अनुभवों में भी। सबसे पहले स्मरण कथा सम्राट प्रेमचंद का, जिन्होंने साहित्य को गांव, खेत और आम जीवन की धड़कनों से जोड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने कविता को रूढ़ बंधनों से मुक्त कर उनमें स्वाधीन चेतना, विद्रोह और करुणा के स्वर भरे। शीला शुक्ल, जिन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से समाज की विरूप विसंगतियों को सामने रखा। भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य के भीतर के द्वंद और जीवन के जटिल प्रश्नों को स्वर दिया। आधुनिक हिंदी कहानी और वैचारिक बहस को नया तेवर देने वाले पुरोधा राजेंद्र यादव। असरार उल हक मजाज, जिनकी शायरी में रूमानी संवेदना के साथ अपने समय की बेचैनी भी दर्ज है। तन्हा दिलों और संघर्षशील इंसानों के पक्ष में बेबाक और खूबसूरत गीत लिखने वाले साहिर लुधियानवी और अपनी सादगी भरी जुबान से जिंदगी के फलसफे को आम आदमी तक पहुंचाने वाले नायाब रचनाकार निदा फाजली। इन सभी साहित्यिक विभूतियों की स्मृति और उनके अमूल्य साहित्यिक अवदान को नमन करते हुए साहित्य भारती का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: एशियन गेम्स आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्री रफीक खान का।
1: 20वें एशियाई खेलों की स्पर्धाएं आज तकरीबन समाप्त हो गईं। दो सप्ताह का खेल मेला, शानदार जानदार प्रदर्शन की खुशी तो कहीं चूक जाने का गम, या फिर अपने तई हर संभव प्रयास न कर पाने का मलाल, यही तो खेल है। खेलों का रोमांच है, खेलों का जुनून है, उनका जादू है। खेल आपको खुद को साबित करने का दूसरा मौका भी जरूर देता है, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे समय। एक और बड़ी बात, ऐसे खेल मेले दूर दराज के खिलाड़ियों से मिलने, सोच को साझा करने, आत्मीयता जगाने का भी अवसर देते हैं और अपनी संस्कृति को दूसरे तक पहुंचाने का भी। आईची नगोया एशियाई खेलों पर अपनी दैनिक हाइलाइट्स के साथ उपस्थित हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। पुरुष हॉकी में भी स्वर्ण पदक आया और 2028 ओलंपिक का टिकट भी। क्रिकेट में भारत की बादशाहत बरकरार, बना चैंपियन। कुश्ती में आज तीनों रंग के एक एक पदक आए। गोल्फ में हुआ कमाल, प्रणवी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, टीम रजत भी। आर्चरी में कुमकुम का कमाल, महिला स्वर्ण पदक पे निशाना लगाया। पुरुष हॉकी में भारत ने आज गजब का फाइनल खेला मलेशिया के विरुद्ध, 5-1 से धमाकेदार जीत और एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल पाया और पहली बार महिला और पुरुष दोनों गोल्ड मेडल भारत ने एक ही गेम में जीते। लेकिन पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में चिर प्रतिद्वंदी थे आमने सामने भारत और पाकिस्तान। पिछले काफी समय से भारत इस प्रतिद्वंदिता में लगातार हैवीवेट बना रहा है और आज भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। भारत की जीत और स्वर्ण पदक की पूरी आशा थी जो खिलाड़ियों ने आसानी से पूरी कर दी, पहले बैटिंग कर 200 प्लस का स्कोर खड़ा करके। मैच की मीमांसा मेघा से।
2: इंडिया हैव कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन क्रिकेट एट द एशियन गेम्स। द इंडियन मेंस टीम डिफीटेड पाकिस्तान बाय 19 रन्स इन द फाइनल टू सक्सेसफुली डिफेंड द एशियन गेम्स टाइटल। बैटिंग फर्स्ट, इंडिया पोस्टेड एन इंपोजिंग 211 फॉर 6। अभिषेक शर्मा लेड द चार्ज विद अ ब्लिस्टरिंग 61 ऑफ 28 डिलीवरीज, इंक्लूडिंग 7 सिक्सेस एंड 3 फोर्स। ही ब्रॉट अप अ हाफ सेंचुरी इन ओनली 20 बॉल्स। तिलक वर्मा प्रोवाइडेड द फिनिशिंग फ्लरिश विद एन अनबीटन 51 ऑफ 22 बॉल्स, हेल्पिंग इंडिया क्रॉस द 200 मार्क। Pakistan's trees got off to a difficult start as India's spinners made early inroads. Akshar Patel picked up two important wickets, leaving Pakistan struggling at 76 for 3 at the halfway stage. Hasan Nawaz kept Pakistan's hopes alive with a fighting 96, but India held their nerve to restrict Pakistan to 192 for 6. This victory completes India's cricket double at the Games. The women's team had earlier defeated Sri Lanka by a commanding 147 runs in the final. Two teams, two gold medals and another successful Asian Games campaign for Indian cricket.
1: हॉकी में कल हमने महिलाओं का हुनर देखा तो आज पुरुषों की बारी थी। हाँ, रणनीति कल से अलग थी, सिर्फ रक्षण नहीं, आक्रमण से भरपूर टीम पूरा चढ़कर खेली और दिखाया कि हमारी तो आज की नीति है आक्रमण करो गोल कमाओ। एक परफेक्ट मैच खेला भारत ने आज, खासकर हाफ टाइम के बाद के दोनों क्वार्टर्स में तो भारतीय हॉकी की धनक पूरे मैदान में गूंज रही थी। हूटर बजा तो वो भारत के इन एशियन गेम्स में 5-1 से अपने 5वें स्वर्ण पदक का जयघोष था। वो पहले क्वार्टर की शुरुआत संयत तरीके से हुई, एक दूसरे को आंकने में ज्यादा मूव नहीं बने। खेल ने रंग पकड़ा करीब 10 मिनट के बाद, पहला पेनल्टी कॉर्नर रोक दिया गया। फिर हरमन ने दिखाया कि क्यों उन्हें पेनल्टी कॉर्नर्स और ड्रैग फ्लिक का किंग कहा जाता है। लेकिन हॉकी प्रेमी इस लीड का आनंद ले पाते तब तक प्रत्याक्रमण हुआ मलेशिया का। शैलो सिल्वेरियस ने शानदार फील्ड गोल कर दिया, बिल्कुल हाफ वॉली स्टाइल में उन्होंने शॉट मारा। सेकेंड क्वार्टर में मलेशिया ने हमले बनाए लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा किया भारत ने। दो पेनल्टी कॉर्नर भी उन्हें मिले लेकिन रक्षण ने बेकार कर दिए। फिर भारत के हमले हुए, पेनल्टी कॉर्नर मिला, इस बार जुगराज ने लिया। उन्होंने अपनी ड्रैग फ्लिक की स्पीड दिखाई, दाहिनी ओर के गोल पोस्ट को खड़का दिया। हाफ टाइम का स्कोर 2-1। तीसरे क्वार्टर से भारतीय टीम पूरे रंग में आ गई और मलेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। एक के बाद एक मूव बनाए, हरमन का एक पुश मनदीप को गया और उनका शॉट मलेशिया के डिफेंडर के शरीर से लगकर गोल के सामने और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हार्दिक ने गोलकीपर को छकाता हुआ जन्नाटेदार शॉट लगाया और भारत 3-1 से आगे। अब भारतीय फैंस को थोड़ी राहत की सांस मिली क्योंकि हॉकी में एक गोल का अंतर तो आप जानते हैं, आप चैन से नहीं बैठ सकते। फोर्थ क्वार्टर में मलेशिया के पास एक ही च्वाइस बची थी, ऑल आउट अटैक पर जाने की। शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की, लेकिन भारतीय रक्षण पूरी तरह मजबूत और अभेद्य था और बहुत जल्द ही भारतीय ही पूरे मैदान पर छा गए। एक के बाद एक आक्रमण करते हुए मलेशिया मैच में दिखा ही नहीं। एक बार तो 4 पेनल्टी कॉर्नर्स एक के बाद एक मिले। फिर एक भारतीय हमले में अभिषेक ने एक शानदार दौड़ लगाई गेंद के साथ, बिल्कुल बेस लाइन के पैरेलल, और उसके बाद पास भेजा गोल के सामने खड़े हुए शिलानंद लाकरा को, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और भारत 4-1 से आगे। स्वर्ण पदक तो बिल्कुल पक्का सा हो गया, लेकिन हमले जारी रहे और पेनल्टी कॉर्नर आया तो हरमन ने डी पर इस बार सिर्फ 3 खिलाड़ी रखे। समय उनको पूरा मिला और सीधा गोली की तरह जन्नाटेदार शॉट लगाया उन्होंने, स्कोर को कर दिया 5-1। इत्तेफाक से ये वो समय था जब भारतीय इन गेम्स में अंतिम बार

0: इसी मैदान में थे, यानी खेलों से शानदार विदाई ली 5-1 से सुनहरी जीत के साथ और ओलंपिक खेल 2028 के प्रवेश टिकट के साथ। जय हो भारतीय हॉकी की। गोल्फ में कल ही प्रणवी ने लीड बना ली थी, पहले स्थान पर आ गई थी। आज 10वें होल से उन्होंने शुरुआत की और संयम, एकाग्रता, सटीक स्ट्रोक्स और खुद पर पूरा काबू रखते हुए अपने लीड को बनाए रखा और इतिहास रच डाला। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी अर्श के अर्श तक पहुंचने की कहानी साक्षी मंडवाल से।
1: प्रणवी ओर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा आल्सो क्लेम द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर इन 2002। द 24 ईयर ओल्ड लॉन्ग वेट फाइनली केम टू एन एंड विद प्रणवी ओर गेटिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी ओर्स हेल्ड हर नर्व्स टू win the women's individual golf gold medal, finishing the 4-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Jin Ruining, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory. Let's remind all of you once again that Pranavi Urs, Aditi Ashok and Deeksha Dagar also claimed the silver medal in the women's team event in golf today.
0: लड़कियों का जादू तीरंदाजी में भी बना रहा, वो कथा तो सबको पता है, अर्जुन और मछली की आंख की। अमरावती महाराष्ट्र की 17 बरस की कुमकुम को भी लगता है बस टारगेट बोर्ड का सेंटर ही दिख रहा था। आज तीसरा पदक, वो भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। कुमकुम के सनसनाते तीरों का बयान कर रही हैं मेघा।
2: Indian archery has signed off from the Asian Games with another historic performance, and at the center of it is 17-year-old Kumkum Anil Mohod. Kumkum clinched the gold in the women's individual recurve event, defeating South Korea's Oh Ye-jin in a dramatic shoot-off. With the scores tied at 5-all, the Indian teenager produced a perfect 10 while her opponent managed an 8. Earlier, Kumkum had defeated reigning world champion Kang Chaeyoung in the quarterfinals and China's Chu Xingyi in the semi-finals. Her victory makes her the first Indian archer to win an individual recurve gold medal at the Asian Games. She's also secured an individual recurve quota place for India at the Los Angeles 2028 Olympics. And there was more to celebrate in the men's competition. Neeraj Chauhan defeated compatriot Dheeraj 6-4 in an all-Indian bronze medal contest. Neeraj fought back from 4-2 down to secure his place on the podium. For Kumkum, this was her third medal of the games, following gold in women's recurve team event and silver in mixed team event. India's archery contingent finishes with 9 medals, 5 gold, 2 silver and 2 bronze, a campaign that underlines India's growing strength across both recurve and compound category.
0: पहलवानों ने भी भारतीय पदकों का ढेर बड़ा करने का बीड़ा उठा रखा था। आज 5 पहलवान थे, 2 रेसलर फाइनल में पहुंचे तो 2 कांस्य पदक के मैट पर। दांव पेंचों का सारा विवरण शाहिद आजमी से।
3: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कुश्ती का अभियान शानदार अंदाज में समाप्त हुआ। भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही अमन सहरावत की, जिन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। फाइनल में अमन का सामना उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग से हुआ। अमन ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और 4-1 की बढ़त बना ली। हालांकि चोंग सोंग ने वापसी करते हुए स्कोर 7-6 कर दिया। मुकाबले के आखिरी मिनट में रोमांच अपने चरम पर था। दबाव के इस दौर में अमन ने बेहतरीन टेकडाउन लगाकर 4 अंक हासिल किए और स्कोर 11-7 कर दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़त कायम रखी और भारत के लिए स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में अमन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने जापान के यामातो ओगावा को 20-9 और कजाकिस्तान के नूरदानात एतानोव को 12-1 से हराया। सेमीफाइनल में 2-6 से पिछड़ने के बाद ताजिकिस्तान के एयाल बेलोबेवस्की के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 14-8 से जीत दर्ज की। हांगझोउ एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने इस बार अपने पदक का रंग बदलकर स्वर्ण कर दिया। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें जापान की मोए क्योका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की साकिब जमाल एसबोसिनोवा को 8-0 से और सेमीफाइनल में चीन की जिन जांग को 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस रजत के साथ अंतिम ने एशियन गेम्स में अपना दूसरा पदक हासिल कर लिया। आपको बता दें, गुड़गांव में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उधर पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुया गनबातार को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में 8-9 की करीबी हार के बाद दीपक ने शानदार वापसी की और लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा। हालांकि 74 किलोग्राम वर्ग में सागर जगलान कांस्य पदक से चूक गए। उन्हें कजाकिस्तान के नुरकोजा कैपानो ने 5-0 से हराया और सागर चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले रेपेचाज में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रजामबेक जमालो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई थी। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में मनीषा क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जहां उन्हें जापान की अकारी फुजीनामी से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भारतीय कुश्ती ने कुल 6 पदक के साथ अपना अभियान पूरा किया। आपको बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 पदक जीते थे।
0: वॉलीबॉल में 5वें-6वें स्थान के लिए भारत की भिड़ंत थी थाईलैंड से। कड़ा मुकाबला हुआ, 5 सेट तक चला। सेट पॉइंट्स की कहानी प्रेरणा शर्मा से।
4: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को 5वें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक चले इस 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड ने निर्णायक सेट 17-15 से जीतकर 5वां स्थान हासिल किया, जबकि भारत 6वें स्थान पर रहा। मुकाबले की शुरुआत थाईलैंड ने बेहतर तरीके से की। उसने पहला सेट 25-19 से अपने नाम किया। भारत ने हालांकि दूसरे सेट में तुरंत वापसी की और 25-17 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसे सेट में थाईलैंड ने फिर बढ़त हासिल की और 25-21 से सेट जीतकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत के सामने अब मुकाबला बचाने की चुनौती थी और टीम ने चौथे सेट में एक बार फिर दमदार वापसी की। भारत ने यह सेट 25-17 से जीता और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद फैसला 5वें और निर्णायक सेट में होना था। यहां दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत के पास मैच पॉइंट के मौके भी आए, लेकिन टीम उन्हें जीत में बदल नहीं सकी। थाईलैंड ने आखिरी पलों में धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 17-15 से अपने नाम कर लिया।
0: रग्बी सेवन में भी महिलाएं क्लासिफिकेशन रैंक के लिए खेल रही थी। 2 मैच खेले, दोनों का विवरण साक्षी मंडवाल से।
1: Indian women defeated Singapore for the 5th-8th placing 22-5. India won the first half convincingly and commandingly by defeating Singapore 17-5 and also owned the second half by completely demolishing Singapore 5-0, thereby winning the match in straight games 2-0. The Indian women's match in rugby sevens for the 5th-6th placing later happened with Kazakhstan, in which Kazakhstan easily defeated India 20-0. Both the halves went to Kazakhstan with the scoreline reading 10-0, 10-0 and finally, the Indian women finished on the 6th place.
0: ताइक्वांडो में 2 लड़कियां थीं। कल से संघर्ष में जुटी हुई कशिश मलिक और दूसरी ज्योति यादव। पदक की उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन संघर्ष की उम्मीद जरूर थी। हुआ क्या, जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
1: कशिश मलिक बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 kg राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026 इन ताइक्वांडो। She was defeated by Kim Yujin of South Korea in this round. In the women's 67kg round of 16 in Taekwondo, Jyoti Yadav lost to Kanala 0-2. She was thus knocked out and India's campaign in the sport ended with this loss.
0: सेलिंग में भारत ने 3 पदक पाए हैं। आज गर्ल्स डिंगी में माही वर्मा थी। माही की नाव कितना भागी, जानते हैं मेघा से।
2: Competition concluded today. Mahi completed the 12 race opening series with 75 total points and 57 net points. She finished 8th in opening series race 12.
0: और अब भारत के लिहाज से पदक तालिका की फाइनल स्थिति।
2: Courtesy of a late search that saw them add 9 medals including 5 gold, India signed off the day in 4th place with 85 medals, 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India and Uzbekistan at the moment stand level on 21 gold medals, but India are on the 4th place thanks to their higher silver medal count. China finish on top of the table followed by host Japan and South Korea.
0: आज सही अवसर है भारत को मिले पदकों की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालने का। कहीं उम्मीदें पूरी हुई, कहीं उम्मीद से कम रहे, तो कहीं उम्मीद से बढ़कर आए। भारतीय पदकों की विवेचना मेघा से।
2: बियॉन्ड द मेडल्स एंड द फाइनल स्टैंडिंग्स, One of the biggest positives for India at these Asian Games has been the emergence of a new generation. Of the 310 athletes making their Asian Games debut, 83 have won medals, 43 women and 40 men. That means more than one in every four Indian debutants has returned with a medal. Between them, these first-timers have contributed 41 medals across 12 sports, 14 gold, 12 silver and 15 bronze. And several performances have broken new ground for India. Suchika Thariyal won India's first ever Asian Games medal in mixed martial arts, taking bronze in the women's traditional 60-kilogram category. Jay Meena's men's singles bronze gave India its first ever medal in soft tennis. Shooting produced several breakthroughs as well. India won its first ever women's team and mixed team medals in skeet, while Suruchi Singh and Kamaljeet Singh struck gold with an Asian Games record in the 10-meter air pistol mixed team. Neeru Dhanda and Kanan Chennai added another first, winning India's maiden mixed trap gold with an Asian Games record in the final. There were significant firsts elsewhere as well. Satnam Singh and Salman Khan delivered India's first ever Asian Games medal in the men's double sculls, while Baranika Alangova's bronze was India's first ever Asian Games medal in pole vault. In squash, Anahat Singh became the first Indian woman to reach the Asian Games singles final, eventually taking silver. And Indian archery reached another landmark. Ankita Bhakat, Kumkum Mohod and Kirti Sharma won India's first women's recurve team gold at the Asian Games. Kumkum followed it up today with individual recurve gold, becoming the first Indian archer to win an individual recurve title at the Asian Games. There were breakthroughs in sailing and boxing as well. Netra Kumaran claimed bronze in women's dinghy, while Lovlina Borgohain delivered India's first Asian Games gold in the women's 75-kilogram boxing category. Netra's bronze was a maiden Asian Games medal in a fourth appearance. There were milestones beyond first. Mirabai Chanu's silver ended India's 28-year wait for an Asian Games medal in weightlifting. Savan Barwal brought India its first men's marathon medal in 44 years. And the women's hockey team reclaimed Asian Games gold after a 44-year wait.
0: करीब दो सप्ताह तक एशिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाएं आईची नगोया में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की नई कहानियां रचने में लगी रहीं, बेहतर से और बेहतर होने की कोशिश करती रहीं। जो नहीं जीत पाए उनके लिए उदास होने का समय तो हो सकता है, लेकिन निराश होने का नहीं, क्योंकि खेलों का संदेश ही यही है, कल आप फिर ऊपर आ सकते हैं। और फिर विशाल एशिया की बहुरंगी संस्कृतियों का मिलन स्थल भी तो था ये। भारत ने अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक छाप भी जरूर ही छोड़ी। अब कल इन खेलों के अवसान का दिवस है। नगोया के पालोमा मिजुहो पार्क स्टेडियम में भव्य रंगारंग समापन समारोह होगा, लेकिन ये खेल आंदोलन तो शाश्वत है, चलता ही रहेगा। खेल ज्योति विदा लेगी। खेलों को सांकेतिक रूप से दोहा, जो 2030 खेलों का आयोजक है, उसे हैंडओवर किया जाएगा। जापान खासकर आईची नगोया की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हुए कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, समापन उद्घोष होगा और सारे खिलाड़ी एक मेक होते हुए एक दूसरे को गलबहियां डालकर विदा देंगे, चमकती आंखों में भविष्य के प्रदर्शन के सुनहरे सपनों के साथ। समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी दो स्वर्ण और एक रजत जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा, जिन्हें खास तौर पर फिर जापान भेजा जा रहा है भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने। तो उम्मीद करते हैं आपने आकाशवाणी पर हर दिन हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा, पसंद किया होगा। कल इस श्रृंखला के अंतिम कार्यक्रम के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे अनुपम पाठक को आज्ञा दें, शुभ रात्रि। एडिटर विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान।
5: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
6: ये आकाशवाणी का चायवासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पे। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम महफिल। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास के स्वर में गजल।

इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का गजलों का कार्यक्रम महफिल अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। पहला गाना है फिल्म अमानुष से, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

अभी आपने सुना फिल्म आदमी का ये नगमा, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी की। और आई सुनते हैं फिल्म वक्त का ये गाना, आवाज़ें आशा भोसले और महेंद्र कपूर की है।

अभी आपने सुना फिल्म दो बदन का ये गाना, आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी की। और आइए सुनते हैं फिल्म होटल का ये गाना, आवाजें आशा भोसले और मनहर उदास की।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म प्यार मोहब्बत का ये गाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का शुरू किरण कार्यक्रम अभी समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस एनपीए कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
1: एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट अबाउट 766 बिलियन US डॉलर।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the fifth Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the four labour codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
1: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter one. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
4: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyay Sanhita BNS is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today. In Andhra Pradesh, 4 workers were killed and another was critically injured in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City of Satyavedu Mandal today. The blast occurred inside a factory in the special economic zone. 2 workers died on the spot while 3 others were critically injured and shifted to a nearby hospital. 2 of the injured later succumbed to their injuries during treatment. The remaining worker is undergoing treatment in the intensive care unit. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed shock over the incident. India won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan today. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. For India, Captain Harmanpreet Singh netted 2 goals while Jugraj, Hardik and Shailanand scored 1 goal each. In men's cricket, India won the gold, defeating arch rivals Pakistan by 19 runs in the T20 final at Nishin. Wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57-kilogram gold after edging out North Korea's world champion Chong Song Han 11-7 in a fierce final. Kumkum Mohod won the individual gold medal in the women's recurve archery event. In golf, Pranavi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in the women's individual title. India also bagged silver in the team event. Wrestler Antim Panghal sealed a silver medal in the women's 53-kilogram category. Deepak Punia won bronze in the men's 97-kilogram freestyle wrestling event after defeating Mongolia's Ganghuya Ganbatar. Archer Neeraj Chauhan got bronze in the men's individual recurve event. With these impressive performances, India has climbed to 4th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 85, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the men's cricket team on retaining their title at the Asian Games 2026. In a series of social media posts, Mr. Modi said that this is indeed a joyous occasion for the nation. He also wished the team members for their future endeavours. Mr. Modi said, the 2026 Asian Games have been truly special for Indian hockey. He congratulated the men's hockey team on retaining the Asian Games gold with a commanding victory in the final. The Prime Minister also congratulated Pranavi Sharat Urs on winning India's first ever gold in women's individual golf at the Asian Games. Mr. Modi also congratulated Kumkum Anil Mohod on becoming the first Indian woman to win recurve individual gold at the 2026 Asian Games. Prime Minister also congratulated Aman Sehrawat for scripting history by winning India's first ever Asian Games gold in the men's 57-kilogram freestyle wrestling event. Mr. Modi expressed happiness that 6 decades later, India is back on the podium in the men's 97 kg freestyle wrestling event at the Asian Games. And that is the end of this news bulletin.
5: हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ज से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह यानी कि 5:56 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह यानी कि 5:56 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।